0: Grant Road, opposite Madhubani Park, Muradabad. Call 94122-1111. Offer valid till 10th June. TNC apply.
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
5: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: solo.
1: Llévatelo.

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
6: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्चीव ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंकाई को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
9: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
10: क्या मेरी कसम,
9: मिस कर दिया तो रीलोड।
11: चाय चाय चाय,
12: बिंदास मॉर्निंग
9: सुनिए। बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

सुप्रभात, नमस्कारम जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। आपने ट्यून इन कर लिया है एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ। जुड़ चुके हैं आप आपके शहर के अपने स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जिसका नाम है एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक सुपर टूपर वाला गुड मॉर्निंग है। नमस्कारम जी, कैसे हालचाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी सुबह की शुरुआत एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, वक्त हो गया है स्टेशन क्लॉक में 8:18, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, दिन है आज बुधवार का, दिस इज वेंसडे की सुबह। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में और अपने दिल के हालचाल और अपने आज की सुबह के हालचाल पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर, यानी कि 9837896896 के माध्यम से। आज का एक बहुत ही खूबसूरत विचार जो मैंने पढ़ा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल थॉट भी है कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ, हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका और एक नई उम्मीद जरूर लेकर आती है। इसलिए जो चला गया है उसे भूल जाओ, जो आपके पास है उसकी कद्र करो और बस रिस्पेक्ट करो यार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन जितनी हो सकती है ना कम रखिए लोगों से, आप ज्यादा खुश रहेंगे जिंदगी में। चलिए आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, जुड़ चुके हैं आप आरजे आनंद के साथ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, अपनी प्यारी सी वाइब को मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए ना 9837896896, ये स्टूडियो का नंबर है। अलका याग्निक जी की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल रहा हूँ आपके रेडियो स्टेशन पर। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
5: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
5: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
8: आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, सुन रहे हैं आप आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़ी सी देर में मिलते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बताएंगे क्या कुछ खास है आज की तारीख में।

बहुत बहुत स्वागत है। आपने ट्यून इन किया हुआ है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं दिस इज बिंदास मॉर्निंग आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जब रात को आधी रात में बारिश आई है ना भाई, मतलब वही 3:30-4 बजे के समथिंग बारिश आई भाई, इतनी जोर से बारिश आई भाई साहब, जो लोग बाहर सो रहे थे उनको ऐसा लगा पता नहीं भाई साहब क्या ही हो गया अचानक से। और वो बारिश जैसी आई सब लोग अपने अपने घरों की ओर आई थिंक भागे होंगे, मैं भी भागा क्योंकि मैं भी अपनी छत पे सो रहा था आराम से। लेकिन जब रात को अचानक से मौसम बदला, झमाझम बारिश हुई, मतलब थोड़ी सी दिल को खुशी मिली लेकिन थोड़ी देर बाद वो बारिश कहाँ चली गई मेरे को समझ ही नहीं आया यार। वैसे कल रात की बारिश का किसी को पता भी है या नहीं? वैसे अभी तो सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं तो आई डोंट नो कि कितने लोगों को ऐसा लगा कि रात में बारिश भी हुई थी। वैसे बहुत लोगों को पता होगा आई एम रियली श्योर, लेकिन कसम से यार ये कल रात की बारिश ने ना मतलब एक खुशी दी, उसके बाद तुरंत वो खुशी वापस ले ली यार। वेलकम बैक है 8:35 स्टेशन ब्लॉक में, 8:35 हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। अगर बात करें आज की सुबह के मौसम की, जो 32 डिग्री सेल्सियस वेदर अभी दिखा रहा है, ये धीरे धीरे दोपहर होते होते 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। एयर क्वालिटी बिल्कुल मत पूछो भाई कैसी चल रही है आज की, बट हाँ हवा जो है थोड़ी कम चलने वाली है, लेकिन ठीक है जी, ये 3 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ह्यूमिडिटी 47% डिग्री दिखा रहे हैं यहाँ पर, मतलब ठीक है, विजिबिलिटी भी ओके दिख रही है, यानी कि वेदर कुल मिला के ठीक ही रहेगा, लेकिन गर्मी आपको सताएगी जरूर मेरे भाई। बाकी आप लोग अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, मेरे पास मैसेज पहुंच गया है यहाँ पर प्रियंका का। सुबह सुबह लिखते हैं प्रियंका, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, बस एक चीज कहना चाहती हूँ आज पे रेडियो के माध्यम से कि अगर आपका मन शांत नहीं है, आपका दिमाग बहुत भटक रहा है या आपके मन में बहुत नकारात्मकता वाले विचार आते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है आप में, तो थोड़ा सा ना आपको सुबह में मेडिटेशन की जरूरत है। आप मेडिटेट कीजिए, उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव आएगा। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपकी बात से बहुत अग्री करता हूँ, हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन जब हम मेडिटेशन करने जाते हैं तो भी हमारे मन में 100 प्रकार के ख्याल आते हैं, मन जो है स्थिरता के साथ एक जगह पर स्टेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम जैसे जेंजी ना मेडिटेशन कर ही नहीं पाते हैं, या तो यूं कहें कि हमें सही डायरेक्शन नहीं पता चल पाती है ना। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, ब्यूटीफुल मैसेज डिलीवर करने के लिए। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है सूर्यांश का, ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है, मैं इस वक्त गायत्री नगर में आपको सुन रहा हूं और मौसम बहुत ही औसम है, गाने आप बहुत ही अच्छे प्ले कर रहे हैं आज की सुबह, बस इतना ही कहना चाहता हूं मुस्कुराती रहिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सूर्यांश मेरे भाई। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय सुप्रभात आनंद जी, गुड मॉर्निंग, सुबह की कड़क चाय और आपका शो मजा ही आ जाता है, वेरी गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है एंड आप रेडियो पे आते हैं अच्छे गाने और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर, मजा आ जाता है भाई, इतनी तारीफें मत ही करो यार। चलिए श्रोताओं, ये तारीफों से जो है वो चलती रहेंगी, ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। लेकिन बात करते हैं अभी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातों को जो है जरा प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, यानी कि आज का जो दिन है 10 जून की जो तारीख है वो क्यों महत्वपूर्ण है आज। श्रोताओं, हर दिन की तारीख अपने आप में बहुत ही स्पेशल होती है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कह सकते हैं हम इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को समझने को मिलती है। आपको बता दें 1983 में ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर पूर्ण प्रधानमंत्री बनी, आज के दिन श्रोताओं आज का दिन और किस लिए खास है आपको बताते चलें, सन 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा व सामुदायिक विकास के संबंधों पर 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे श्रोताओं आज के दिन, और सन 2008 में आज के दिन 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था श्रोताओं आज के दिन। देखिए ये हुई ना बात कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता है श्रोताओं, हर दिन की तारीख ना ऐवी नहीं होती है, बहुत कुछ खास चीज़ें होती हैं। आपको बता दें सन 1246 में नशरुद्दीन मोहम्मद शाह जो दिल्ली की गद्दी पर असीन हुए थे आज ही के दिन श्रोताओं, और आपको बताते चले आज ही के दिन एक और बहुत ही खास चीज हुई जिसके विषय में डेफिनेटली बात करना बनता है श्रोताओं। तो आपको बता दें आज के दिन रूप कुमार राठौर जो हिंदी चलचित्र गायक, आज के दिन इनका जन्म हुआ था श्रोताओं, और आपको बता दें दामोदर जी का भी जन्म हुआ आज के दिन, भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, सन 1906 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। राहुल बजाज का जन्म हुआ, भारत के सबसे सफल उद्योगपति में से एक थे, 1938 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। प्रकाश पादुकोण जी का भी जन्म हुआ जो सुप्रसिद्ध भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सन 1955 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन।
श्रोताओं, ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके साथ साझा करी। इसके अलावा आज विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है, इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में। और क्या स्पेशल रहेगा आज की तारीख में, डेफिनेटली सब कुछ आपको पता लगेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप भी हमारे साथ अपने प्यारे प्यारे संदेश पहुंचा सकते हैं, मुझे इंतजार है आपके मैसेजेस का। 9837 8968 96 स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इस नंबर पे आपने मुझे मैसेज करना है फटाक से, और अपनी कोई भी प्यारी सी बात जो आप चाहते हैं कि मुझ तक पहुंचे, कोई अच्छा सा विचार आप चाहते हैं मुझ तक पहुंचे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है सुबह सुबह 9837 8968 96 पर। एक ब्यूटीफुल नंबर मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, उदित नारायण साहब की आवाज, साथ में कविता कृष्ण मूर्ति देंगी साथ, बेहतरीन गीत है, इसी गीत को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आज वेंसडे की मॉर्निंग है, थोड़ी देर में आपको एक प्रोग्राम की ओर लेकर चलेंगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए महाराजा मूवी का ये बेहतरीन ट्रैक। म्यूजिक है नदीम श्रवण का, लिखा है समीर साहब ने, बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूं साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
2: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
2: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
2: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
4: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: से दिल तक, थैंक यू सो मच आपकी मैसेजेस के लिए, इतने ढेर सारे जो मैसेज आपने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इन प्यारे प्यारे संदेशों के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, 9 बजने को है स्टेशन क्लॉक में, और जैसे ही बजेंगे 9, फिर आपसे पूछेंगे एक छोटा सा फैंटास्टिक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे यहाँ पर देंगे। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू करेंगे यहाँ पर। उससे पहले ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो वाले आनंद को मेरे पास मैसेज पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग रेडियो वाले आनंद जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। सर आप कैसे होंगे? आई होप आप अच्छे होंगे, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह बहुत ही बेहतरीन गाने आप प्ले करते हैं, जिसको सुनकर हमारी एनर्जी डबल हो जाती है, खुशी से हम झूम उठते हैं। और आप सबसे हमें बातचीत करके आपका प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से हमारा पहला प्यार है, क्या बात है। सोनू जी बुद्धि विहार सेक्टर 10 मुरादाबाद से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सोनू भाई। रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, विक्की सागर जी लिखते हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है? आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है जी, जरूर हम बर्थडे विश करेंगे। रिहाना मेरे साथ जुड़ी हैं, आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। एंड हमारे साथ कौन जुड़े हैं, लिखते हैं, सुबह बारिश तो आ गई मगर मजा नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने, हम छत पर सोए थे, सेम ही यार, मुझे भी ऐसा लगा यार कि मैं अकेले ही छत पे सो रहा था, लेकिन अब पता लग रहा है कि छत पे बहुत सारे लोग सो रहे थे जब बारिश आई। और इन्होंने लिखा है, जब तक बिस्तर उठाया तब तक बारिश रुक चुकी थी। सेम, जब तक हमने अंदर सेटिंग्स किए ना सोने के लिए, जब तक हमने कूलर वगैरह वगैरह सब अंदर रखा, तब तक बारिश बंद, फिर लग रहा था बाहर चले जाओ, फिर लगा नहीं भाई अगर दोबारा आ गई तो फिर भागना पड़ेगा, लेकिन बारिश आई ही नहीं यार, लगता है बारिश डर के मारे भाग गई। ये हमारे साथ रेमन नगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी साहब जुड़े हैं आज की सुबह। भावना जुड़ चुकी है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है नैनीताल से, सुबह सुबह हमारे प्रोग्राम में इनकी भी हाजिरी लग चुकी है। लिखती है, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हैव अ ग्रेट डे। एंड एक छोटा सा विचार शेयर करती है, दुनिया को बदलने के लिए, घर को बदलने के लिए, सबको बदलने की जरूरत नहीं होती है, ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम सबको बदलेंगे, लेकिन हाँ एक ना एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब आप खुद बदलते हैं। बिल्कुल सही कहा, घर में सिर्फ एक अगरबत्ती की जरूरत होती है, घर में सिर्फ एक दिए की जरूरत होती है, वो ही काफी होता है घर को रोशनी की दिशा दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत विचार, थैंक यू भावना फॉर शोइंग योर थॉट्स, इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग मी। हेलो जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हालचाल हैं? आपके भजन और गाने दोनों ही बहुत ही फर्स्ट क्लास होते हैं। रात में इन्होंने लिखा है, बारिश हुई और ऊपर से जो है लाइट भी चली गई थी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, और सारे लोग परेशान हो जाते हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे में सभी को अपना ध्यान रखना है। और ये मुझे मैसेज करती हैं ललिता कश्यप जी नवीन नगर से, सहारनपुर से मेरे रेगुलर लिसनर जुड़े हैं जोन रोजी पलविलीस, लिखते हैं, हेलो आनंद वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सर। ये लिखते हैं, परवाह मत करो कि कौन क्या कहता है, परवाह मत करो कि कौन क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति सिर्फ तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। आए हाय क्या बात कही है सर, मजा आ गया। लिखते हैं, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, नम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, और अगर प्रेम ना हो तो रिश्ता व्यर्थ है। क्या बात है, खूबसूरत बात है, हाय हाय हाय, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हमारे रेडियो लिसनर। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 बज चुके हैं स्टेशन क्लॉक में, अभी लौट कर आता हूँ छोटे से एड ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, सुनते रहेंगे एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
2: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
6: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ

0: रहिए सुरक्षित, चलिए अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो एफ एम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। नाचते रहिए, झूमते रहिए और ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करते रहिए, क्योंकि जब बेहतरीन शुरुआत होती है तो अपने आप ही मजा जो है डबल हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो। दिस इज बिंदास मॉर्निंग।

वेलकम बैक है श्रोताओं, इस वक्त आनंद के साथ हैं आप और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 स्टेशन। क्लॉक में 9:05 हो गए, आप हैं इस वक्त आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर। हमारे मुरादाबाद में जो अपने नए डीएम साहब हैं राजेंद्र पेंशिया जी, उन्होंने एक मीटिंग में जब योगा के बारे में कुछ खास चीज़ें करी और उन्होंने कुछ खास एक्सरसाइज मतलब योगा की पोजीशंस करके दिखाया, वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हो रहा है राजेंद्र पेंशिया जी का। और आपको भी पता है योगा डे आने वाला है, दिस इज़ वेरी वेरी सून, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी प्रिपरेशन मुरादाबाद में बहुत अच्छे से हो रही है। एंड आई होप आप लोग भी योगा डे पे डेफिनेटली योग करेंगे। और मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही दिन क्यों करना है यार, योग जो है, जो लोग करते हैं योग वो हमेशा रहते हैं निरोग, है ना। तो अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अपनी फिटनेस को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए योग। और हमारे जो ये नए वाले डीएम साहब है ना राजेंद्र पेंशिया जी, बड़े क्रिएटिव हैं, बड़े जबरदस्त इंसान है यार, और इतनी अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी वो कर रहे हैं ना, मतलब जिसको देख के हमारे मुरादाबादी जो है भाई साहब बड़े हैप्पी हैं। इनफैक्ट हम लोग भी बड़े हैप्पी हैं, नई नई चीज़ें नई नई जानने को मिल रही हैं, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ जो निकल के आ रहे हैं, मतलब अल्टीमेट यार, दिस इज अल्टीमेट। श्रोताओं, अब तो मुरादाबाद भी हर दिन किसी न किसी न्यूज़ का हिस्सा बना रहता है, बड़े बड़े चैनल्स पर अक्सर मुरादाबाद के जिक्र जो है होते रहते हैं, मुरादाबाद की शहर की छोटी छोटी चीज़ों जो है आगे बड़े लेवल तक पहुंचती रहती हैं, क्योंकि मुरादाबाद यार अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत वाइब बन गया है, अब स्मार्ट सिटी हो गया है, स्मार्ट सिटी के साथ साथ लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। 9:06 का समय, कुछ खास कड़क अपडेट इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर लेकर आ रहा हूँ आप ही के साथ। आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, सुनते रहेंगे आरजे आनंद को। मैंगो के बारे में बात करने वाला हूँ जरा सी देर में, और कुछ खास चीजें इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे डेफिनेटली आपको बताऊंगा। एंड अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए 9837896896 स्टेशन क्लॉक में, वक्त तो मैं आपको बताता रहूंगा कितना हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी पहेली का आंसर आप करेंगे मुझे, ठीक है। आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू करने के लिए पूछ रहा हूँ, फटाक से मुझे इसका जवाब पहुंचाइएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से कभी नहीं हिलती है। अगर आपको पता है तो ज़रा बताइएगा मुझे मैसेज करके 9837896896, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आपने मेरे को मैसेज करना है अपने नाम के साथ अपना सही वाला जवाब। अभी कुछ आपकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, कुछ लोकल फॉर वोकल की बातें करेंगे, और एक खास इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपनी पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से कभी नहीं हिलती है। वारजी आनंद का माइक तो नहीं हो सकता बिल आप बताओ, व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। हाँ, गूगल नहीं यूज कर रहे हैं, नो चीटिंग, नो नो नो, आप चीटिंग नहीं कर सकते हो।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

आप इस वक्त जुड़े हुए हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर। दिस इज माय स्टूडियो नंबर लेडीज एंड जेंटलमैन। ये वेंसडे की सुबह है, अच्छे गाने आप सुन रहे हैं। अगर आप निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग डेस्टिनी पर, ऑल द वे बेस्ट आप जहां भी जा रहे हैं। एंड अगर आप सीट बेल्ट लगा के ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप टू व्हीलर वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट भी लगाकर चलिए, बहुत जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भैया देखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल, अपने आप को सेफ रखना, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है ना। और ऐसी अच्छी बातें करने की जिम्मेदारी आरजे आनंद की है, लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: बेहतरीन गाना और इस बेहतरीन से गाने के बाद वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है जी। आपको बता दे भैया, मुरादाबादी के लोग बड़े कमाल के हैं यार। मतलब आप जहां भी जाओ आपको कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा मिल ही रहा है यार। मतलब आप कपूर कंपनी की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको शरबत बांटते हुए लोग नजर आ जाते हैं। आप कचहरी की तरफ जाओगे वहां पर भी लोग शरबत बांटते हुए नजर आ जाएंगे। कल इनफैक्ट मैं कल चौधरी चरण सिंह की चौक की तरफ से मैं जा रहा था। चरण सिंह चौक का जो है, यहाँ चौधरी चरण सिंह चौक ही बोलते हैं एग्जैक्टली, मैं उधर से निकला तो मैंने वहां पर देखा शिकंजी बट रही है। हालांकि कल तो बड़ा मंगलवार भी था, मतलब ठंडी ठंडी शिकंजी शरबत में जहां से भी निकल रहा था, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा था कल। तो ये देख के मतलब बड़ा अच्छा लगा यार कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इतनी गर्मी है, इतनी तपिश है, इतनी खतरनाक धूप हो रही है, ऐसे में जो हमारे रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, एटलीस्ट उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहे हैं लोग, इतना सोच रहे हैं। आने जाने वाले लोग जो सफर करते हैं इतनी गर्मी में, उन्हें लगता है यार कहीं से कुछ ठंडा मिल जाए, कहीं पर कुछ पीने को मिल जाए, तो मतलब आत्मा जो है शुद्ध हो जाएगी, शांत हो जाएगी, मजा आ जाएगा, एकदम शांति मिलेगी, मन को एकदम सुकून मिलेगा ना इससे। गर्मी में चिलचिलाती धूप में कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए। अब ये जो कर रहे हैं मुरादाबाद की ऑडियंस, बहुत ही बढ़िया है, वेरी नाइस। मैं कह रहा हूँ आप लोग भी जरूर शरबत शरबत बांटते रहो यार। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली अपने आसपास की सोसाइटी में जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल डेफिनेटली करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भाई आपके आसपास सब्जी वाले भैया हैं, सफाई वाले भाई जो अक्सर आते रहते हैं, गर्मी बहुत है, अगर आपके घर कोई आ रहा है तो ऑफकोर्स एक ग्लास पानी तो बनता है यार, है ना। आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। अभी बहुत सारे संदेश लगातार मेरे पास पहुंच रहे हैं, डेफिनेटली शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगस्त में बदलने जा रहा है रेलवे टिकट बुकिंग का तरीका, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये किस चीज की बात चल रही है, चलिए मैं आपको फटाक से बताता हूँ। एक्चुअली वर्तमान पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि PRS साल 1986 से काम कर रहा है। अगस्त से ट्रेन को धीरे धीरे नए और मॉडर्न PRS प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बदलाव के यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। एंड अगस्त में जो है कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ये चेंजेस जैसे ही आएंगे डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता दें जनगणना का जो प्रोसेस है वो एब्सोल्युटली शुरू हो गया है। एंड घर घर जाके 33 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी आपके कितने लोगों के घरों पे जनगणना की टीम आई है आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा जरूर। क्या आपके घर अभी तक जनगणना वाली टीम आई है? अगर आई है तो उन्होंने क्या कुछ पूछा है आपसे? आप उनको बताने में कोई आपको टेंशन तो नहीं हुई? आप मुझे ये भी बता सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी सून हम ट्राई कर रहे हैं स्टेशन पे कुछ ऐसे लोगों को लेकर आए, कुछ ऐसे अधिकारियों से हम बातचीत करें जो इसके विषय में और ज्यादा विस्तार से इन्फॉर्मेशन दे सके, ताकि वो जो टीम घर घर जाके सर्वे कर रही है उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भैया, अगर जनगणना की टीम आपके घर आती है और अगर वो आपसे कुछ भी जानना चाहती है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, तो आपने बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। जनगणना की टीम को जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहे हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर बताइए। आपने बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। जैसे परिवार के मुखिया का नाम हो गया, एंड इसके अलावा कितने सदस्य घर में रहते हैं, पीने के पानी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपके शौचालय के बारे में, स्नान घर के बारे में, बिजली के बारे में, इंटरनेट के बारे में, मोबाइल के बारे में, आपके घर में साइकिल, टीवी, रेडियो, लैपटॉप, कंप्यूटर, गाड़ी, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनगणना के दौरान पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देना आपकी एक नागरिक जिम्मेदारी बनती है, एंड डेफिनेटली आपको देना चाहिए। आप गलत इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल ना दें लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि ये कोई भी इंसान अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा है, ये ऊपर से आदेश है। इसीलिए जनगणना में ये 33 क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनका आपने सही और सटीक जवाब देना है। आप सुन रहे हैं इस वक्त आरजे आनंद को। भाई साहब, एक बड़ी अजीबोगरीब जो है न्यूज़ निकल के आई है सामने, डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दुबई में असम की तेजपुरी लीची जो है भाई साहब पहुंच गई है। भारत ने कमाल कर दिया है, जो लीची है यहाँ की जब दुबई में पहुंची है तो भाई साहब वहाँ के लोग बड़े खुश हो गए यहाँ की लीची पाकर खाकर। पता नहीं यार, हम लोग तो लीची को इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है खाते हैं ऐसी बात नहीं है, बट इतना ज़्यादा हम लोग इतना प्यार लीची से खैर तो नहीं करते जितना हम आम से करते हैं, बिकॉज आम फलों का राजा है, शुरू से पढ़ते आए हैं ना। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है अभी मुझे आपको बतानी है, एंड आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली बतानी चाहिए। UPI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अभी बताता हूँ आपको। 9:20 स्टेशन क्लॉक में हो गया है वक्त, और अभी ये जो खबरें हैं, ये जो जानकारियां हैं, आसपास की गतिविधियां हैं, सब कुछ आप तक पहुँचता रहेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। मैंने आपसे एक पहेली पूछी है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल पहेली। अगर आपने उसका जवाब दिया है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ज़रूर पहुँचाओ। मेरी आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है पर अपनी जगह से कभी नहीं हिलती। आई रिपीट माई पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर कभी अपनी जगह से नहीं हिलती है। अगर आपको पता है इसका जवाब तो क्या करना है आपने, मेरे को व्हाट्सएप करना है यार 9837896896। स्टेशन क्लॉक का जो भाई साहब टाइम है वो हो गया है 9:20:25, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बिना किसी देरी के। जब तक आप मुझे मैसेज करोगे तब तक हम कुछ गाने सुनेंगे और कुछ बढ़िया सैड ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं इसी स्टेशन।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

बन जा। बेहतरीन गाना भी आप एंजॉय करे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, और ऐसे गाने सुन के सच में ना फुल ऑन वाइब जो है वो मिलने लगती है। वेंसडे की सुबह है, विश्व नेत्रदान दिवस आज मनाया जाता है। श्रोताओं आपको बता दें ये हर साल 10 जून को मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस। तो देखिए विश्व नेत्रदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें नेत्रदान महादान है, तो आइए रोशनी का जो है ये उपहार दें और आपकी आंखें किसी की नई सुबह बन सकती हैं। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है, ये अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे दिवस हैं ना, अक्सर हम इनको अवॉइड करते हैं, तो हमें इन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। अगर इनको बनाया गया है, अगर इनको रखा गया है विशेष खास तौर पर तारीख के हिसाब से हर साल इनको मनाया जाता है, तो इनका एक मकसद, इनका एक एम है। श्रोताओं इसीलिए हर साल 10 जून को मैं आपको बता दूं मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस। ये दिवस हर साल जैसे कि मैंने बताया आपको 10 तारीख को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को, लोग जागरूक हो सकें इसके प्रति भी कि नेत्रदान जो है वो कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। नेत्रदान से दृष्टिहीन लोगों को रोशनी मिल सकती है, मृत्यु के बाद भी नेत्रदान संभव है, और यह दिवस नेत्रदान के लिए प्रेरित करता है। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है नेत्रदान दिवस, और ये हर साल 10 जून को ही मनाया जाता है। श्रोताओं इसके अलावा आज राष्ट्रीय मसाला दिवस मनाया जाता है। यस, हम भारतीयों की किचन में ना मसाले तो भरपूर मिलेंगे यार, मसालों के बिना तो हमारे स्वाद ही अधूरे हैं ना। तो हर साल 10 जून को राष्ट्रीय मसाला दिवस भी मनाया जाता है। भारतीयों के मसालों की खुशबू सिर्फ स्वाद नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और सेहत की पहचान भी है। श्रोताओं अच्छा, वैसे मैं डेफिनेटली आपको एक बात बताना चाहूँगा, मतलब मेरे दिमाग में थॉट आती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं पार्टी करने के लिए, खाने पीने के लिए, तो वहाँ पर एक पानी की बॉटल हमें मिलती है ना, मुझे लगता है कि वो जो पीने का पानी हमें मिलता है ना यार, वो जो रेस्टोरेंट में हमें परोसा जाता है, वो मेरे हिसाब से तो यार मुफ्त होना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए। जो पानी की बॉटल्स हमें मिलती है, क्या वो हमें फ्री नहीं मिल सकती है? क्योंकि पानी जब आप किसी होटल में जाते हो तो मुझे लगता है आपको फ्री मिलना चाहिए, लेकिन जब हमारे आगे वो बॉटल आती है तो बाद में वो भी ऐड हो जाती है हमारे बिल में, उसका भी पेमेंट ऐड हो जाता है। जबकि मुझे लगता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं पर आप पार्टीज के लिए जा रहे हैं, तो पानी एक सामान्य पीने का पानी है यार, वो तो आप नॉर्मल भी मांग सकते हो, लेकिन पानी की बोतल खरीदना ठीक है आपकी पसंद है, आपकी मजबूरी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये तो फ्री में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, आई नो सबकी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट दिस इज माई थॉट कि यार पीने का पानी तो ऑफकोर्स यार मतलब फ्री में अवेलेबल होना चाहिए। खैर सोचिएगा जरूर, आगे बढ़ते हैं, ये हमारी राइट की बात है, बाकी आगे चलते चलेंगे ऐसे ही स्टेशन ऑफ द नेशन पे जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम्स हैं, तो जिनके एग्जाम्स हैं उनको ऑल द वे बेस्ट। अगर आप निकल रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए तो बहुत सारी बधाइयाँ जी, अच्छे से जाइए, एक संकल्प के साथ जाइए, पॉजिटिविटी के साथ जाइए। और अभी हम भी आगे बढ़ेंगे, 9:29 स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है, एक छोटी सी पहेली मैंने आपसे पूछी है, ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास पहुंच गए हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर आप भी मेरी पहेली का आंसर करना चाहते हो यार तो बिल्कुल कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकने वाला। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है? ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है बट कभी अपनी जगह से हिलती नहीं है? मुन्ना रखती, क्या लगता है आपको? व्हाट्सएप करके बताओ 9837896896, दिस इज माय नंबर। आई एम वेरी फॉर यू मैसेजेस, यह वेंसडे की सुबह आनंद के साथ, वेरी गुड मॉर्निंग, दिल से कहो जियो बिंदास।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। आने वाली 20 जून को एक बहुत ही अच्छा कैंपेन लेकर आ रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 विद इन्फ्लुएंसर्स के साथ। क्या स्पेशल है हमारी 20 जून को इस कैंप के अंदर, बताऊंगा सारी अपडेट इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। यह है बिंदास मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गाने के बाद जल्दी से लौट कर आता हूँ।

0: बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी यार, जरा हटके जरा बचके से भी आप एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही बेहतरीन गाना ये है, ये आरजे आनंद का शो है यार। ये वो स्टेशन है जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए तो रुक जाते हो हमारी प्यारी बातें सुन के। वेलकम बैक है जी। मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जरा हटके जरा बचके आप भी चलो मेरे यार, क्योंकि आप जहाँ है ये मुरादाबाद है। हाँ जी, पीतल नगरी वालों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है। मैंने आपसे एक बड़ी सिंपल पहेली पूछी थी। मैंने कहा था आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, बट अपनी जगह से कभी नहीं हिलती, कतई नहीं हिलती। वही मैं बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिए, मतलब फैंटास्टिक आंसर्स पहुंचाए हैं। लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे जवाब आ गए हैं भाई जो मेरी ना उम्मीदों से बिल्कुल परे हो गए। मतलब एक्सपेक्टेशन तो भाई साहब मैं कर ही नहीं सकता आपसे इस बारे में कि ऐसे भी जवाब आएंगे। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए। थैंक्स लॉट, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं, उसके लिए शुक्रिया। एंड आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास ढेर सारे संदेश पहुंच चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आपका रेडियो सुन के सच में बहुत ही मजा आता है, और आप बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। अच्छा जी, मुझे पता नहीं था वैसे। एंड बहुत ही फन आप क्रिएट करते हैं आपके शो में, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर आपका। अरे बाबा, थैंक यू सो मच। इतनी बातें करने के बाद नाम भी लिखा आपने, हाँ गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ढेर सारे मैसेज जो आपने किए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे पास मैसेज पहुंचा है, आंसर है सड़क। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मुरादाबाद से मैसेज कर रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग, क्योंकि सड़क अच्छा ओके सड़क ऊपर भी जाती है रणवीर जी, नीचे भी आती है, और अपनी जगह से कभी हिलती नहीं है। वाह वाह वाह, मतलब कमाल कर दिया, कमाल कर दिया यार आपने, बहुत ही बढ़िया। वैसे इसका आंसर खैर कुछ और ही है, कोई कटोरी कह रहा है, कोई कैट कह रहा है, कोई डॉग कह रहा है, मतलब कुछ भी, व्हाटएवर। क्या मैसेजेस आ रहे हैं भाई साहब। एंड गाइज, डोंट डू दिस, आपको अब ये नहीं लिखना है कि ये कैट है या फिर ये सड़क है, इसका सही जवाब कुछ और है। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास एक मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है आनंद भैया? हेलो, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मेरे पास मैसेज आ रहा है अरोड़ा जी का, इन्होंने मुझे लिखा है हाय गुड मॉर्निंग उषा अरोड़ा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये लिखते हैं आज के पहली का आंसर ईयर, यानी कि हवा। अच्छा, हवा ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, और अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है यार। मुरादाबादी के जो जवाब है ना भाई साहब, कदई जहर हो रखे हैं आज की सुबह। यार भाई मुझे मारो, क्या ही हो रहा है ये। लेकिन तालियां यार सबने, मतलब जो है अपनी क्रिएटिविटी लगाई है, दिमाग लगाया है सबने, नो डाउट। एक भाई साहब का मैसेज आया है, ये कौन है? रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी साहब लिखते हैं धूप। वाह, धूप कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है, लेकिन ये अपनी जगह से कभी नहीं हिलती। वाओ ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड आपने जो पहेली पूछी है उसका जवाब है, इन्होंने क्या लिखा है, ये आई डोंट नो, मुझे इनका ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने लिखा क्या है। थोड़ा सा आप प्लीज मुझे दोबारा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इनके नंबर की 4 डिजिट है 6138, इनका नाम इन्होंने लिखा है। ओके, आई एम भूमि, हाय भूमि हाउ यू। भूमि, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप जुड़े हो, लेकिन आपने जो लिखा ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है, दोबारा लिख के पहुंचाऊ। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, हाउ आर यू? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मेरे पास मैसेज आ रहा है सर बबली एंड साथ में अंजना, गुड मॉर्निंग राधे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आई होप आप भी अच्छे होंगे। इन्होंने लिखा है आनंद जी, इसका जवाब है सड़क। मेरा नाम बबली है, साथ में इन्होंने बताया है, हमारे साथ राधिका जी भी जुड़ी हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसका जवाब सड़क तो ना है, ना जी ना, सड़क नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। गुड मॉर्निंग जय श्री राम आनंद जी, ये कौन बात कर रहे हैं? दुर्गेश सैनी मेरे साथ जुड़े हैं। रेडियो की सुई कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, अच्छा जी, बट कभी हिलती नहीं है। वाह वाह भावना जी, बहुत बढ़िया। मेरे पास मैसेज कर रहे हैं विक्की सागर जी, रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, और लिखते हैं इसका आंसर है धूप। वाह जी वाह, मतलब कमाल है, कमाल है, कमाल है यार। सोच लो, अभी भी आपके पास मौका है, बता सकते हो आप ऐसी कौन सी चीजें जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है लेकिन कभी हिलती नहीं है। बॉस आप जो मैसेज कर रहे हो यार, मैं मतलब क्या ही बताऊं यार, क्या ही मैं बोलूं। खैर एनीवेज, आगे बढ़ेंगे इसी बात के साथ। 20 जून को एक बहुत ही फैबुलस शो लेकर आ रहे हैं हम आपके मुरादाबाद शहर के अंदर। ये 20 जून को रामगंगा बिहार में होने वाला है, स्पेशली लेडीज के लिए शो है, सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप। इसमें अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी आप लोग डेफिनेटली पहुंचिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपकी वेलकम का यार, आप प्लीज आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। 20 जून 2026 स्पेशल होने वाली है, एक बहुत ही प्यारी आप लोगों के साथ गेट टुगेदर, बहुत ही अच्छा यू नो प्रोग्राम जिसमें आप बहुत सारे प्राइज क्विज जीत सकते हैं, कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें होंगी वहां पर, सब कुछ यहाँ तो नहीं बता सकता मैं।
1: जो पिच लड़ाने जाएगी
0: 20 जून को ये होने वाला है रामगंगा बिहार थाईचली लॉन में, तो डेफिनेटली आप प्लीज आइए, हम इंतजार रहेगा, हम सब आपको वहां मिलने वाले हैं। अभी आपको मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन गाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक, अरिजीत सिंह की आवाज, साथ में जोनिता गांधी देंगी साथ। आहा, और झुमका, मैं इनका झुमका ढूंढ कर आता हूँ, ये गाना सुनो, गुड मॉर्निंग।

0: हुआ झुमका?
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे थे जब है सेरी, ये जो गाना है ना बहुत ही प्यारा है यार, आई लव दिस ट्रैक। और एक तो अरिजीत सिंह इतना प्यारा गाते हैं, प्रीतम का इतना खूबसूरत म्यूजिक हो तो गाना ऑफकोर्स अच्छा हो जाता है। जब हैरी मेट सेजल से ये गाना भी आपने एंजॉय किया हवाएं, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक। एंड ऑफकोर्स ऐसे गाने जब सुबह सुबह सुनने को मिलते हैं तो सुबह और भी अच्छी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आपने किए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश, तालियां आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जरा आप लोगों के संदेशों को इमीडिएटली शामिल करेंगे। जी सर कहिए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार। राधे राधे।
1: पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सबसे सच्चा सुख है। खेल में हारा हुआ इंसान दोबारा कोशिश करने पर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। राधे राधे। विंदास मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं विंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ। गर्मियों का समय चल रहा है, गर्मियां बहुत अधिक हैं और तपिश बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सभी से अनुरोध है कि अगर हो सके, अगर कोई काम ना हो तो 11 से 4 घर से ना निकलें और इस तपिश से बचकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जाकर देखिएगा हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा लाइन लगी पड़ी है। सभी इस गर्मी से परेशान हैं, बीमार हैं, इस समय लू लग रही है, बुखार आ रहा है, डायरिया हो रहा है, इसीलिए अपना जीवन स्वस्थ रखने के लिए धूप से बचें और घर से निकलना हो तो एक बोतल और एक गमछा हमेशा साथ रखें। नमस्कार राधे राधे। मैं बुकी शर्मा, नगर पंचायत भागपड़ा से। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ एफएम मुरादाबाद पर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही आनंद आया मुझे आपकी ये बात सुन के, बहुत अच्छा कहा। बिल्कुल 11 से 4 घर में रहना है अगर बहुत ज्यादा आपने इंपॉर्टेंट काम से नहीं निकलना है तो, लेकिन यार हमें तो निकलना पड़ेगा भाई। आगे बढ़ते हैं और अभी हम बताते हैं, एक मैसेज आया हमारे पास मुकुल का। मुकुल जी लिखते हैं, आनंद जी मेरी लाइफ में ना एक चीज़ है जो आपने बताया ना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती है और एक ही जगह पर रहती है, कभी हिलती नहीं है, वो है मेरी सैलरी। कभी ऊपर चली जाती है सपनों में, कभी रियलिटी में नीचे आ जाती है, तो भाई मेरे को समझ में नहीं आता और हिलती भी नहीं है मेरी भाई कहना क्या चाहते हो मुकुल जी। एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज शिखा। हाय शिखा, हाउ आर यू, आई होप आप अच्छे होंगे। शिखा लिखती है, ऑफिस का एसी का जो टेम्परेचर है कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे होता रहता है और एसी वहीं की वहीं रहती है, तो मुझे लगता है इसका जवाब इसी है। वाह वाह दीदी वाह, कमाल कर दिया आपने तो, मतलब क्या दिमाग लगाया आपने, मतलब एसी का टेम्परेचर कम करो ज़्यादा करो, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा लेकिन अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, वो एसी है। वाह दीदी वाह, बहुत ही बेहतरीन, मतलब क्या दिमाग लगाते हो यार, थैंक यू सो मच शिखा जी, थैंक यू। बट इसका जवाब ये भी नहीं है। एक मैसेज आया है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आपके। ये लिखते हैं कि मुझे लगता है इसका जवाब आनंद जी जो आपने पूछा है लिफ्ट होगा, लिफ्ट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है और ये अपनी जगह से कभी भागती भी नहीं है। वाह क्या दिमाग लगाते हो यार। चलो आप इसका सही जवाब क्या है बताता हूँ मैं आपको, देखता हूँ किसी ने पहुँचाया या नहीं। ये हमारे साथ जुड़ी हैं, इनका नाम इन्होंने नहीं लिखा है, गुड मॉर्निंग बस पहुँचाया है, थैंक यू सो मच। अलका वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं आज की सुबह, इन्होंने लिखा है, हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हालचाल हैं आपके। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, आई होप आप भी अच्छे होंगे। अलका जी आपने जो लिखा है ना, बताऊंगा भी आपको क्या ऐसे जवाब। हेलो आनंद भैया गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं। प्रेम सेनी पीपटपुरा से बात कर रहा हूँ, कैसे हालचाल हैं। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, लिखते हैं आपके सवाल के जवाब है पलक। वाह। गुलाम जिलानी पाशा जुड़ गए हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं। गुड मॉर्निंग, दिस इज मी रिधमा, हाय रिधमा गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और ये हमारे पास मैसेज पहुंचा है रिजवान खान साहब का, ये लिखते हैं, हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं। सर मुझे लगता है कि सही जवाब है दीवार, दीवार जो है। अच्छा दीवार कैसे हो सकता है भाई। अच्छा ओके, इन्होंने पूरा लिख दिया है, ये लिखते हैं कि आनंद जी आपने जो पहली पूछी है उसका जवाब हो सकता है दीवार पर लगी घड़ी, जो एक ही जगह पर रहती है जिसके से ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, और शायद यही है सही जवाब। आनंद जी हमारे यहाँ पर, अच्छा जी क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा लिख के पहुँचाया है आपने, थैंक यू सो मच। और आप जो बता रहे हैं ना रिजवान साहब, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है। सेम इसके नीचे मेरे पास एक और मैसेज आया है, रुद्रपुर से देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हैं उमाशंकर जी, अवंतिका एंड अर्चित, इन्होंने भी घड़ी बता दिया है। ये रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वीके जी ने लिखा है, धूप भाई मुझे मारो, लेकिन मेरे पास सही जवाब आया है भूमि का। गुड मॉर्निंग भूमि, थैंक यू सो मच। भूमि ने मुझे लिखा है, सर आप अच्छे होंगे, और मेरी जो आपने पहली पूछी है उसका मेरा सही जवाब है सीढ़ी। एब्सोल्युटली सही कहा आपने, सीढ़ी हमें ऊपर भी लेके जाती है, नीचे भी लेके आती है, और वही की जगह पर स्टेबल रहती है। हालांकि आप उसे उठा के कहीं भी रख सकते हो, जो वो पहले वाली सीढ़ी आती थी ना उनको तो आप कहीं भी ले जा सकते थे, लेकिन अभी जो आपके घर में सीढ़ियाँ आ गई है ना वो परमानेंट वाली सीढ़ियाँ हैं, तो उन सीढ़ियों पर आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, वो कहीं और जाएंगी भी नहीं। इसका जवाब यही है। वेल थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए, आपने इतनी मेहनत करी उसके लिए जोरदार तालियां। 9:55 हो गए हैं, आज 10 जून को एक बहुत ही धाकड़ बॉलीवुड सिंगर, प्लेबैक सिंगर का बर्थडे होता है, उनकी आवाज़ में गाना प्ले कर रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सिंगर की आवाज़ है, ये लास्ट मौका आपके पास होगा। म्यूजिकल क्वेश्चन, इस गाने में कौन से सिंगर की आवाज़ है। आज के दिन का बर्थडे होता है,
2: लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे,
0: हाय
2: लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे।
0: मैसेज करके बताना है जो आवाज अभी आप सुन रहे हैं कौन से सिंगर की आवाज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, 10 जून को इनका बर्थडे होता है, गूगल नहीं करना है, आपने दिमाग लगाना है, और इस गाने में कौन से बॉलीवुड प्ले बैक सिंगर की आवाज है जरा पहचान लो।
2: कनेक्शन
0: कौन है सिंगर,
2: लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे,
0: क्या बात है,
2: लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे।
0: चलो अभी मैसेज करो, मुझे इंतजार है आपके व्हाट्सएप का, 9837896896, बिल्कुल सही वाला जवाब बताओ, 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। कौन से प्लेबैक सिंगर का भी आपने गाना सुना है, नाम बताना है उनका आपने मेरे को।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
5: स्टेशन क्लॉक में 10:02 हो गए। आनंद के साथ हैं आप। आज की सुबह एक बहुत ही अमेजिंग प्लेबैक सिंगर का बर्थडे मनाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग आपको वही गेस्ट करके बताना है। लास्ट मौका है, जरा से देर में लेकर आता हूँ किसी एक लकी कॉलर को। आप में से कोई एक होगा मेरे साथ आज की सुबह हमारे रेडियो स्टेशन पे लाइव फोन के माध्यम से जुड़ेंगे। आप में से कोई एक लकी कॉलर, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे स्टेशन से कॉल्स आए, तो आपको बताना है कौन से सिंगर की आवाज है, कौन सा सिंगर है। बाजी, ये धाकड़ आर्टिस्ट है,
6: लग गए चार सौ।
5: आज इनका बर्थडे होता है।
6: छूने से दर लग गए चार सौ चाल से बोल्ड, छूने से दर, छूने से दर, छूने से।
5: चलो चलो चलो, अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। आप मेरे को मैसेज करके बताओ फटाफट से 9837896896 पर। अभी जो आपने गाना सुना है वो कौन से सिंगर की आवाज में है, ये गाना भी आपको काफी हेल्प करेगा।

something. ये गाना ऑफ कोर्स आपको बहुत हेल्प करा होगा आज का सही जवाब पकड़ने में, मेरी बहुत ज्यादा भाई साहब जो है मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी तो हेल्प हो ही गई है, आपकी भी हेल्प होगी क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आए हैं आप लोगों के, थैंक यू वेरी मच। और आज के हमारे लकी वाले सुपरस्टार जिन्होंने मेरे को सही जवाब दिया है, जिन्होंने मेरे को बताया है कौन से सिंगर की आवाज है।

0: Geçer sıcağını zıbordu hay.
1: Gelmedin.
0: Geçer sıcağını zıbordu çoğunu sen.
1: देखो भैया हमें नहीं पता छूने से बोर्ड लगे झटके लगे या नहीं लगे जो भी था व्हाटएवर बट इसका सही जवाब सबसे पहले मुझे अमित वर्मा जी ने दिया था. अमित जी कांग्रेचुलेशन. अमित जी को मैंने कॉल किया बट अमित जी थोड़ा सा बिजी हैं, वो कहीं पर हैं अभी, इसलिए वो मेरे साथ लाइव नहीं आ पाए. मेरी उनसे बात हुई बट अमित जी वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. कंग्रेचुलेशन. बाकी लोगों ने भी सही जवाब दिए थे एंड एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर. मीका सिंह आज इनका होता है हैप्पी वाला बर्थडे. 10 जून को मीका जी का जन्म हुआ. बहुत ही कमाल के फैबुलस सिंगर हैं. बहुत अच्छे अच्छे गाने मीका बाजी ने दिए हैं, काफी हैपनिंग गाने दिए हैं. तो आज मीका बाजी का बर्थडे होता है तो हमारे पूरे FM फैमिली की ओर से मीका सिंह को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई होप अगर आज की तारीख में आपको भी बर्थडे हो तो आप अपना बर्थडे मीका जी के साथ सेलिब्रेट करते हैं. तो वैसे ही सेलिब्रेट करते रहिए, सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन. और सुनते रहिए आरजे आनंद को भी. फिलहाल तो लेता हूं अब जाने की इजाजत क्योंकि जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे, है ना. आपके बहुत सारे मैसेज आए हैं आज, तो इतनी सारे मैसेजेस आ गए हैं कि शायद मैं पढ़ भी ना पाऊं. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैसेज आ गए हैं. चलो अच्छी बात है, तो आपका प्यार है यार. रणवीर सिंह जी ने एकदम सही जवाब दिया था आज की सुबह. थैंक यू सो मच मेरे भाई जुड़ने के लिए. हाय गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज प्रखर. हाय प्रखर, गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए. सही जवाब के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया. 10:10 हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन. आप देख रहे हैं समय कितनी तेजी से भागता है. कश्मीर से हमारे दोस्त जुड़े थे आज की सुबह में. राज जी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. इसके अलावा हमारे पास मीका सिंह का ये जो आंसर पहुंचा है वो भूपि शर्मा जी ने पहुंचाया है सही जवाब नगर पंचायत पागवाड़ा से. थैंक यू सो मच. मेरे पास राधिका जी का सही जवाब आ गया था यहाँ पर. एंड मीका सिंह दिस इज राइट आंसर. हेलो जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है. मैं फिरोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं मुरादाबाद से. थैंक यू फिरोज सेफी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग. मीका सिंह की आवाज़ है ये. 440 छूने से तेरे ये जो आंसर है दिस इज राइट वाला ये भूमि ने लाइन पार से दिया है. बीकर रूड़े हमारे साथ जुड़े हैं चंदन नगर से. मीका सिंह इज द राइट आंसर. थैंक यू. यशपाल जी यमुनानगर हरियाणा से जुड़ रहे हैं सही जवाब के साथ. रिहाना जी सही जवाब के साथ जुड़ रही हैं. अलका वर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं मेरे साथ आज की सुबह. बस जाने का समय हो रहा है लेकिन उन्होंने एक वॉइस नोट भी पहुंचाया है. जी मैम पहुंचाइए.
2: राधे राधे राधे राधे मैम. गाने को मिक्का ने गाया है.
1: क्या बात
2: आज
1: है?
2: उनका बर्थडे भी
1: बिल्कुल
2: है, तरफ से उनको हैप्पी वाला बर्थडे.
1: अरे वाह वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया. हैप्पी वाला बर्थडे बोल के आपने मजा बना दिया, बहुत ही जबरदस्त. शाबाश.
0: लड़ जाना
1: मीका सिंह दिस इज राइट आंसर. गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप. मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. गुड मॉर्निंग जी. रिजवान खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ आप जुड़े. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे मैसेज हो रहे हैं गाइज, अभी समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपसे बात करूं. मैसेज आ गया है. गुड मॉर्निंग, टुडे इज बर्थडे मीका सिंह. हाय माय नेम इज राजा कश्यप. हाय राजा गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ब्रो. हाय सर गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है. हाय माय नेम इज गुंजन. हाय गुंजन गुड मॉर्निंग. एंड मेरे पास कार्तिक का भी मैसेज आ गया है, इन्होंने मेरे को सही जवाब दिया है. हेलो सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. हेलो हाय गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी आपको भी. चलो गाइज आपको गुड मॉर्निंग. अभी फिलहाल 10:12 हो गए, मैं निकलता हूँ यहाँ से. आपको मिलेंगे कल सुबह फिर एक नई मॉर्निंग में, एक नई बेहतरीन बातों के साथ, एक नई वाइफ के साथ. अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए. जून का महीना चल रहा है जहाँ गर्मी अपने पूरे पीक पर होती है, ठीक है. जून के बाद तो जुलाई आ जाता है जहाँ मानसून शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसे में आपने बहुत ख्याल रखना है. अगर आपको कहीं पर ठंडा जल पानी शिकंजी कुछ भी नजर आ रही है तो भाई जाके उसका लुत्फ उठाओ, और अगर आप खुद भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बांट रहे हो तो बहुत ही बढ़िया. फिलहाल मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए. भैया कर भला तो हो भला इस थॉट के साथ आगे बढ़िए. किसी की मदद लाइफ में जरूर कीजिए. अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए यार, है ना. और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, अपनी लाइफ में बस मस्त रहना है, झकास रहना है और खुद को पॉजिटिव रखना है. ताजा तरीन और बेहतरीन रखने के लिए अच्छे गाने सुनने हैं हमारे स्टेशन पर जो आपको मिलते हैं. आपके लिए जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीवन. आप लोगों ने इतने प्यारे मैसेज करके मेरा दिन बना दिया. अब हम चलते हैं, निकलते हैं, फिर मिलेंगे आपको कल इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे. ख्याल रखिए अपना. बाय बाय, टेक केयर.

0: असंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय, गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो रैंडमली, मतलब पहले बहुत धूप थी, पर अचानक से बादल हो गए और हवाएं भी चलने लगी, तो मुझे लगा अरे वाह क्या बात है, मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। और बहुत अच्छा लगा जब मैं रास्ते में आ रही थी, लाइक एवरी डे इतनी गर्मी होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा सुकून मिला है। और आप सभी का आरजे खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है आप ही के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। एंड आपको पता ही है दोस्तों की खुशी एवरी डे की तरह आज भी ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आई हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत कुछ आज हमारे शो में होने वाला है। और क्या कुछ स्पेशल है वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा। दोस्तों देखिएगा, मुझे मालूम है आप अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़िंदगी में ना फ्री बैठना लाइक अपने आप से जंग करना, और मुझे लगता है कि जब हम व्यस्त होते हैं तो हमारा जो माइंड है ना वो और ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ग्रो करता है। लेकिन अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं, फ्री बैठ जाते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना वो बहुत ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। तो अपने माइंड को ना सोचने का मौका दो, लेकिन फालतू बातें नहीं, काम की बातें सोचने का मौका दो। और अगर मैं आपको टाइम की बात बताऊँ ना, तो यहाँ पर वक्त हुआ है 10:19, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है वेनेसडे का, एंड तारीख है 10 जून की। और दोस्तों ज़िंदगी में ना धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर अच्छी चीज़ को सही समय पर ही मिलना लिखा होता है। दोस्तों कभी भी अपनी मेहनत और अपने सपनों पर शक मत कीजिए। जिस तरह एक छोटा सा बीज धीरे धीरे मिट्टी के अंदर संघर्ष करता है, फिर पौधा बनता है और समय आने पर फल देता है, ठीक उसी तरह हमारी मेहनत भी अपना असर दिखाती है। आज अगर परिणाम नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है कि आपकी सफलता की जड़ें अभी और मजबूत हो रही हों। याद रखिए श्रोताओं, धीरे धीरे बढ़ने वाला पेड़ ही सबसे गहरी छाया देता है। इसलिए दोस्तों खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वही सही समय पर आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। और भी हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, रेगुलर आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, तो खुद पर विश्वास रखिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। जितना आपको मंजिल का इंतज़ार है, उतना मंजिल को भी आपका इंतज़ार है। तो यूँ ही मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए एक बेहतरीन सा ट्रैक यहाँ पर खुशी प्ले कर रही है, इसको एंजॉय कीजिएगा। और श्रोताओं अपने संदेश भी हमें पहुँचाइएगा, अपने ब्यूटीफुल मैसेज भी हमें पहुँचाइए। नंबर 9837896896 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पानी भी पीते रहिए, ठीक है? अगर आप भूल जाते हैं ना तो टेंशन ना लो, खुशी आपको रिमाइंड कराती रहेगी। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिएगा।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। और वक्त आपको बता देते हैं साथियों, 10:32। और अभी आपने बहुत ही प्यारे से ट्रैक एंजॉय किया, बहुत ही प्यारी सी आवाज रघुशाल जी की, साथ में शान जी की आवाज, दोनों बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी जे हो सी। और दोस्तों, नैनो की बात हुई है तो बता देते हैं हम आपको कि आज मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस। और दोस्तों, आज विश्व नेत्रदान दिवस है और ये दिन हमें एक ऐसे महान दान की याद दिलाता है जो किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी भर सकता है। सोचिए, हमारी आंखें हमें इतनी खूबसूरत दुनिया के रंग, अपनों के चेहरे और प्रकृति की सुंदरता देखने का अवसर देती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया को देख पाने का सपना जी रहे होते हैं। नेत्रदान महादान, क्योंकि एक व्यक्ति के नेत्र से दो लोगों को रोशनी, नई रोशनी मिल सकती है। ये ऐसा उपहार है जो जीवन के बाद भी किसी की जिंदगी को रोशन कर सकता है। और साथियों, जब हम किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बनते हैं, तभी हमारी इंसानियत की असली पहचान होती है। और दोस्तों, यदि संभव हो तो नेत्रदान के बारे में जानकारी लें, अपने परिवार से चर्चा करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। और दोस्तों, कहते हैं ना कि मंजिल से बड़ी बात सफर नहीं होती, मंजिल से बड़ी बात सफर नहीं होती, खुशियों से बड़ा कोई घर नहीं होता, जो बांट दे अपने हिस्से की रोशनी, उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। और इस महान दान में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं साथियों। कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। आप बने रहिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और आपके यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं बैक टू बैक, उनको भी मैं शामिल करती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आए हैं। सबसे पहले हमें संदेश मिला है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मैसेज पहुंचाते हैं मोहम्मद यासीन अनजान जी। और साथ में साइमन नवाज हैं, हसन नवाज जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये हमें नमस्कार पहुंचाते हैं। आपको भी नमस्कार सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है कहां से, जरा नजर डाल लेते हैं। ये हमें मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी जी का, साथ में इनके महराज जहां भी हैं। और ये कहते हैं आदरणीय प्रसारक जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। और कहते हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया जी, मोस्ट वेलकम सर। अगला मैसेज हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ से एंड ये जुड़े हैं बबलू साहू, जमुना साहू एंड प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांचल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू। अगला मैसेज हमारे पास आया है कश्मीर से महाराजुद्दीन जी का और कहते हैं आरजी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी परवली सी का और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और भी बहुत सारे संदेश आए हैं, हम उनको भी शामिल करेंगे। और दोस्तों, आज बहुत सारे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे एंड आपसे भी जानेंगे कुछ बातें। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम ही बातें करते रहेंगे, आपसे भी बातें, आपको भी बातें करने का मौका हम देंगे। एंड आज आपकी दिमाग का भी छोटा सा हम टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। और वो क्या होने वाला है अभी आपको बताएंगे, लेकिन एक प्यारा सा गाना जो मेरे जहन में अभी चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा है, तो मुझे लगा कि आज इतना खूबसूरत सा दिन है एंड
नेत्रदान दिवस, तो इस पर ये प्यारा सा गाना तो बनता है ना। आज श्रीश वाडिकर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ साथ में लता मंगेशकर जी दे रही है साथ, और बहुत ही प्यारा सा गाना है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और दोस्तों, वक्त हुआ है 10:49 एंड मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना जुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में, और बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़, एकदम ना मतलब दिल को ना टच कर जाती है उनकी आवाज़। बहुत ही प्यारा ट्रैक होते हैं। और आपको बताइए, शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। मसाले की बातें हुई हैं तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज का दिन बहुत खास है, और आज मैंने आपको बताया जिसे मनाया जाता है राष्ट्रीय जड़ी बूटी एंड मसाला दिवस। और भारतीय रसोई की सबसे बड़ी पहचान है हमारे मसाले। ये सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमारी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। एंड दोस्तों बताएंगे आपकी आपको इसके बारे में भी। धीरे धीरे थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए, खुशी आपको सब कुछ बताने वाली है। अब आप चाहते हैं कि खुशी जी एक सांस में सब कुछ बता दें तो वो तो थोड़ा सा नामुमकिन है। लेकिन हाँ श्रोताओं, धीरे धीरे उसको मुमकिन बनाएंगे। आपके संदेशों को भी शामिल करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं आप सभी के।

हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं इस वक्त, उन्होंने क्या क्या पहुंचाया है फटाफट से मैसेज टाइप कर हमें भेजा है, तो उनको आप मैसेज जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हर साल 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस के दौरान स्वाद का जश्न मनाते हैं, ताकि खाना पकवान में ताजी और सूखी जड़ी बूटियाँ और मसालों का उपयोग से मिलने वाली विविधता और गुणवत्ता को पहचान मिल सके। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी। थैंक यू सो मच सर, आपने ये प्यारा सा मैसेज हमें पहुंचाया है। लेकिन हम इसी से जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल भी पूछने वाले हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से, और कहती हैं, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहती हैं कि आपकी आवाज और आपका अंदाज दोनों ही बहुत प्यारे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत मैम आपका। और ये कहती हैं कि मैम आज मसाला डे है, और कहती हैं कि मैम आज कहती हैं कि रात में बारिश हुई थी, कैसा लगा आपको? नींद खराब करती थी ना मैम? हाँ हुई थी, 4 बजे की राउंड बारिश आई थी, आई रिमेम्बर। जैसे ही बारिश आई हम फटाफट से उठ गए और उसके बाद सोने का दिल ही नहीं किया, लेकिन अच्छा लगा बारिश हुई। लेकिन थोड़ी सी हुई थी, थोड़ी और बारिश होनी चाहिए थी ना। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, नाश्ता भी अभी इस समय राइट नाउ कर रही हैं और रेडियो भी सुन रही हैं। थैंक यू सो मच, आपने फोटो अपनी क्लिक करके भेजी है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रोता इतनी लगन के साथ इतना प्यार देते हैं एफएम मुरादाबाद को। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रामपुर से, शबनम, साथ में राहत अली है, नेहा है, लाइबा काजमी है, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप खुशी जी? मैं बहुत अच्छी हूँ। और इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं, जैसा ये एवरी डे मैसेज करती हैं, आज भी इन्होंने बड़ा स्पेशल सा यहाँ पर मैसेज भेजा है कि आपकी नजरों से दूर हैं आप, नजरों से दूर हैं पर आंखों से नहीं, आप नजरों से दूर हैं पर आंखों से नहीं, आप ख्वाबों से दूर हैं पर ख्यालों से नहीं, आप दिल से दूर हैं पर धड़कन से नहीं, आप हमसे दूर हैं पर हमारी यादों से नहीं। क्या बात है, सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी बातें आप करेंगी ना शबनम जी, तो हम फिर आपके घर आ जाएंगे, और जब आपके घर आएंगे तो हमारे श्रोता बहुत सारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सबका ख्याल खुशी को रखना होता है। एंड थैंक यू, इतने प्यार से आपने इतना प्यारा संदेश भेजा है आज की सुबह। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर कहाँ से आया है, इसको जल्दी से हम शामिल करते हैं। ये मैसेज पहुँचाती है रानी नांगल से रिहाना जी, एंड कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। आप भी अपने मैसेज हमें पहुँचाइएगा श्रोताओं, हमें बीस सब्री से इंतज़ार है। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और एक ब्यूटीफुल ट्रैक सुनवाते हैं आपको, फिर आपसे करेंगे और भी ज़्यादा गुफ्तगू, बहुत सारी बातें, एंड और क्या कुछ स्पेशल है वो सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। पर हाँ, ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, आप यूं ही स्माइल करती रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और एक प्यारा सा ट्रैक गुरु रंधावा जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में, साथ में धोनी भानुशाली जी भी दे रही हैं साथ,

0: को बेस पसंद है।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
6: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
10: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और श्रोताओं, शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। एंड आज हमारे लिसनर विकी सागर जी के सन का बर्थडे है।

का एंड लैब को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छी सेहत, खुशियां, सफलता, उज्जवल भविष्य के हम आपके लिए दुआएं करते हैं, ब्लेसिंग्स आपको भी देते हैं। आपकी हर मुस्कान आपके जीवन को खुशियों से भर दे और आपके सभी सपने पूरे हों। हैप्पी बर्थडे लव। और लाभ के लिए हमने एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर सॉन्ग ही सिलेक्ट किया है। डेडिकेट करते हैं हम लाभ को, लेकिन उससे पहले कुछ और भी संदेश आए हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय मैम गुड मॉर्निंग, रामपुर से सना मलिक का मैसेज हमारे पास आया है एंड सना ने हमें रोज भेजे हैं, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भी भेजी है, पूरी कोशिश करते हैं डियर इसको प्ले करने की। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, हाय गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, ये रामपुर से शमा जी का मैसेज हमारे पास आए, हाय शमा हाउ आर यू। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत देर हो गई है एंड वक्त हुआ है 11:06 और मैंने जो आज सवाल सोच के रखा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप उसका आंसर दे पाएंगे फटाफट से। देखिए, हमारे घर की जो फीमेल्स होती है ना, उनको सब कुछ पता होता है नहीं घर के बारे में, लेकिन मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ। जी हाँ, अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं रसोई और मसालों के बारे में ज़्यादा जानती हैं, लेकिन आज हम अपने जो फीमेल लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, जो फीमेल सुन रही हैं, मेल सुन रहे हैं, तो हम आपकी छोटा सा एक टेस्ट लेना चाहते हैं आपके माइंड का। आप हमें बताइए ज़्यादा से ज़्यादा मसालों के नाम आपको मुझे बताने हैं फटाफट से। जो सबसे ज़्यादा मसालों के नाम बताएगा हम उनसे ऑन एयर बातचीत करेंगे, आज ये मौका हम आपको दे रहे हैं। तो फटाफट से ज़्यादा से ज्यादा मसालों के नाम आप मुझे बताइएगा, नंबर 9837896896। देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन बता पाता है, फीमेल लिसनर्स या फिर हमारी मेल लिसनर्स, जल्दी से बताइएगा। इंतजार आपका अब हम कंप्लीट करते हैं और आप फटाफट से बताओ, देखते हैं कि कौन ज्यादा एक्सपर्ट है, फीमेल या मेल। वैसे तो रसोई में हमारी फीमेल्स रहती हैं, लेकिन मेल्स भी कम नहीं होते हैं, वो भी बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो जल्दी जल्दी से बताइएगा ज्यादा से ज्यादा मसालों के नाम आपको बताने हैं एंड नंबर है 9837896896। जो सबसे ज्यादा मसालों के नाम बताएगा उनको हम ऑन एयर, उनसे हम बातचीत करेंगे और थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे। तो अभी कुछ और भी मैसेज आए हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दूल अंसारी जी भी हैं और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। सो और ये कहते हैं कि आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अरे वाह क्या बात है। और कहते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें। और आज सर ने हमारे फेवरेट गाने की रिक्वेस्ट की कि आप अपना फेवरेट गाना प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर हमने शुभ के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग उनके बर्थडे स्पेशल हमने डेडिकेट करना चाहते हैं। हमारी पूरी एफएम की टीम की ओर से लाभ को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा मसालों के नाम बताने हैं। ठीक है, पीछे नहीं रहना है, हाँ आपको आगे ही रहना है।

0: हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी। और दोस्तों, अभी आपने ब्यूटीफुल ट्रैक सुना, जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना। वही रेडियो के बिना हमारा गुजारा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें रेडियो से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि हम इसके बिना तो अधूरे हैं, हमारी लाइफ भी अधूरी है। क्योंकि जब से हमने स्टार्टिंग से, जब हमने जन्म भी नहीं लिया था, तब से हमारे घर में रेडियो सुना जाता है। और इतना प्यार हो गया है ना कि ऐसा लगता है, जैसे एक दिन अभी मेरा हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है सैटरडे को, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब हो जाता है, इतने काम होते हैं एंड कभी ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो लगता है ज़िंदगी में कुछ तो अधूरा रह गया है। लेकिन जब हम फिर से अगेन रेडियो पर वापस आते हैं, रेडियो से कनेक्टिविटी बनाते हैं, रेडियो के साथ जुड़ते हैं और आपसे भी हम जुड़ते हैं, तो श्रोताओं लगता है कि हाँ, अब ज़िंदगी कंप्लीट लग रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे प्यारा प्यार हमारा रेडियो है। और दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता एंड संवाद दिवस मनाया जाता है और इसी पर हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद, आज ये दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि संवाद दिवस आज जो मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये दिन हमें सिखाते हैं कि दुनिया में चाहे कितनी भी भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हों, लेकिन सम्मान और संवाद हमें एक दूसरे के करीब लेकर आता है। हर इंसान की सोच अलग हो सकती है, हर देश की संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तभी सच्ची मानवता की शुरुआत होती है। और आज का संदेश, जब हम सुनना सीख जाते हैं, तब हम समझना भी सीख जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई विवाद केवल इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग अपनी बातें तो कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की बातें सुनना नहीं चाहते। इसीलिए संवाद बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी खूबसूरत सी पंक्ति है कि बातचीत वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है और दूरियों को मिटा देता है। जैसे आपकी और हमारी बातचीत होती है तो हम कितना कनेक्टिविटी फील करते हैं ना, एक अपनापन होता है। और मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था अभी, आई रिमेम्बर, आपको याद है ना? चलो, याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ। मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मसालों के नाम मुझे बताने हैं, और जो सबसे ज़्यादा मसालों के नाम बताएगा, आज हम उनसे लाइव बातचीत करेंगे, कॉल पर उनको हम लेंगे एंड कॉल के ज़रिए उनसे बातचीत करेंगे और उनसे थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे। तो कौन है वो ऐसे लिसनर्स हमारे, इतने क्रिएटिव, जो मसालों के नाम ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएंगे, ज़रा बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पर ना मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी हम क्या करते हैं, आपकी जो संदेश आए हैं उनको शामिल कर लेते हैं। कभी कभी ना ऐसा होता है दोस्तों कि बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन टाइम कम हो जाता है ना, और मेरा दिल करता है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं। और हमारे पास यहाँ पर जो संदेश आए हैं उनको भी शामिल करते हैं। ये मैसेज हमें मिला है गणेश प्रसाद जी का, गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। प्रिय मित्र खुशी जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें संदेश पहुंचाया और आज बहुत दिनों के बाद आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, अपना संदेश पहुंचाया, हमें बहुत अच्छा लगा। एक मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं रणवीर सिंह जी मुरादाबाद से, कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग मैम, कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। थैंक यू अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद से, ही मैसेज हमें पिंकी पहुंचाती हैं और कहती हैं कैसी हैं मैम आप, मैं बहुत अच्छी हूँ, इन्होंने हमारे हाल चाल पूछे हैं, तो बता देते हैं बहुत अच्छे हैं, आप सबका प्यार, आप सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, तो क्या हो सकता है हमें। हाँ, अगला मैसेज हमें मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये भी अपनी फैमिली के साथ इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और आपने तो कमाल ही कर दिया श्रोताओं, इतने सारे आपने मसालों के नाम बताए हैं। आई कांट बिलीव दिस यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि इतने नाम तो मुझे भी नहीं पता था। और कौन है वो लकी लिसनर्स जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा मसालों के नाम बताए हैं, वो हम लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन मैंने आपसे भी पूछा है, आप भी मुझे बता सकते हो ज्यादा से ज्यादा मसालों के नाम आपको मुझे बताने हैं। फटाफट से अपना मैसेज पहुंचाओ नंबर 9837896896। आप कोई कंजूसी मत करना, ठीक है? भले ही मैं आपसे दूर हूँ लेकिन मेरी निगाहें ना आप ही के पास है, मतलब आप ही को देख रही है। कैसे? मन की आंखों से। चलो अभी बहुत सारी मस्ती हो गई है ना, अब गाना सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे। ओके, तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, हमारी जो फीमेल्स लिसनर हैं उनके लिए है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करके थक जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको आराम मिले, थोड़ा सा वो डांस करें। भले ही किचन में रोटियां बना रही हूं, हाँ, लेकिन ध्यान रखना है रोटियां जल ना जाएं, वरना फैमिली में ना मम्मा जो है ना बहुत डांट लगाने वाली हैं। ठीक है, तो काम भी करो लेकिन एंजॉय भी करो, ठीक है? दोनों चीजों को मेंटेन करो और ही प्यारे से गाना सुनो।
1: खाना के

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी है आपके साथ और ये है आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन. दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी राउडी राठौर से. तो मैंने कहा चलो अभी कुछ गाने तो हमने सुनवा ही दिए अपने श्रोताओं को, लेकिन दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा मसालों के नाम आपको मुझे बताने थे. और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, लेकिन एक ऐसा मैसेज आया है जिन्होंने 75 मसालों के नाम बताए हैं. मैं रियली बताऊं तो मुझे भी इतने सारे मसालों के नाम नहीं पता था, लेकिन उस प्यारी सी ब्यूटीफुल से लिसनर ने हमें बताए हैं. आइए उनसे बातचीत करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था श्रोताओं कि जो सबसे ज़्यादा मसालों के नाम बताएगा हम उनसे ऑन एयर बातचीत करने वाले हैं. तो कौन कहाँ से जुड़ी हैं, क्या उनका नाम है, उन्हीं से जानेंगे हम. हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग. हेलो
1: हेलो,
0: हाय, गुड मॉर्निंग राधिका.
1: गुड मॉर्निंग जी,
0: कैसे हो आप बताइए.
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो.
0: हाँ जी, आई एम फाइन. बताइएगा कैसे लग रहे हैं आज. आपको मैंने कॉल किया है,
1: पहली बार आपने मेरा कॉल उठाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
0: अच्छा लग रहा है राधिका, आप क्या करती हो बताइए जरा अपने बारे में.
1: मैं स्टडी करती हूँ, मैं 10th क्लास में आई हूँ, अब मेरे बोर्ड एग्जाम है.
0: ओके, तो कैसी तैयारियाँ चल रही हैं.
1: पढ़ाई में भी बहुत अच्छी चल रही है,
0: तैयारी अच्छी
1: चल रही है.
0: बहुत अच्छी बात है, हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एडवांस में.
1: मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मैसेज देखा.
0: एवरी डे हम आपका मैसेज देखते हैं. अच्छा ये बताइए मुझे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी हमने मसाला मास्टर चैलेंज में आपने पूरे 75 मसालों के नाम बताकर कमाल कर दिया है. और सच बताइए इतनी जानकारियाँ आपको कैसे कैसे मिली.
1: मम्मी ने बताया था मुझे.
0: ओके, तो आपको आपकी मम्मा ने गाइड किया है, बताया है.
1: हाँ मम्मा ने बताया, मेरी और स्कूल में पढ़ाई होती है ना, स्कूल में बताते हैं.
0: ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच राधिका. आपने 75 मसालों के नाम बताए, मैं तो हैरानी हो गई. मैंने बोला हे भगवान कौन है ये बच्ची, जरा हम भी तो बात करते हैं राधिका से. थैंक यू सो मच राधिका, आज की आप हमारी लकी विनर बनती हैं. और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. और जितने भी मसालों के नाम बताए हैं वो हम ऑन ईयर अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है
1: जी.
0: ओके, बाय बाय, टेक केयर.
1: बाय बाय.
0: तो चलिए, ये तो राधिका हमारे साथ कनेक्ट हुई थी एंड इन्होंने बताए थे पूरे 75 मसालों के नाम. तो दोस्तों हम बता देते हैं कि राधिका ने जो जो नाम बताए हैं मसालों के, शायद आपको भी याद हो जाए. फिर आप सोचेंगे ओहो ये तो मुझे भी मालूम था पर मैं क्यों नहीं बता पाया उस वक्त. बता देती हूँ आपको. देखिए दोस्तों, बेसिक पिसे हुए मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च एंड लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, सौंठ पाउडर, काली मिर्च पाउडर और सफ़ेद मिर्च पाउडर एंड साबुत खड़े मसाले, जीरा, राई, सरसों, मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी एंड सौंफ, शाही जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल एंड चक्रफल. ये कौन सा है मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों. देखिए कितने सारे मसालों के नाम हैं जो हमें भी नहीं पता है. नाग केसर भी है एंड पत्थर फूल भी है. ओहो, नेक्स्ट इन्होंने बताया है गरम मसाला, सब्जी मसाला, छोले मसाला, राज मसाला, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, सांभर मसाला एंड रसम पाउडर. ये कौन सा है भाई, रसमें सुना है रसम पाउडर, ये मुझे पहली बार पता चला है. किचन पाउडर और बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, दम आलू मसाला, पनीर बटर मसाला एंड उसके अलावा इन्होंने बताए हैं पत्ती वाले मसाले, सूखे मसाले जैसे कस्तूरी मेथी, करी पत्ता, पुदीना पाउडर, तुलसी पाउडर एंड लेमन ग्रास एंड इन्होंने और भी बताया है अनारदाना, इमली पाउडर, टमाटर. ओहो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है ना, थैंक यू सो मच डियर. मुझे बेसिक मसाले पता था लेकिन इतने सारे मसाले होते हैं ये नहीं पता था. और इन्होंने पूरी मतलब इनको कह सकते हैं हम किचन सेफ क्वीन बोल सकते हैं, भले ही किचन में काम इतना नहीं करती हैं लेकिन इतना सारा कुछ पता है. और ये क्रेडिट राधिका को तो जाता ही है लेकिन उनकी मम्मा को ज़्यादा जाता है क्योंकि उनकी मम्मा ने ही उनको जानकारियाँ दी हैं. और मम्मा पापा ही तो होते हैं जो हमें बताते हैं सारी चीज़ों के बारे में. और राधिका जी, आज तो मुझे भी लग रहा है कि आप मसाला क्वीन का खिताब जीत चुकी हैं, मानेंगी ना? वैसे हमारे और श्रोताओं के भी जवाब आए हैं तो उनको भी हम क्विकली शामिल करते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने मसालों के नाम हमें बताए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, जीरा, अजवाइन, खसखस, सुंदर फूल एंड दालचीनी। ये सर ने नाम अपना लिखा है, आई रिमेम्बर, चेकआउट करते हैं। सर ने अपना नाम यहाँ मैंशन तो नहीं किया लेकिन इनका नाम शॉप व्हाट्सएप पर आसिफ हुसैन जी ने ये मैसेज अपना पहुंचाया है। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से, और ललिता जी ने भी मसालों के नाम बताए हैं, हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, मेथी, सौंफ, अजवाइन, राई, सरसों, हींग, जायफल। थैंक यू सो मच बताने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, राम राम जी, नमस्कार खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको भी राम राम। ये मैसेज पहुँचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना है, कांट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुँचाते हैं। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। ये मैसेज पहुँचाते हैं आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी, एंड साथ इनके फ्रेंड भी हैं शाद अंसारी जी। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है फ्रॉम द मूवी गदर 2 से। वैसे शारिक जी, हम आपसे मालूम करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि आप शिमला गए थे घूमने के लिए, कैसा रहा आपका शिमला का टूर, जरा बताइए वहाँ के बारे में, क्या खूबसूरत लगा आपको? वैसे तो बहुत खूबसूरत है लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे जहन में बस जाती हैं, और हमारी मतलब ऐसा लगता है हम भले ही मुरादाबाद आ जाते हैं लेकिन शिमला कि जो यादें हैं, जो बातें हैं, जो जगहें हैं वो आंखों में बस जाती हैं, कुछ खूबसूरत जगहें। तो आप मुझे बताइएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, और ये प्यारा से गाना सुनिएगा, बस लौट कर आते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पर।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
9: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
10: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
9: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
11: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
12: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और जी हां, तो धड़कता ही है साथियों, जब बाहर कोई काम हो और गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो दिल यही कहता है कि बाहर मर जाओ, लेकिन क्या करें, काम की वजह से निकलना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कॉटन का कपड़ा अपने साथ रखें, कॉटन का गमछा जिस पर आप अपने सर पर उसको ढक सकें और धूप से आप बच सकें, और गॉगल्स भी लगाएं, चश्मा अपनी आंखों पर ज़रूर लगाएं, एंड ढेर सारा पानी पीते रहें। जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसेस जो आपको फेवरेट हैं, जो आपको पसंद हैं, अब वो ले सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, एंड अभी यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं, उनको भी मैं शामिल करती हूँ जल्दी से बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हुए हैं। और हमारे पास ये मैसेज हमें मिला है यहाँ पर मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका शो हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, एंड सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे प्ले करती हैं आप। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो उनको भी क्विकली मैं शामिल करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास मैसेज पहुँचाया है, हाय मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं मोहिनी एंड मुरादाबाद, कुंदनपुर मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर कार्तिक जी का, और कार्तिक कहते हैं, हेलो मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एंड इस गर्मी में सब अपना ख्याल रखें और पानी पीते रहें। थैंक यू कार्तिक गुप्ता, आपने बहुत अच्छा मैसेज पहुँचाया। इन्होंने मसालों के नाम भी बताए हैं एवरीवन। इन्होंने बताया है कि मसालों के नाम मिर्च, धनिया पिसा हुआ, एंड साबुत धनिया भी इन्होंने बताया है, और हल्दी बताई है, साथ में गरम मसाला, काली मिर्च एंड येलो मिर्च भी होती है। काली मिर्च तो होती है ब्लैक पेपर रेड वाली, लेकिन येलो भी होती है, मुझे नहीं मालूम है। बाकी इन्होंने बहुत सारे मसालों के नाम भी बताए हैं। थैंक यू सो मच कार्तिक। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जाने की आपसे अनुमति लेते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अगेन कब करेंगे? 3 से 5। हाँ, याद है ना आपको? वेरी गुड। तो 3 से 5 आपसे हम बातचीत करेंगे नई बातों के साथ, आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए, क्योंकि उनके बिना ना लाइफ अधूरी सी लगती है ना। जब अपने अपने साथ होते हैं ना तो मतलब बहुत खूबसूरत लगता है, चाहे वो खुशी का पल हो या वो गम का पल हो। जब मुश्किलें आती हैं और अपनों का साथ होता है तो वो मुश्किलें मुश्किलें नहीं लगती हैं, फिर आसान हो जाती हैं। और जब खुशी का पल हो, अपने साथ हो, तो खुशी और बढ़ जाती है।

तो चलिए दोस्तों, मैं जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सभी को यहाँ पर डेडिकेट कर जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है एंड बहुत खूबसूरत सी आवाज़ अदनान सामी जी की, और ये ट्रैक आप सुनिएगा। बस मैं कहना चाहूँगी कि आप चिपके रहिए, बने रहिए, और हाँ, बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलती हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से जुड़ी हुई हो, या फिर खेती किसानी की हो, या फिर बात आपकी हेल्थ की हो, तो सभी आपको जानकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो बस आप इस रेडियो स्टेशन से ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही अपने संदेश, अपने फीडबैक हमें शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है साथियों जब आप सबका प्यार हमें मिलता है। और जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि कीप स्माइलिंग, यूँ ही मुस्कुराते रहिए आप सब। जब आप सब मुस्कुराते हैं तो खुशी को भी बड़ा सुकून मिलता है। चलिए गाना सुनिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, और मैं हूं आपका दोस्त RJ राज। एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा साप्ताहिक शो सेहत सही लाभ कई में के एक खास एपिसोड के साथ। दोस्तों आज है 5 जून, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। इस साल की थीम है वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्या आप जानते हैं ये दिन हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है ताकि हम सभी पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर कदम उठा सकें। इस बार संयुक्त राष्ट्र हमें प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या पर गंभीरता से सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्लास्टिक कचरा हमारी नदियों, जंगलों और समुद्रों को जहरीला बना रहा है, जिससे न सिर्फ धरती बल्कि पशु पक्षियों और हमारी अपनी सेहत पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे हमारे गाँव की सामाजिक कार्यकर्ता और अब तो जानी मानी रेडियो एंकर टीकन भाभी से। जानेंगे उनसे कि हम पर्यावरण को कैसे साफ और सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और उसका सही निपटान कैसे करें।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज का विषय तो हम सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है, जो न सिर्फ हमारे गांव बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है और सभी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा।
2: ये तो सोचने वाली बात है, प्लास्टिक तो जैसे दीमक बन गया है। सुबह उठते ही प्लास्टिक का टूथब्रश, प्लास्टिक के दूध की थैली, प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स, प्लास्टिक बैग में बाजार से सब्जी, स्नैक्स, चिप्स, बिस्किट सब प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। और सोचिए ये सारे पैकेट जिसमें हम सब्जी ले आते हैं या कोई और सामान, उसे तो एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक सैकड़ों सालों तक सड़ता नहीं है और हमारी सेहत पर बुरा असर डालता है।
3: और ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवरों, पर्यावरण और प्रकृति के लिए भी खतरनाक है। यही प्लास्टिक हमारी नदियों, नालों और खेतों में जमा हो जाता है, जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। गौशाला में भी कई गायों के पेट से प्लास्टिक की थैलियां निकाली हैं। सोचिए जब जानवरों का हाल इतना बुरा है तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होगा।
2: प्लास्टिक की बोतलें, पैकेट, जाल जैसी चीजें समुद्र में जा रही हैं और वहाँ रहने वाली मछलियों, कछुओं और पक्षियों की जिंदगी खतरे में डाल रही हैं। हर साल लाखों समुद्री जीव प्लास्टिक निकलने या उसमें फंसकर मर जाते हैं।
3: जहाँ एक तरफ इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहाँ सालों से इसके खिलाफ मुहिम भी चलाई जा रही है। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो स्कूल में हमें नारे लगवाने के लिए रैलियों में भेजा जाता था, धरती माँ करे पुकार, प्लास्टिक से साफ रखो इसका दरबार। हम तो घर घर जाकर लोगों के घरों से प्लास्टिक की थैलियाँ भी इकट्ठा करते थे। एक NGO उन्हें हमारे स्कूल से ले लेती। इस काम के लिए हमें टी शर्ट भी मिलती थी। उस समय जब हम सोचते थे कि ये सिर्फ स्कूल के बच्चों का काम है, लेकिन आज समझ आता है कि पर्यावरण की रक्षा ना स्कूल के बच्चों की ना NGO की है, हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: और बच्चों की बात करें तो छोटे सांप सेहत सिंह भी तो अब अपने स्कूल में ग्रीन ब्रिगेड के हेड हैं। उसने तो पूरे गांव में हर घर में जाकर सब कुछ समझा दिया। अब प्लास्टिक की थैलियां नहीं लानी, सामान लेना है अपने कपड़ों के झोले ले जाओ और उसी में सामान लाओ। आप ही के कदमों पर चल रहा है आपका बेटा।
3: हाँ जी, उसका जोश देखकर अच्छा लगता है, पर सच बताऊं तो उसकी 5 जून की स्पीच में भी मैंने उसकी काफी मदद की है। रिसर्च है कि उसमें मेरे साथ, लेकिन असली पूरी बस्ती को समझाने की चुनौती उसी ने ली है। अभी तो हर दुकान और ठेले वाले के पास जाने का बीड़ा उठाया है इन बच्चों ने।
2: बिल्कुल भाभी, वैसे एक बात बताइए, आपने तो इस विषय पर काफी रिसर्च कर ली है, ये विश्व पर्यावरण दिवस शुरू कब हुआ?
3: इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, जब स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तभी से हर साल 5 जून को ये दिन मनाया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को जोड़ा जा सके। हर साल एक नई थीम अनाउंस होती है
2: और इस साल की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण। हमने कुछ बातें तो की हैं, लेकिन आखिर प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए इतना खतरनाक क्यों है?
3: देखिए, प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या है कि ये जल्दी नष्ट नहीं होता। एक बार बना तो सैकड़ों साल बना रहेगा, और जब ये टूटता है तो माइक्रोप्लास्टिक बनता है जो मिट्टी, पानी और हवा में मिल जाता है, और अब तो हमारे शरीर में भी घुस गया है।
2: शरीर में प्लास्टिक, भाभी ये तो डराने वाली बात है।
3: हाँ, सच्चाई तो यही है। जब हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं या प्लास्टिक कंटेनरों में खाना गर्म करते हैं तो उससे निकलने वाले केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं। इससे हार्मोन गड़बड़ हो सकते हैं, बांझपन, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
2: और ये माइक्रोप्लास्टिक आखिर होता क्या है?
3: बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। ये नमक, शहद, दूध या यहाँ तक कि हवा में भी पाए जाते हैं। जब जानवर इन्हें निगल लेते हैं तो वह बीमार पड़ते हैं, और जब हम वो मछली खाते हैं या दूध पीते हैं तो ये हमारे शरीर में पहुँचता है।
2: और कई गाँव में लोग प्लास्टिक जलाते हैं, कुछ महिला तो इसे ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करती हैं।
3: ये तो और भी खतरनाक है। प्लास्टिक को जलाने से निकलती है जहरीली गैस डाइऑक्सिन, फिरॉन जैसे, ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, बच्चों की ग्रोथ पर असर डालती है, और अगर बारिश हो रही हो तो ये गैस पानी में घुलकर जमीन और फसलों को भी प्रदूषित कर देती है।
2: तो समाधान क्या है भाभी?
3: समाधान है रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज। रिफ्यूज यानी जो प्लास्टिक जरूरी नहीं उसे लेने से मना कर दो। रिड्यूस मतलब जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना कम करो। रियूज एक ऐसी चीज को बार बार उपयोग में लाओ। रिसाइकल, प्लास्टिक को सही तरीके से इकट्ठा करके रिसाइकल करो।
2: और प्लास्टिक बैंक की बात आपने की थी?
3: हाँ, प्लास्टिक बैंक एक ऐसा ढांचा है जिसमें लोग अपना प्लास्टिक डाल सकते हैं।
2: मैं समझ नहीं पा रहा कि ये बैंक कैसे हो सकता है, क्या आप समझा सकती हैं कि ये असल में क्या है?
3: बिल्कुल, आप एक ऐसे मजबूत पिंजरे जैसे संचारण की कल्पना कीजिए जो आमतौर पर पहले लोहे की जाल या बांस से बनी होती हैं। इसमें एक छोटा सा मुंह होता है जहां लोग अपना प्लास्टिक कचरा डाल सकते हैं। इस ढांचे को प्लास्टिक बैंक कहा जाता है। इसे प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर लगाया जा सकता है, जैसे स्कूल, मंदिर, बाजार या पंचायत कार्यालय के पास, ताकि गांव का हर व्यक्ति आसानी से इसका उपयोग कर सके। जैसे बैंक में पैसे को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही प्लास्टिक कचरे को एक जगह इकट्ठा करके उसे सड़कों पर फैलाने, नालियों में जाने और गायों जैसे जानवरों के गलती से खा लेने से रोकता है। और सीमेंट का बेस देकर बनाया जाए तो बारिश में भी टिकाऊ रहेगा।
2: ओ, तो सिर्फ प्लास्टिक बैंक लगाना ही काफी नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका सही उपयोग हो और इनकी देखभाल होती रहे। इसके सही इस्तेमाल के लिए ग्राम पंचायतों को आगे आना होगा, पंचायत के साथ मिलकर जागरूकता फैलाकर और इस पहल को अपनाकर समुदाय भी इसमें अहम भूमिका निभा सकता है।
3: पंचायत ही क्यों, जैसे मैंने कहा, स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर कोई भी लगा सकता है, लेकिन भर जाने पर इन्हें खाली करना और उस प्लास्टिक को रिसाइकल या इस्तेमाल के लिए कदम उठाना जरूरी है।
2: लेकिन पंचायतों को क्या करना चाहिए?
3: पंचायतों को खुद आगे आकर लोगों को जोड़ना चाहिए। महिला मंडली, युवक मंडली और स्कूल मिलकर इसे आंदोलन को बढ़ा सकते हैं।
2: और महिलाएं भी क्या इस काम में भाग ले रही हैं?
3: हाँ, बहुत से स्वयं सहायता समूह अब इस पर काम कर रहे हैं। हमारी समिति ने भी अब तय किया है, अब से कपड़े के थैले ही चलेंगे। हमारे SHG की महिलाएं कपड़े के झोले बनाकर बेच रही हैं और प्लास्टिक बोतलें इकट्ठा करके रिसाइकल यूनिट को दे रही हैं।
2: और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई और समाधान अपनाए जा रहे हैं?
3: हाँ, कई गांवों में तो ग्रे वाटर यानी बर्तन और कपड़े धोने का पानी रसोई बगीचे में दिया जाता है। इससे सब्जियां भी उगाते हैं और पानी की बर्बादी भी नहीं होती।
2: और सरकार क्या कर रही है?
3: सरकार ने 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। स्वच्छता भारत मिशन में प्लास्टिक कचरे का प्रबंध प्लास्टिक से सड़कें बनाना और कंपनियों को EPR के तहत अपनी पैकिंग वापस लेने की जिम्मेदारी सौंपी है।
2: भाभी, कोई और उदाहरण है आपके पास जो प्रेरणा दे सके?
3: तमिलनाडु के कुछ जिलों में प्लास्टिक से दीवारें बनाई जा रही हैं जो गर्मियों में इंसुलेशन देते हैं, और कुछ जगह पर बांस के पेड़ों के नीचे कूड़े केंद्र बनाए गए हैं ताकि बदबू ना फैले।
2: और बच्चों का रोल?
3: बच्चों को शुरुआत सिखाना होगा कि प्लास्टिक जहर है। हमारे स्वस्थ सिंह अब स्कूल में स्टील की बोतल और टिफिन ले जाता है और भी बच्चों को प्रेरित किया है उसने, यही आदत बदलाव लाएगी।
2: बहुत सही कहा भाभी, लेकिन कई लोग के मैसेज आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कहें उन्हें।
3: श्रोताओं, छोटा छोटा बदलाव ही बड़ा परिवर्तन लाता है। आप ये तो आज से ही शुरू कर सकते हैं। बाजार जाते समय थैला साथ रखें, प्लास्टिक बोतल दोबारा इस्तेमाल ना करें, बच्चों को टिफिन और पानी स्टील के बर्तन में दें, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें, प्लास्टिक बैंक की पहल को समर्थन दें।
2: प्लास्टिक बैन का मुद्दा तो पंचायत के चुनाव में भी उठाया जाना चाहिए।
3: बिल्कुल, जब लोग वोट मांगने आए तो उनसे पूछें, उनसे पूछिए क्या आप प्लास्टिक के खिलाफ काम करेंगे, क्या गांव में कूड़ा प्रबंध की व्यवस्था बनाएंगे।
2: दोस्तों, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी कोई

0: नदी, हर खेत, हर शरीर में प्लास्टिक भरा हो, या फिर ऐसा भविष्य जहां हमारी धरती मुस्कुराए, हवा शुद्ध हो और पानी निर्मल हो। दोस्तों, प्लास्टिक नहीं, प्रकृति से प्यार करो, धरती माँ को अब और न बीमार करो।
1: वाह भाभी, यही भावना हमें चाहिए। तो साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब 4R को अपनाने का संकल्प लें, यानी प्लास्टिक को रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करें। हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं।
0: मैं शपथ लेती हूँ, मैं प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करूँगी, अपने परिवार और गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 4R का पालन करूँगी और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूँगी।
1: साथियों, यही हमारी असली सेवा है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पर्यावरण बचाइए, प्लास्टिक से दूरी बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं लेता हूँ अभी के लिए अलविदा। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। जल्दी मुलाकात करेंगे एक और नई एपिसोड के साथ, एक नई बात के साथ जो आपकी सेहत के लिए हो सकती है लाभदायक।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं, उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटरबॉर्न डिजीजेस कुछ हैं, जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशुजनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है। और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें। और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
0: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
1: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
0: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
1: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
0: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
0: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
1: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
0: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
1: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना सही जानकारी समय

0: जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
0: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
5: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहें तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
0: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
5: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
0: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
5: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
5: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
0: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
5: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
0: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
5: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
5: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हो, CHCs हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है, इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जिसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
0: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है।
5: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
0: अच्छा, हमें ये भी बताया डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
5: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है, और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
0: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
5: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को

0: इलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटे छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
0: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी,
1: बच्चे भी काले
0: हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर अनीमिया हो, मॉडरेट अनीमिया हो, तो जरूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि, या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को? ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग

0: किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से। लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है, वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर CSC PSC पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या ANMs हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: जन जन तक पहुंचा संदेश।
4: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
10: अपोजिट
9: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी,
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणबाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियों और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की की विकास परक सोच की खासियत है, विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीसकर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छानकर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगे, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
8: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिस पे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों। तो आज हमारे साथ हैं RJ रीना, RJ कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हालचाल है आप लोगों के?
10: थैंक यू आनंद। सच कहूँ तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
11: बिल्कुल सही कहा, पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते।
12: रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदी हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम होती जा रही है।
9: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
2: बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के रीना कुमकुम के साथ नहीं है, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदि हो गए कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है, जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा, और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
3: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
0: करेक्ट, और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
3: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है, तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा, और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
0: तो मुझे लगता है कि देखिए सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं, उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
3: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
0: करेक्ट,
3: किसके मन में क्या बात। आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी
3: है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, क्या आज आप उदास क्यों है।
0: सही कहा आपने।
4: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
3: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
1: जी। और आज जी। बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
3: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
1: बिल्कुल,
3: अब बातें ज्यादा होती हैं,
1: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
5: हेलो 9821026212 BPL, अरे 9820026235।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो, और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी, और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें घर हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था, अब सबके कमरों में ही पहुंचा देगा और रूम पे टाइम नहीं है बेटा, हम तुम्हारा रूम में मतलब मैं भी आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ, क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था, अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे,
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो
0: लेट नाइट
1: पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती
0: हैं,
1: अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है,
2: टाइम ही नहीं है बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब होना कि हम समय पर सोए समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं, पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है,
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू
0: समझते थे, एग्जैक्टली
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो,
1: बिल्कुल
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं।
0: हाँ।
1: आप लोगों को पहले अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है

0: जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं था, माया अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, माया अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरी थिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
1: ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए, हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए। आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल भैया दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
0: पहले चलो ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है। हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
1: सोचो
0: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं
0: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
1: सही कहा आपने। तो दोस्तों मतलब कुल मिला के ये है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार, हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी जी
1: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
0: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ जाके लोग वहाँ की खूबसूरती नहीं देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए वहाँ की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या कौन सा व्यू हम देख ले यहाँ पे, हमारा फोटो सबसे बेस्ट
2: फोटो वीडियो
1: कैप्चर करो उसको ही।
0: खाने के टेबल पे खाना रखा है लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आज ठीक था, बाद में अगर एक डिश चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट के लिए वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए,
2: क्यों, हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो ठीक है।
0: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
0: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है।
2: बिल्कुल,
0: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या नेगेटिव चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव भी है इसमें नेगेटिव भी है।
1: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है। चल जाते जाते रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखें कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना
2: चाहिए, सुविधा के लिए दिए जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारा पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं। पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसके आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देख दी है, तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
4: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे बच्चे। अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया, तो भैया तो समझो बेटा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय, सबसे ज्यादा स्ट्रेस लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है,
1: नहीं है,
3: साइड चल गई है, आइए बात करें,
1: बात करिए। बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए, यहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाए कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं अब हम लेते हैं यहाँ से जाने की विदा।
0: बिल्कुल इजाजत लेंगे, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, परिवार को एक क्वालिटी टाइम दीजिए। और फैमिली से भी कहना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, आप वुमेन वर्किंग वुमेन हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही हैं करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में एक ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट एक घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है। तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनते रहिए, है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
2: बजाते
3: रहो, गुनगुनाते रहो,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।
5: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहां पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जी

0: का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली किरण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं सबसे।
2: खासियत क्या चीज़?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: हर प्लेट में पड़ता है।
2: तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके यहाँ हमेशा बनी हुई। ठीक, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: तो बहुत धन्यवाद है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा हैं,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा हैं वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आँच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्लर में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
6: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता।

0: दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और प्रोग्राम का नाम है खेती किसानी। जी हाँ किसान भाइयों, राम राम आप सभी को। कैसे हालचाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं एक बार फिर से हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मौजूद है। जी हाँ, आपने इनको पहले भी सुना है, डॉक्टर विनय कुमार जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है। एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं आप ही के काम के विषय पर। जी हाँ, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में गन्ने की फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसी पर बात करने के लिए जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर विनय जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद की स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: जी जी सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय एक बार फिर से निकाला और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद सर। जी
0: सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्मियों में गन्ने की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है क्या सर?
1: जी हाँ, देखिए गर्मियाँ क्या है कि सभी

0: लोगों के लिए जल आवश्यक होता है और फिर बेसिकली जब गर्मियां चल रही हो तब तो वो जो है जल मांग जो है कई गुना बढ़ जाती है, चाहे जीव हो, चाहे जीव में कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या हमारी फसलें हो, या हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, कई गुना हमारा वो बढ़ जाता है। तो जैसे गन्ने की बात करें तो गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। हल्की भूमि में सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है।
1: जी ओके, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है क्या, और इससे पानी की बचत होती है क्या, और पौधों को पर्याप्त नमी भी मिलती है क्या?
0: जी देखिए, ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बेसिकली बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, हमारे जैसे जहाँ पे जल की समस्या होती है, सिंचाई जल जहाँ पे कम होता है, और बाकी अगर अमूनता अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि प्रत्येक किसान को ये चीजें धीरे धीरे एडॉप्ट करनी चाहिए।
1: हाँ जी,
0: क्योंकि एकदम से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपलाइन पड़ती है, उसमें गन्ने की जो लाइन होती है उसी में ये पाइपलाइन डाल करके बूंद बूंद पानी डाला जाता है। इसमें अतिरिक्त जल जो होता है हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल हम पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई जैसे फर्टिलाइजर देना है, जिसको उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक देना है, या कोई और हमको जो है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी हमको देनी है, तो हम सिंचाई जल के साथ में उनको प्रेषित करके हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त जल भी हमारा बचता है और किसान की जो है कह सकते हैं कि उनको जो है अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार हमारी पाइपलाइन डल जाती है तो हमेशा वो यूज किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ता है और फसलों से पोषक तत्व और नमी भी छीन लेता है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे समय पर जो है निराई गुड़ाई आवश्यक होती है।
1: हाँ जी,
0: कोई भी फसल हो।
1: हाँ जी,
0: गन्ने की ही नहीं बल्कि कोई भी फसल हो, समय पर निराई गुड़ाई आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग जो है वीडिसाइड भी कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए।
1: जी जी,
0: और प्रयास करना चाहिए कि अगर हाथों से इस काम को कर सके, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, और हमारे अगर हाथों से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उस स्थिति में हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खेत को खरपतवार मुक्त बनाए रखना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा खरपतवार होगा उतनी ही फसल हमारी गुणवत्ता कम होगी और उसमें पैदावार भी घट जाएगी।
1: ओके अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए अर्थिंग अप जिसको हम लोग मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं।
1: हाँ जी, हाँ।
0: जब पौधे जो है हमारे बढ़वार की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें कई सारी हमको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि हम अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमारा बरसात या वर्षा ऋतु आने से पहले अंतिम जुताई होने के बाद हम इसमें जो है अर्थिंग अप की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी जो होती है बीज की क्यारियों के दोनों लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, वहां पे निराई गुड़ाई करके, और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी किस्म की करके उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिलर्स जिनको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा निकलते हैं, और मिट्टी चढ़ने से हमारा रूट एरिया मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल गिरती नहीं है, गिरने से बच जाती है। और यदि हमारी फसल गिर जाती है, ऐसा नहीं अगर हम करेंगे और हमारी फसल गिर जाती है, तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप लगातार तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं, इसी बीच मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक है क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए संतुलित जैसे हम लोग भी भोजन की थाली जो हम लोग लेते हैं, तो उसमें भी हमको दाल चावल और रोटी सब्जी और सलाद अचार इत्यादि तरीके के हम लोग संतुलित चीजें खाएं। जितना ही संतुलित हम लोग रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ भी संतुलित रहेगी। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है, जैसे गन्ने के लिए है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश इत्यादि का संतुलित उपयोग करें। मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं, जैसा ही परीक्षण रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उर्वरक देना ही हमको लाभकारी रहता है। जिंक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होने पर उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी ओके अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में कई प्रकार के कीट एवं रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए गर्मी चल रही है, इसमें टॉप बोरर पायरिल्ला दीमक इत्यादि कीटों का नियमित निगरानी रखें। अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो उसका समुचित उपचार करें। रोग ग्रसित पौधों को तुरंत हटाएं। कृषि विभाग की सलाह के अनुसार दवा का अवश्य प्रयोग करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या किसान भाई ट्रेस मल्चिंग अपना सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल। देखिए ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे जो किसान भाई जानते सब हैं, जैसे पेड़ी गन्ना होता है तो उसमें क्या होता है, गन्ने की सूखी पत्तियां होती हैं, तो उनको अमूमता लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, जलाने को उसको आसान समझते हैं, लेकिन ये हमारे लिए दुष्प्रभावित होता है। गन्ना पत्ती को अगर जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और जो है हमको जो है कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव आग की चपेट में आके नष्ट हो जाते हैं, हमारी मिट्टी की यानी कि खेत की ऊपरी सतह जो होती है आग के संपर्क में आके जो है कठोर हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम नियमित ऐसा करते रहेंगे तो हमारी एक दिन भूमि बंजर हो सकती है, तो इसलिए हमको ट्रेस मल्चिंग अपनाना चाहिए। ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे गन्ने की सूखी पत्तियों को खेत में बिछाने से मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है, हमको ज्यादा अंतराल पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रेस मल्चिंग नहीं करेंगे तो हमको जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे हमारे पृथ्वी में और हमारे जो है खेत की ऊपरी सतह पे पड़ेंगी तो उसमें जल हानि ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, ट्रेस मल्चिंग अपनाएंगे तो हमारी सूखी पत्तियां जो है उस डायरेक्ट सनलाइट को रोक लेंगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की नमी हमारी संरक्षित रहेगी। इससे क्या होगा कि अगर पलवार या जैसे कह सकते हैं ट्रेस मल्चिंग ऊपर पड़ी हुई है तो उसमें नीचे की तरफ से अंकुरित होने वाले खरपतवार भी कम से कम आएंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि कम खरपतवार भी जो है हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि खरपतवार अगर होंगे तो वो भी सूक्ष्म जीव अवशोषित करेंगे, जल भी अवशोषित करेंगे और हमारी फसल के बीच में कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो ट्रेस मल्चिंग जो है अगर संभवतः जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ी में उसको करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार से इस पे चर्चा करी। अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, यहीं अच्छी पैदावार के लिए उन्नति प्रजातियां भी महत्वपूर्ण है क्या?
0: जी बिल्कुल, अहम भूमिका रहती है उन्नतशील प्रजातियों का, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ऐसी कहावत हमारे गांव देहात में चलती है। किसान भाई सभी लोग जानते हैं प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। चीनी मिलें क्या करती हैं, जब चीनी मिल प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होता है, तो वो यही कहती हैं कि जो भी प्रजातियां हैं जो प्रमाणित हैं या अनुशंसित हैं उन्हीं को ही आप लोग सप्लाई के लिए चीनी मिल में आपूर्ति करें। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी रिजेक्ट वैरायटी को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनको तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जब आपूर्ति का समय आता है तब उनको दिक्कत होती है। तो हमारी अपील है समस्त किसान भाइयों से कि अपना जो है गन्ना क्षेत्र जो है वो प्रमाणित और अनुसूचित प्रजातियों का ही चयन करके बोएं, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें, इससे उत्पादन और चीनी प्रतिशत दोनों ही वृद्धि होगी और दोनों को ही लाभ होगा, चाहे चीनी मिल हो चाहे किसान भाई हो, दोनों लाभकारी होंगे तभी ये जो है चल पाएगा। अगर किसान को लाभ होगा और चीनी मिल घाटे में चली गई तो वो ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो आप ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिनमें शर्करा प्रतिशत यानी कि जिसमें शुगर परसेंटेज भी हो और पैदावार भी अच्छी हो, तो दोनों के ही कोलेबोरेशन से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। तो हमारी अपील है कि प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही किसान चयन करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो आप देना चाहें।
0: जी बिल्कुल, आइए कुछ हम महत्वपूर्ण सुझावों जानते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे खेत में जल भराव बिल्कुल ही ना होने दें, जैसे कि हमारे आज के चर्चा के विषय में ही लिखा हुआ है कि हमारा जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यानी कि हमारे जो समर सीजन चल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है, धूप की किरणें बहुत तेजी से मतलब हमारे शरीर को हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो इस स्थिति में अगर हम जल भराव अपने खेत में कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जल भी गर्म होगा और गर्म जल में अगर हमारा पौधा रहेगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा और वो अपनी बढ़वार को खो देगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी बढ़वार कम होती जाएगी। जब आवश्यक हो तभी जल आपूर्ति करें, यानी कि तभी उसमें सिंचाई करें, और व्यर्थ में जल भराव ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश न करें। जल भराव हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा है समय पर सिंचाई करें, जब आवश्यक हो तभी सिंचाई करें, संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, रोग और कीट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आपने अगर उसका निदान कर लिया और पड़ोस वाले खेत से उड़ करके आपके यहाँ भी आ सकते हैं। तो इसलिए रोग और कीट का समय पर जो है उपचार जरूरी होता है, तो इसलिए उस पे नजर बनाए रखें। अगला हमारा है, कह सकते हैं कि गन्ना जो पत्तियां होती हैं उनको ना जलाएं। जैसे हमने पिछले अभी अपने प्रश्न आपके प्रश्न में जो है हमने बताया था,
1: जिक्र किया था
0: कि गन्ने की पत्तियां जो होती हैं उनको जलाया ना जाए। उनको आप मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए कई सारी मशीनें आ गई हैं, मल्चर वगैरह आते हैं, उनको पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आपके खेत में बिखेर देता है, जिससे वो आसानी से कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाती हैं। तो गन्ने की पत्तियों को प्रयास करें कि ना जलाएं। अगर आपको नहीं रखना है तो आप कंपोस्ट पिट बना करके उसमें आप डाल सकते हैं, जिसकी आप खाद बना करके फिर से अपने फसल में यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि कृषि वैज्ञानिकों की जो है सलाह लेते रहें। जो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, आपके यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी गण हैं, या समिति के जो गन्ना पर्यवेक्षक गण हैं, उन लोगों से संपर्क में बनाए रहें और उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस श्रृंखला में आपने तमाम जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे, कोई एक प्रेरणादायक मैसेज जो आप देना चाहें?
0: जी देखिए, अभी जैसे कि हमारे शीर्षक में ही है कि ग्रीष्म ऋतु, तो सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। गन्ने की सूखी पत्तियां जो है नहीं जलाएं, मल्चिंग जो है अपनाएं। मल्चिंग नहीं आप कर सकते हैं तो उसको कंपोस्ट पिट में उसको आप डिकम्पोज करके अपनी पत्तियों से खाद बनाएं, जिससे आपको उर्वरक में या फर्टिलाइजर में आपको अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ मेरे पास सवाल भी हैं हमारे किसान भाइयों के, अगर आप चाहें तो उस पे भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: जी। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि मतलब एक बहुत ही अच्छे श्रोता ने हमें भेजा है, किसान भाई ने, कि गर्मी में गन्ने की सिंचाई कितने दिनों तक और कितने अंतराल पर हमें करनी चाहिए?
0: जी जैसे कि अभी हमने पीछे बता दिया है कि गन्ना होता है तो उसमें जितनी फसलें होती हैं, सबसे ज्यादा जल मांग अगर किसी फसल की है तो वो गन्ने की है, क्योंकि ये पूरी वार्षिक रहती है, पूरे वर्ष चलती है, इसमें कई सारी सिंचाइयां करनी पड़ती हैं। अमुनता कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा यानी कि तापमान ज्यादा होने के कारण जल मांग बढ़ती है। जैसे ही हम जल मांग आती है तो वो कम दिनों के अंतराल पे ही हमको सिंचाई करनी पड़ती है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर अमूनता इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
1: जी एक और किसान भाई का प्रश्न आया था कि क्या गन्ने की सूखी पत्तियां हमें जलानी चाहिए?
0: जी नहीं, अब ये सूखी पत्तियां हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं, इनको हम मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इनका हम जो है जैसे अभी कह सकते हैं कि डिकम्पोज करके हम लोग इसको जो है खाद बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो रोलर एक मशीन आती है उसमें रोल बना करके इनको हम लोग बेच करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक श्रोता और है हमारे जिन्होंने हमें प्रश्न किया है, डॉक्टर साहब की सर्वेक्षण में गलती होने पर क्या करें?
0: देखिए अगर सर्वेक्षण, जैसे कि अगर गन्ना सर्वेक्षण हुआ है, गन्ने के सर्वेक्षण के समय आप जो है अपनी स्लिप अवश्य लें। स्लिप में आप कोई भी गलती अगर पाते हैं तो तुरंत ही संबंधित कार्यालय या अधिकारी से संपर्क करें और उसको संशोधन करने के लिए आप अपील करें।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला, हमारे श्रोताओं को तमाम जानकारियां दी, पूरे विस्तार से आपने चर्चा करी। तो ये एक खास बातचीत खेती किसानी के माध्यम से आप सुन रहे थे, आप एक खास बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर विनय जी के साथ, और आज हमने तमाम विषयों पर चर्चा करी, जैसे हमने गन्ना सर्वेक्षण का महत्व जाना, किसानों की जिम्मेदारी पर हमने बात करी, गर्मियों में गन्ने की वैज्ञानिक देखभाल पर हमने चर्चा करी, सिंचाई उर्वरक ओके, हमने श्रोताओं आज हमने चर्चा करी, साथ ही साथ सिंचाई उर्वरक एवं कीट प्रतिबंधन के ऊपर हमने जो है तमाम चर्चा करी। और अभी मैं डॉक्टर साहब आपसे जाते जाते ये और पूछना चाहूंगा कि आप अगर कुछ और आपको लगता है कि किसान भाइयों को आपने बताना चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते?
0: देखिए ये जो जानकारी जो भी आपको दी गई है, इसमें हमारा जो अभी जो मौसम चल रहा है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक रहन सहन के लिए है, चाहे हम हों, पशु पक्षी हों, हमारे जानवर हों या हमारी फसलें हों, क्योंकि ज्यादा तापमान में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता।
1: तो
0: दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, जब तक बरसात नहीं होगी ऐसा ही समय रहेगा। तो इसके लिए हमको अपना और अपनी फसलों का, अपने जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय पर जैसे फसलें हैं तो उनको समय पर पानी देना चाहिए। कोई कीट, कोई रोग या कोई अन्य व्याधि हमारे खेत में अगर हमको प्रदर्शित हो रही है तो उसका अतिशीघ्र हमको जो है उपचार करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया। और श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको ये जानकारियाँ बहुत उपयोगी लगी होंगी और आपके लिए सिद्ध भी होंगी। तो यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन से संपर्क कर सकते, हमारे व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। 9837896896 ये हमारे स्टूडियो का नंबर है जो आपके लिए अवेलेबल है। आप इस पे हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम जरूर डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। और मैं हूं आपका साथी आनंद, और अब आपसे लेता हूं अलविदा। अब आपको बोलूंगा टाटा बाय बाय। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।
2: बहुत बढ़िया।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी, और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, 2 घंटे तक हम आपके साथ करेंगे ढेर सारी बातें, सुनेंगे आपकी पसंद के सुपरहिट गाने, और साथ ही मिलेंगे कुछ दिलचस्प जानकारियाँ भी। श्रोताओं, कहते हैं ना कि मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, और आप सब बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही प्यारे हैं। श्रोताओं, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, नंबर है 9837896896। और चलिए करते हैं शो की शुरुआत, बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो हेलो फरमाइश। लगता है सर हमें नहीं सुन पा रहे हैं, शायद कोई नेटवर्क इशू होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक खूबसूरत सा गीत यहाँ पर सुनवाती हूँ, और आप भी मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ, 98378-96-896, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आपको इस पर कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, ये दीवाने तो आप इस शो के हैं, ये बात हम जानते ही हैं। और यहाँ पर वक्त हुआ है 3:17, बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक अभी आपने सुना उदित नारायण जी साथ में अलका याग्निक जी की, बड़ी प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है, क्या उनका नाम है, वो हम उन्हीं से जानेंगे। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, यस, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम वासु है।
0: वासु,
1: यस।
0: कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मुरादाबाद गोविंद नगर से बात कर रहा हूँ।
0: गोविंद नगर से, क्या करते हो अभी, कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो आप? फर्स्ट ईयर में। ओके, और रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: काफी टाइम हो गया, 2 साल हो गए।
0: अच्छा, 2 इयर्स हो गए, कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है, सुबह को 6 बजे से भजन शुरू हो जाते हैं।
0: Exactly right.
1: हाँ, तो 6 बजे से भजन, मतलब 6 बजे से रेडियो चालू हो जाता है।
0: अच्छा, ऑन रहता है सुबह सुबह, दिन की शुरुआत भगवान के साथ। हाँ, अच्छी बात है। जब सुबह सुबह हम भजन सुनते हैं तो घर में पॉजिटिव माहौल होता है, पॉजिटिविटी आती है और मन को भी शांति मिलती है, राइट?
1: अगर मतलब जैसे कुछ आ रहा है या फिर कुछ बात है, टेंशन है, तो भगवान के गाने सुन के मन को बहुत ज्यादा प्रसन्न
0: प्रसन्न हो जाता है और स्ट्रेस भी हमारा कम हो जाता है। तो आज आप बताओ वासु, क्या सुनना चाहती हो? ओके, फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। बहुत प्यारा है। आप स्टडी के अलावा और क्या करती हैं, क्या हॉबीज हैं आपकी, बताइए जरा।
1: मेरे
0: अलावा
1: तो और कुछ नहीं, बस
0: आपको घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग करना?
1: हाँ, मतलब घूमना पसंद है, बस मैं जा नहीं पाती हूँ कहीं पर, ही घर घर में ही रहती हूँ मैं।
0: पर क्यों नहीं जा पाती हैं, क्या रीजन है, बताइए।
1: ओके,
0: जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है ना? ओके, तो आप अकेले हैं सिस्टर में? ओके, ब्रदर छोटे हैं। हाँ, तो बड़े हैं तो जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलो, ये प्यार से गाना आपको सुनाती है वासु। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा गाना वासु की पसंद पर, मन बसिया। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है और गाना भी बहुत प्यारा है, मूवी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए मेरे दोस्तों, बिना किसी देरी के सुनते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को, उसके बाद लौट कर आते हैं और हम आपसे भी बात करेंगे। बस आप हमें कॉल कीजिएगा, नंबर 9837896896।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
1: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम, और बहुत मधुर सी आवाज़ अलका याग्निक जी की। एंड दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसान दिन भर में लगभग 20,000 बार सांस लेता है, लेकिन हमें से कहीं ज़्यादा लोग उस पर कभी ध्यान नहीं देते, राइट? इसीलिए दिन में कुछ मिनट गहरी सांस लेने की आदत ज़रूर डालिए। इससे क्या होता है ना, आपका जो मूड है वो भी फ्रेश होता है एंड आपका स्ट्रेस भी कम होता है। तो आप अपनी सांसों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 10 मिनट, 5 मिनट बहुत है आपके लिए। आप काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं जो सांसें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन्हीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आदाब खुशी जी।
0: जी जी, आपको भी आदाब सर। कैसे हैं आप, बताइएगा।
1: आप बताइए, आप कैसी हैं और परिवार में सभी कैसे हैं?
0: जी, अब परिवार में सब बहुत अच्छे हैं सर। आप बताइएगा, आपके यहाँ पर सब खैरियत से हैं?
1: जी बिल्कुल खैरियत से हैं, सब अच्छे हैं।
0: ओके, तो क्या कर रहे हैं इस वक्त आप?
1: इस टाइम तो दोपहर का टाइम होता है, थोड़ा फ्री होते हैं।
0: ओके
1: जी, आपका ही एफएम चल रहा है और आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: जी, आराम कर रहे थे और रेडियो भी सुन रहे हैं, राइट?
1: जी जी
0: जी, बताइएगा सर, आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: जी, लता जी की आवाज में एक सॉन्ग है, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, इस तरह से ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग प्ले कर दें आप।
0: जी ठीक है सर, ये ट्रैक आपका प्ले कर देते हैं आपके पसंद का। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: ये कुछ नाम ले दूं?
0: हाँ, बिल्कुल ले लीजिएगा।
1: ये हमारे दोस्त है, शहीद शारिक अली है, मेहराज अंसारी है, बाबू अंसारी है और शकी अहमद अंसारी है, ईदगाह मुरादाबाद से, और जामा मस्जिद, और जो इस वक्त लाइव प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और उनके साथ में और आपके साथ में इस सॉन्ग को सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा ट्रैक। तो श्रोताओं, सुनते हैं खूबसूरत गीत, लौट कर आते हैं। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा, नंबर है 9837898968।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और शो चल रहा है आप सभी का पसंदीदा, जानते ही हैं आप, हेलो फरमाइश, जहां पर आप हमसे फोन कॉल के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी पसंद के गीत यहाँ पर आप सुन सकते हैं, किसी स्पेशल को डेडिकेट भी कर सकते हैं। कोई ट्रैक अगर आपको पसंद है या फिर आपकी लाइफ पार्टनर को पसंद है या आपके दोस्त को पसंद है, फैमिली मेंबर्स को पसंद है, तो आप कॉल कर सकते हैं इजीली। नंबर हमारा है, बहुत इजी नंबर हमारा है 9837896896। और श्रोताओं, अभी वक्त हुआ है 3:32 और हमारे कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे जानते हैं उन्हीं की फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम रईस अहमद है, लालू वाला से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक है जी मैडम।
0: जी बताइए, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैडम कुली फिल्म का गाना सुनवा दो, मेरी किस्मत में देख मदीना मदीने वाले से मेरा सलाम कहना।
0: ओके ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: ओके
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं। तब तक आप हमें कॉल करना ना भूलिएगा, नंबर है 9837896896, और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सी बात है, लाइनें भी हैं कि संबंध इतना सुंदर बनाइए कि सुख हो या दुख हो, हक सी बात कर सकें। कहते हैं कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पड़ला कितना भारी है। इसीलिए दोस्तों, कोई भी रिश्ता ना बड़े पैसों से या फिर बड़े तोहफों से नहीं डिपेंड करता। कि अगर इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत रिच है, तो रिश्ते खूबसूरत होते हैं। नहीं साथियों, रिश्ते वहाँ खूबसूरत होते हैं जहाँ पर इंसान एक दूसरे को समझता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करता है, एक दूसरे का साथ देता है, चाहे दुख हो या सुख हो, और एक दूसरे की केयर भी करता है। वो रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। अगर आपके पास ऐसा रिश्ता है तो संभाल के रखिएगा। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश जी, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: स्वाति बोल रही हूँ।
0: स्वाति जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लाइन पर मुरादाबाद से।
0: लाइन पर मुरादाबाद से, क्या करती हैं स्वाति जी, बताइए।
1: मैम अभी घर में ही रहते हैं।
0: अच्छा, घर में ही रहते हैं। और घर के जो हजारों काम करती हैं वो नहीं बताएंगे आप? हाँ कितना इजीली हमारी फीमेल्स कह देती हैं कि हम कुछ नहीं करते, बस घर पे रहते हैं। और घर के इतने सारे काम होते हैं, फिर भी मुस्कुराकर हमेशा मुस्कुराती रहती है, चाहे कितने भी थकान हो, वो किसी से बयान नहीं करती है। हाँ, बहुत स्ट्रांग होती है हमारी वुमेन। और बताइएगा, इस समय आप क्या कर रही हैं मैम?
1: इसमें मैम पंखे के नीचे लेटे हैं, बहुत गर्मी है।
0: अच्छा, आराम कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: ओके, और रेडियो भी सुन रहे हैं आप?
1: जी मैम।
0: तो आपने सोचा कि चलिए आज कॉल लगा लेते हैं, है ना? ओके, तो कब से ट्राई कर रहे थे आप, जरा बताइएगा स्वाति मैम।
1: कल रात से कॉल ट्राई।
0: कल रात से? परसों तो दिन में आते हैं 3 बजे।
1: नहीं, पहले ही हमने वो रात में कॉल लगाई थी बेटी के कहने पे, बेटी ने लगाई थी रात, वो मुझे नहीं पता कॉल पे।
0: अच्छा हाँ, वो अखिल सर थे, आई रिमेम्बर।
1: जी
0: जी जी, या तो आपने अभी दिन में ट्राई किया, राइट? जी, आप बताइएगा स्वाति मैम, क्या सुनना चाहती हैं आज? ओके, याद तो आपको आई है, तभी तो आपने कॉल किया है। चलिए ठीक है, ये गाना आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, और अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक स्वाति मैम की पसंद पर। और आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपके जहन में कोई गाना है जो आपने काफी दिन से नहीं सुना है, लेकिन आपको बहुत मन है कि मेरा काश कॉल लग जाए, मैं रेडियो पर ये गाना सुनूं, तो बिल्कुल इजीली कॉल लगा सकते हैं आप। ये चांस आपके लिए ही है। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9833789689। और ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा। वैसे ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने भी इस गाने को काफी बारी सुना है, बहुत प्यारा है। आप सब भी इस गाने का आनंद लीजिएगा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर, जहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो इस गोल्डन चांस को ना आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आपका कॉल लग जाए। देखिए, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आप कैसे सफल हो पाएंगे, कैसे सफलता मिल पाएगी? तो आपको उसके लिए ट्राई तो करना होगा ना दोस्तों। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, राधे राधे, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ आरजे खुशी सिस्टर जी को, ग्राम लदावली जीत का सना का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार, बताइएगा सर कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, और इस वक्त आपका प्रोग्राम खेत पर सुन रहा हूँ, और खेत पर सिंचाई हो रही है गन्ने की।
0: अच्छा, गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं आप?
1: जी हाँ
0: जी। मौसम कैसे है बताइएगा बाहर का सर?
1: बहुत तेज धूप है।
0: अच्छा, तो आपने अपना ख्याल रखा है ना अच्छे से?
1: जी हाँ
0: जी, बहुत अच्छी बात है सर, अपना ऐसे ही ध्यान रखिएगा, और कार्य करना भी बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जी, तो आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम सुनेंगे गाना आपकी फरमाइश को, और आपको ही डेडिकेट है।
0: तो ठीक है सर, एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मैंने यहाँ पर चुना है, आप इस गीत को एंजॉय कीजिएगा।
1: मेरे साथ में मेरी पत्नी माया देवी है, और हाँ दोनों बच्चे हैं ऋतिक और ऋतिक, सब इस गाने को सुनना चाहते हैं मेरे साथ साथ।
0: ठीक है सर, आपकी पूरी फैमिली के साथ ये गाना आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया, धन्यवाद
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा गाना है, एंड फ्रॉम द मूवी हम हेरा ही प्यार के, और अलका याग्निक जी साथ में कुमार सानू जी की बहुत प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं इस प्यारे से गाने के बाद, तब तक आप भी प्रयास कीजिए कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए।

0: जी दोस्तों, जब हम सब साथ होते हैं ना तो सफर भी कैसे 2 घंटे का कंप्लीट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। आपका और हमारा, हम सब का साथ यहाँ पर है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और कोई भी सफर, जब हम सफर पर निकलते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, जब अपनों का साथ होता है ना तो वो सफर और सुहाना हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको भी अगर अपने सफर को खूबसूरत बनाना है ना तो हमें कॉल तो लगाना पड़ेगा ना आपको। अब कॉल लगाने में कोई कंजूसी मत करना, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? चलो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार जी, खुशी जी।
0: आपको भी नमस्कार विजय राठौर जी, बहुत दिनों के बाद आप कनेक्ट हुए हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहचानने के लिए।
0: मोस्ट वेलकम, हमारे रेगुलर लिस्टनर हैं आप, कैसे नहीं पहचानेंगे हम।
1: कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा आपकी फैमिली में सब कैसे हैं?
1: सब बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआ है
0: जी। और जो सभी आपके साथ काम करते हैं वो सब कैसे हैं, हमारे जो लिस्टनर्स इस समय मुझे सुन रहे हैं?
1: गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
0: हाँ
1: बस गर्मी के मौसम में लोग ज्यादातर रेस्ट ही कर रहे हैं दोपहर में। तो
0: नहीं, अच्छी बात है सर, थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। आप बताइएगा क्या सुनना चाहेंगे आज सर?
1: साजन मूवी का गीत सुनवा दीजिए
0: जी। बताइएगा।
1: मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है।
0: ओके ठीक है सर, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: हमारे दोस्त हैं ये अभिषेक राठौर, नैतिक राठौर
0: जी,
1: मोहम्मद इशरत जहांगीरपुर से।
0: ओके
1: तुम सबके लिए गीत सुनवाना चाहते हैं।
0: ठीक है सर, ये प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896 9837896898। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जहाँ पर आपको कॉल लगाना है और सीधा हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है। तो चलिए क्या इस गीत को सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे सी गाने के उस पार। घड़ी में बज चुके हैं पूरे 4 और ये गाना कर रहा है आपका इंतजार। तो सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ बस।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: टायर लो सोना जीतो।
0: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
4: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक सुना एंड आप सबने इंजॉय किया होगा, ये तो मुझे मालूम है। और आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे अभी अपने हमारे अगले कॉलर का कि कौन हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं, क्या उनकी फरमाइश होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है ना मन में, मैं जानती हूँ दोस्तों। और ये प्यारा सा ट्रैक आपने सुना फ्रॉम द मूवी साजन से। कुमार सानू अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज, म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्मन जी और लिरिक्स थे समीर जी के। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी आपको भी याद, आप अपना नाम बताइएगा।
1: मैं शाना आलम बोल रहा हूँ, मुरादाबाद।

0: भी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, सब दुआएं हैं आपके अल्लाह का करम है।
0: जी, बिल्कुल, सभी अच्छे रहने चाहिए, हम तो यही दुआएं करते हैं। आप बताइएगा, इतने दिनों के बाद आपने कॉल किया है, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम कॉल तो मैं आपको 3 दिन से लगा रहा था, तो
0: अच्छा।
1: वो कॉल आप लग नहीं पा रही थी। डिम्पल कपाड़िया जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में
0: जी
1: मैं गाना सुनना चाहता था, वो भी
0: हाँ,
1: फिल्म का।
0: ओके।
1: और एक तीर और दो सितार होंगे इधर, हमारी बीवी मैं के जाने को कह रही थी। मैंने कहा रुक जाओ, पहले ये गाना सुन लो फिर जाना बाद में। अब
0: अच्छा, पहले गाने
1: मैंने कहा
0: की।
1: कभी कभी बाद में, या कह रहे गाना सुन के कि मैं के नहीं जाऊंगी, मैं के नहीं जाऊंगी।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा चलिए
0: इसीलिए
1: ये कह दे। हाँ
0: ओके, तो इसीलिए आप ये गाना मैम को डेडिकेट कर रहे हैं। हाँ जी,
1: तो मैंने कहा यही गाना सुन लूं, वो डबल काम हो जाएंगे, डिंपल कपाड़िया जी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट हो जाएगा और इधर ये भी गाना सुन लेंगी।
0: आपकी मैडम जी भी मान जाएंगी।
1: हाँ हो सकता है मना कर दें कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
0: हाँ, और आपने कहा भी था ना कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, हम उनको मना कर रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: मैंने उनसे यही तो कहा था कि अभी गर्मी पड़ रही है, अभी रुक जाओ, गर्म मौसम सही हो जाए तो चले जाना।
0: हाँ, लेकिन वो मान नहीं रही होंगी, वो कह रही होंगी नहीं, मुझे तो मम्मी के घर जाना है।
1: हाँ तो मेरे कहा ये सुन लो गाना, फिर उसके बाद फैसला कर लेना, कभी आप कह दो बाद में कि मैं नहीं जाऊंगी।
0: ओके, चलिए, तो ये गाना सुनवाते हैं आपकी मैम
1: चलो
0: को और
1: शुक्रिया।
0: आपको भी। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, एंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक, और आप भी हमें कॉल लगा सकते हैं, नंबर है 9837896896, और ये प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और श्रोताओं, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी बॉबी जो 1973 में आई थी, एंड खूबसूरत गीत को गाया था शैलेंद्र सिंह साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। और ये गाना फरमाया गया था ऋषि कपूर जी साथ में डिंपल कवाड़िया जी की। बड़ी खूबसूरत सी फिल्म और गाना भी बहुत ही प्यारा था ना श्रोताओ, आप अपने पुराने ख्यालों में खो गए थे ना। चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी बात करते हैं अपने अगले ही फरमाइश कर्ता जी के साथ, कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश
1: हेलो, नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा आप।
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके परिवार में और आपके स्टूडियो में क्या हाल है।
0: जी सब बहुत ही अच्छे हैं सर, आप बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है, गर्मी कैसी है वहाँ पर।
1: बहुत गर्मी है, लू चल रही है।
0: अच्छा, इस समय लू चल रही है।
1: जी बहुत ही गर्मी है।
0: तो आप अभी घर पर आराम कर रहे हैं।
1: मैं तो घर पर ही रहता हूँ।
0: अच्छा, घर पर ही
1: जरूरी
0: रहते हैं।
1: काम और बहुत जरूरी काम होता है तो घर से बाहर चला जाता
0: जी जी जी वो जरूरी काम के लिए तो जाना ही पड़ता है, लेकिन कोई काम नहीं होता तो फिर घर पर ही रहना चाहिए। आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं सर।
1: हूँ। एक बहुत पुरानी मूवी है, वो कौन सी। गाने का बोले छोड़कर तेरा दामन किधर जाए, और कुछ सुनने वालों के नाम है
0: जी बताइएगा।
1: राबिया खान है, सिमरन खान है, अयूब खान है, ईशान भारती है, शनाल बाबू अंसारी है, मिराज अंसारी है, शफी अहमद अंसारी, रही दूल्हा अंसारी, शाहमूर अंसारी, मसूद हुसैन, अंसार हुसैन, शारिक अली, इरशाद अली, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं। लता मंगेशकर जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़ साथ में महेंद्र कपूर जी दे रहे हैं साथ, एंड ओल्ड गाने बहुत प्यारे होते हैं जो दिल के बेहद करीब होते हैं। तो सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, फिर आपसे बातचीत करेंगे। आप भी ट्राई कीजिएगा कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश, जहां पर कुछ बातें आपकी होती हैं और कुछ बातें खुशी यहां पर करती है। एंड गाने आपके पसंद के चलते हैं जो आपके सफर को बनाते हैं और भी ज्यादा खूबसूरत, चाहे आप घर में हो या फिर आप कार में हो या शॉप पर बैठे हो या फिर आप कारखानों में व्यस्त हो। सभी के लिए सभी की पसंद के गाने हम यहाँ पर प्ले करते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं वो हम बात करके उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि श्रोताओं अलग अलग स्टेट से हमारे पास कॉल आते हैं और जब हम वहाँ के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, नई चीजें हमें जानने को मिलती हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
0: आपको भी प्रणाम, नाम बताइएगा अपना।
1: जी मैं राजू यादव, ग्राम फ्रेंका, श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ, मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, बेस्ट हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, बगीचे में बारिश का आनंद ले रहे हैं और साथ में एफएम मुरादाबाद सुन रहे।
0: आपके यहाँ पर आज भी बारिश हो रही है?
1: जी बहन बारिश हो रही है। समय
0: आपने मुझसे उस दिन भी बात की थी, तब भी बारिश हो रही थी।
1: वही तो मैं कह रहा हूँ, उस दिन जब बात हुई थी तो बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है। समय
0: अच्छा जी, थोड़ी बारिश हमारे इधर भी भेज दीजिएगा।
1: जी बहन मैं भेज रहा हूँ, आपकी तरफ भेज रहा हूँ।
0: ओके अच्छा सर, अपने शहर की कुछ खास बातें बताइएगा हमें।
1: खास बात तो बहना जी हाँ, लाउडल की नगरी है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की है, जो अब बुंदेलखंड की जानी जाती है
0: जी।
1: और हमारे यहाँ से जो लगी हुई है बर्मा नदी, बेतवा नदी, जमुना नदी, जहाँ संगम है, तीनों नदियों का जिला हमीरपुर में, वहाँ देखने के लिए एक चोपड़ा मंदिर है जहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं
0: दर्शन करने के लिए आते हैं।
1: जी जी बहन।
0: ओके और आपके यहाँ का फूड क्या फेमस है, जो आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा खाया जाता है?
1: फूड के लिए तो बहना जी वो तो अलग अलग जगह अलग अलग खाया जाता है। वैसे तो इस समय हमारे यहाँ ज्यादातर ये क्या है कि बगीचे में आम है तो आम है, और आम के अलावा जो ये क्या कहते हैं वो खीरा है।
0: अच्छा
1: है,
0: फ्रूट्स बोल रहे हैं आप, खीरा एंड
1: मैंगो।
0: ओके एप्पल है। अच्छा ये बताइएगा आपको खाने में क्या पसंद है सर?
1: हमें तो खाने में ज्यादातर हम अपने ही घर के उगे हुए जो मूंगफली के दाने हैं 10 दाने सुबह सुबह खाते हैं।
0: अच्छा ओके, तो आप खेती करते हैं क्या?
1: जी बहन कृषि की कार्य करते हैं। मैं गहरी जुताई हो चुकी है और खेत में है, खेत में खाद डाल दी है, बस ये 10 दिन बाद मूंगफली की बुवाई हो जाएगी बहन।
0: अच्छा अच्छा तो ये कितने महीने का प्रोसेस होता है सर मूंगफली का?
1: 120 दिन में तैयार हो जाएगी।
0: ओके बहुत बढ़िया, तो चलिएगा बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हमारी हो गई है और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
1: पायलिया ओ हो पायल पे लिखा है, ये वाला गीत सुनेंगे बहन।
0: ठीक है सर, ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: लाइनें भी गाऊंगा बहन।
0: जी जी बिल्कुल कहिएगा सर।
1: रुक रुक के चमके चांदी की चांदनी, याद दिलाए हमें हर एक निशानी, याद दिलाए एफएम मुरादाबाद की निशानी, दूर होकर भी यूं दिल के पास हैं, दूर होकर भी यूं दिल आपके पास हैं, तुम्हारी यादों से ही मेरी दुनिया खास है।
0: बहुत खूबसूरत, तभी तो देखिएगा दिल से दिल का रिश्ता है, रेडियो से आपका और हम सब का, तभी तो आप सभी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं ना सर।
1: जी
0: धन्यवाद आपने कॉल किया, सुनवाते हैं आपके पसंद का प्यारा सा गीत, एंजॉय कीजिएगा सर।
1: प्रणाम,
0: आपको भी प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत और आप भी हमें कॉल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896 8968396, ये हमारे स्टूडियो का नंबर है जिस पर आपको हमें कॉल करना है। अभी फिलहाल ये खूबसूरत सी गीत का आनंद लीजिएगा।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
6: जन जन तक पहुंचा संदेश।
7: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
10: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो हेलो फरमाइश, और ये है आपकी अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और हम लेकर आते हैं आपके लिए एवरी डे मंडे टू सैटरडे आपके पसंद का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जहां पर आप फोन के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं एंड अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं आप यहाँ पर। और हाँ, लेकिन एक छोटी सी हमारी शर्त है, एक छोटी सी एंड क्या शर्त है मैं आपको बताती हूँ कि आपको वीक में सिर्फ एक ही बार कॉल करना है, दोबारा से कॉल नहीं करना है, ताकि नए लिसनर्स को भी मौका मिल जाए, इजीली उनकी भी फरमाइशें पूरी हो जाए। जैसे आप सब कॉल करते हैं, वैसे उनके भी दिल करता है कॉल करने का, उनकी भी तमन्ना होती है कि हमारा भी काश कॉल लग जाए। उनका कॉल तब लगेगा ना जब हमारे जो लिसनर्स हैं जो रेगुलर फोन ना करके वीक में कॉल करें, ताकि इजीली सब आसानी से कॉल लगा पाए। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश जी, आपको भी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी सुमित कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैं
0: एमपी से बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप सुनील जी, बताइएगा अपने बारे में।
1: जी मैम, हम मशीन चलाते हैं मैम, जैसी मशीन चलाते हैं इसी में चलता रहता है, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: ओके, आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं?
1: जी हम तो एमपी के रहने वाले हैं मैम।
0: अच्छा, एमपी की रहने वाले हैं आप, तो वहाँ का पोहा जलेबी तो बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी भी लगता है।
1: जी,
0: तो आप बताइएगा आज एफएम मुरादाबाद में आपने कॉल किया है, क्या आपकी फरमाइश है?
1: जी फिल्म अमानत से कोई सा भी गाना सुनवा दीजिएगा।
0: ठीक है सर, आपको सुनवाते एक प्यारा से गाना। आज बताइएगा एमपी का मौसम कैसा है?
1: जी मैम, हमारे यहाँ तो बारिश अभी तो एक घंटा पहले हुआ था मैम, तो अभी बारिश निकल गया, थोड़ा उमस ज्यादा है मैम।
0: अच्छा, बारिश के बाद उमस ज्यादा हो गई है ना? ओके सर, ठीक है, सुनवाते हैं गीत, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद मैम।
0: तो चलिए श्रोताओं, एक प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं एंड उसके बाद अपने नेक्स्ट कॉलर से भी बातचीत करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। अगर आपको भी कॉल करना है तो आप बिना किसी तरीके फटाफट से कॉल लगाओ, फोन उठाओ और कॉल लगाओ। नंबर है 98-378-96-896। और जो इस समय हमें कार में सुन रहे हैं ऑन द वे, हम आपसे कहना चाहेंगे कि सर सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा, और जैसे अब यहाँ आप इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं ना, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हौले हौले ड्राइव कीजिएगा और ये प्यारे गाने का लुफ्त उठाइए।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, ओल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: हेलो गुड इवनिंग ब्यूटीफुल लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और शो आप सभी का पसंद का आप जानते ही हैं। हेलो फरमाइश, तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैडम।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला क्रमगिरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे हैं मैडम
0: जी। बताइएगा मोहन जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, अभी तो घर को आया था, यहाँ मंदिर करने बैठा था तो मस्त एक मंदिर है, यहाँ बहुत बड़ा एक सभा मंडप है, एक बड़ा पेड़ का झाड़ है।
0: अच्छा अच्छा बताइएगा आप क्या सुनेंगे आज?
1: वो खलनायक की एक गीत है, अलका याग्निक की आवाज में माधुरी जी चित्र गीत हुआ है, आजा सजन आजा मेरे प्यारे सजन।
0: ओके ठीक है सर, एक गीत आपको सुनवाते हैं। अभी गर्मी कैसी है महाराष्ट्र में?
1: महाराष्ट्र में सोमवार को इस टाइम में बहुत बारिश हो गई मैडम जी, अभी
0: अच्छा
1: थोड़ी आज ये कल मंगलवार आज बुधवार ये दो दिन में नहीं सोमवार को ये टाइम में तो इतनी बारिश हो गई कि पूछो मत, जंगल से पानी निकल बाहर गए हैं।
0: अच्छा मंडी में ज्यादा बारिश हुई थी ना
1: बहुत बहुत
0: जी?
1: उस दिन हुई थी।
0: ओके अभी ठीक है ना मौसम?
1: मौसम अभी ठीक है, थोड़ी गर्मी कम हो गई और ये दो दिन में थोड़ी गर्मी और बढ़ गई, थोड़ी मिले तो धूप ज्यादा है ना।
0: जी जी जी तो ठीक है मोहन जी, प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं हम, बहुत प्यारा सा गाना है, आप सब इसको एंजॉय कीजिएगा।

0: हेलो हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और हमारे साथ हमारी लास्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं आप जी? बताइएगा कैसे हैं आप? हाँ जी, हम लोग सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आज आप क्या सुनना चाहते हैं? कौन से गीत की फरमाइश आपकी है? हाँ जी, आज लग गया, लक आपका काम कर गया। ओके, काफी
1: आज खुशी मिली।
0: आज खुशी हुई है। ओके चलिए, हाँ आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए सर। और ये प्यारा सा गीत आप सुनिएगा, आपने पसंद का बहुत ही खूबसूरत गीत आपने चुना है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं रोहित कुमार जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। बहुत प्यारा सा गाना है। एंड जख्म मूवी जो 1998 में आई थी, बहुत प्यारी सी फिल्म, और ये खूबसूरत सा गाना आप सभी इंजॉय कीजिएगा। मैं अब आपसे जाने की अनुमति लेना चाहूँगी, लेकिन आप टेंशन ना लो, मैं कल फिर आऊँगी सुबह मॉर्निंग 10 से 12, करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। एंड कल क्या कुछ खास होने वाला है वो हम कल बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताने वाले हैं। फिलहाल अभी हम आपसे कहने वाले हैं कि आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए और टेंशन ना बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से ना टेंशन और ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो टेंशन को कम करना है ना, तो उसके लिए आपको प्यारी सी स्माइल तो करनी पड़ेगी ना। अब तो मुस्कुरा दो, हाँ ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, बहुत सोने लग रहे हो तुसी। चलो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: You're not gonna wanna hear this.
1: कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभराए। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे

0: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: टायर लो, सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।

0: या विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
1: कॉल 8826213131।
2: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं आरजे राज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, यूं तो हम हर रोज अपने जीवन से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, पर हमारी आज की बातचीत थोड़ी ज्यादा खास है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी किताब की तरह कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर शुरू होती है एक नई कहानी। हमारे वो सभी सपने सच हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे ही एक युवक के सपनों की दास्तान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित CM युवा उद्यमी विकास योजना ने वाराणसी के चोबेपुर के सतीश के सभी सपनों को साकार कर दिया।
3: फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हीरो रातों रात अमीर हो जाता है और उसका देखा हर एक सपना हकीकत बन जाता है, पर वास्तविक दुनिया में ऐसी बातें महज एक कल्पना है।
2: वाराणसी के एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद सतीश के सारे दोस्तों का लक्ष्य दिल्ली बम्बई में ऊँचे औहदे की नौकरी पाना था, पर हमारे सतीश की अभिलाषा कुछ और ही थी।
3: मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे लिए अपने माता पिता और गांव को छोड़कर जाना तर्कसंगत फैसला नहीं होता। बाबूजी ने मेरे लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया था और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी बनूं।
2: सतीश का मन लगातार अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बोझिल रहता था।
3: मेरी रातों की नींद बस इन्हीं ख्यालों को सोच सोच कर उड़ सी गई थी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़े या उनसे कहीं बहुत दूर जाना पड़े।
2: दोस्तों, सतीश जैसी दुविधा हमारे देश के हजारों युवाओं के मन में होती है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर संसाधनों की कमी के चलते उनके सपने बस उनकी कल्पना में ही रह जाते हैं।
3: महीनों बीत गए थे अपने शहर में इंटरव्यू देते देते, मेहनत के हिसाब से कहीं पर भी पैकेज नहीं जमा। फिर एक दिन सुबह अखबार खोला तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पता चला।
2: और दोस्तों, यही है सतीश की कहानी का वो पन्ना जिसने पूरी दास्तान बदल कर रख दी। इससे पहले कि सतीश आपको आगे की कहानी बताए, मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आखिर है क्या। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
3: जैसे ही मैंने इसका इश्तेहार को देखा तो फटाफट से मोबाइल पर इसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और आवेदनकर्ता को किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
2: श्रोताओं, इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
3: मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल में देखा तो मेरे जैसे दो बैचमेट्स रवि और निर्भय थे जो मेरे ही जैसे समस्या से जूझ रहे थे। मैंने उन्हें भी इस योजना के बारे में बताया और हम सभी ने साथ में ही हमारी दुविधा का हल निकालने की ठान ली थी। सबसे पहले हम इस योजना से संबंधित बैंक गए और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें लोन मिलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
2: साथियों, हमारे देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा की मिशन रोड से शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधित उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
3: जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की थी उसके हिसाब से मुझे योजना को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। पर मेरे साथियों के मन में थोड़ा डाउट था, कहीं हमारी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। पर डॉक्यूमेंट को लेकर सभी का ये संकोच जल्दी ही क्लियर भी हो गया। जब हमने हमारी उम्र के एक नौजवान को बैंक में मिठाई बांटते देखा, उससे बात हुई तो पता चला कि वो भी युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए अपना बिजनेस चला रहा है और जोरों शोरों से व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी तय कर दी है। फिर क्या, हमने हमारे भी सपनों को अपनी आँखों के सामने सच होते हमें भी दिख रहे थे।
2: अब सतीश और उसके दोस्तों की गाड़ी तो चल पड़ी, पर आप सभी के लिए योजना के चरणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में 5 लाख तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण मिलता है और दूसरे चरण के लिए पहले चरण में लिए गए मूलधन पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होता है। साथियों, सतीश की इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम सुनते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी का ये मुख्य संदेश।
1: कुमार उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10 लाख युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उस पर मिलता है, जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कि 2000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी के बिना किसी ब्याज के ये ऋण प्राप्त करके अपना व्यवसाय अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, जिस पे उसको 10% जो ऋण है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% उसको सब्सिडी के रूप में भी मिलेगा। महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए जो परियोजना लागत का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है स्वयं का अंशदान होता है वो सिर्फ 10% उनको लगाना होगा, सामान्य वर्ग के लिए 15% उसको लगाना होगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के लोगों से युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोजगार सीकर न बन के जॉब गिवर के बारे में सोचें और अपना स्वयं का व्यवसाय उद्योग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित करें।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई

0: जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मन में सिर्फ नौकरी करना यही विचार आता था। मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपने साथ दूसरों को भी नौकरी देने में सक्षम बन पाऊंगा, ऐसा मैंने और मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था।
1: साथियों, इस योजना के तमाम फायदे हैं पर कुछ लाजमी शर्तें भी हैं, जैसे डिजिटल लेन देन के सापेक्ष रूप 1 प्रति ट्रांजेक्शन तथा अधिकतम 2,000 रूपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दे होता है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी वित्तीय संस्थान ऋण वितरण हेतु पात्र है। तंबाकू उत्पादक जैसे गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम तथा भारत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए आप cmyuva.org.in विजिट कर सकते हैं।
0: जब हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक कंप्यूटर और डिवाइस सर्विस सेंटर खोलना है, तो बिना देरी के हम अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां जाकर हमें पता चला कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए MSME पोर्टल को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया कि पोर्टल पर लिंक आवेदन किया जाता है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत आवेदनों को बैंक में भेजा जाता है, जहां समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिनी मनी, ब्याज उत्पादन तथा CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था भी होती है। आज मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्हें महज वादे ही नहीं किए बल्कि धरातल पर कोशिशों को साकार भी किया। आज ये उन्हीं की देन है कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सचमुच लीडर हो तो ऐसा, योगी जी इसी दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें मेरा सैल्यूट है।
1: दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर निवासी सतीश और उनके बिजनेस पार्टनर्स रवि, निर्भय और उन सभी के परिवार वालों को आज महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपने शहर में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी हैं।
0: मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही असली फ्रीडम है और हम सभी युवाओं के लिए यही बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है। ये नया यूपी है जहां अब युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और युवाओं के हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा धन्यवाद। और साथ ही रेडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, क्योंकि आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश आपके साथ है।
1: साथियों, बदलते और प्रगति की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की और भी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूँ आपका दोस्त आरजराज, जल्दी ही मिलूंगा ऐसी और बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है और आप कनेक्ट है आर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, जहां हमने ढेर सारी बातें की। और जाते जाते आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ छोटे बच्चों का और बुजुर्ग हैं उनका तो खासकर अपने ध्यान रखना है। और हमारी प्यारी वुमनिया है जो इस गर्मी में भी अपने आप को रेस्ट नहीं देती है, तो उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आपकी सेहत बहुत जरूरी है, तो आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ठीक है तभी आप पूरे परिवार को मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि भाई, घर की लेडी है ना, जो सुबह से लेकर शाम तक किचन में जो भी आपको चाहिए खाने पीने से रिलेटेड, वो हमारी फरमाइश पूरी करती रहती है। तो उनको भी एक दिन के लिए, यानी कि जो संडे का दिन होता है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी प्यारी वुमनिया है उनको भी संडे वाला दिन रेस्ट का दिन होना चाहिए कि आज संडे है, आज तुम कुछ नहीं करोगे, बस हम आप सभी के लिए काम करेंगे और आज हमारे हाथों का पकवान खाएंगे। तो आप भी अपने घर में ऐसा ही करिए, तो देखिए हमारी जो प्यारी वुमनिया है ना, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाएगी। तो चलिए श्रोताओं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें। और सच में तो आप सभी के साथ कनेक्ट होकर ना बड़ा मजा आता है। सो बाय।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है और आप कनेक्ट है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, जहां हमने ढेर सारी बातें की। और जाते जाते आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ छोटे बच्चों का और बुजुर्ग हैं उनका तो खासकर अपने ध्यान रखना है। और हमारी प्यारी वुमनिया है जो इस गर्मी में भी अपने आप को रेस्ट नहीं देती है, तो उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आपकी सेहत बहुत जरूरी है, तो आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ठीक है तभी आप पूरे परिवार को मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि भाई, घर की लेडी है ना, जो सुबह से लेकर शाम तक किचन में जो भी आपको चाहिए खाने पीने से रिलेटेड, वो हमारी फरमाइश पूरी करती रहती है। तो उनको भी एक दिन के लिए, यानी कि जो संडे का दिन होता है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी प्यारी वुमनिया है उनको भी संडे वाला दिन ना रेस्ट का दिन होना चाहिए कि आज संडे है, आज तुम कुछ नहीं करोगी, बस हम आप सभी के लिए काम करेंगे और आज हमारे हाथों का पकवान खाएंगे। तो आप भी अपने घर में ऐसा ही करिए, तो देखिए हमारी जो प्यारी वुमनिया है ना, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाएगी। तो चलिए श्रोताओं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें। और सच बताओ, आप सभी के साथ कनेक्ट होकर ना बड़ा मजा आता है। सो बाय।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और फिर से कनेक्ट हो गई हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे और गुनगुनाते रहे। जी मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना, जहाँ पर ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। फिलहाल तो मैं बातें करने वाली हूँ ट्रैफिक अपडेट के बारे में। हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो कदम की दूरी पर जाने के लिए ना हम हेलमेट नहीं पहनते हैं और सीधा स्कूटी बाइक उठाए और चल देते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी गलती ना भारी पड़ जाती है। तो श्रोताओं, चाहे आप ऑफिस से निकले या फिर घर से कहीं पर जा रहे हैं, तो देखिए मंजिल पर पहुंचना हर किसी को है, लेकिन जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों को भूल जाना कभी कभी भारी पड़ सकता है। बिना हेलमेट बाइक चलाना, सीट बेल्ट ना लगाना, रेड लाइट जंप करना या गलत दिशा में वाहन चलाना सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो मुरादाबादीज, घर से निकले तो सबसे पहले हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर चेक करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और सड़क पर जिम्मेदार नागरिक बने। याद रखिए, ट्रैफिक नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये ध्यान रहे, नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को हैप्पी बनाएं। और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहे एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी।

0: कॉरपोरेशन की मजला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: हाँ जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। आप कनेक्ट एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना, जहाँ ढेर सारी बातें लेकर आती हूँ। और आज की तारीख हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज है 10 जून, और 10 जून का जो स्पेशल डे है ना श्रोताओं, बहुत ही खास है। बचपन में जब भी हम लिखने की शुरुआत करते हैं ना, तो मम्मी बोलती है कि अभी पेन यूज नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ पेंसिल से ही लिखो, ताकि तुम कुछ गलत लिखती हो तो उसको रब कर सकती। लेकिन सोचिए, अगर उसी टाइम हमें पेन पकड़ा दिया जाता और हमें लिखना होता क, हम लिख देते ख, तो हम शायद उसको रब नहीं कर पाते। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम पेन यूज करने लग जाते हैं, और पेन से लिखी हुई चीजें आप कभी मिटा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके जिंदगी में ना पेन एक अहम भूमिका है। जिसे आप एग्जाम में कुछ भी लिख रहे हो, लेटर ले रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, और एक ये प्यार भरी चिट्ठी लिखने का जो काम करती है वो पेन है हमारा। और साथ ही साथ आज का डे और भी खूबसूरत है, क्योंकि आज मनाया जाता है नेशनल हर्बल एंड स्पाइसी डे, यानी कि जो हमारे किचन से खुशबू आती है हर्बल मसालों की, जहाँ इलायची, दालचीनी, अदरक, इनकी खुशबू ना हर घर को, यानी कि दूर से ही भाई खुशबू आ जाती है, अच्छा इस घर में ये बनाया जा रहा है, मसालों का डेज है आज श्रोताओं। तो हर दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है, बस हमें थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालना होता है। सो यूं ही आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट, जहां जी ढेर सारी बातें करेंगे। और अभी के लिए लेते हैं हम एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए। और आप सभी से यही कहूंगी कि रेडियो की सुई आपने घुमाना नहीं है, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और आप सुने अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना जहाँ पर लेकर आती है ढेर सारी बातें। और आप सभी को पता है कि 10 जून है और 10 जून को यानी कि यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम्स है वो बहुत से बच्चों के खत्म हो गए हैं और बहुत से बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं। तो श्रोताओं, जिनके एग्जाम हो गए ना, उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपने जैसा सोचा होगा ना कि एग्जाम में कर क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ है तो देखिए घबराइए मत और मायूस मत होइए। एक एग्जाम आपकी कहानी तय नहीं करता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो किसी ना किसी मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। और कहते हैं ना श्रोताओं, अगर आपने मेहनत डट के किया है ना तो आज नहीं तो कल आपको वो आबाद कर ही देता है। इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, जो भी आपने एग्जाम किया है और भगवान से बस प्रे करिए कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बस यही कहना चाहेंगे कि वेल डन, आखिरकार जो ये 3 दिन का सफर था आपका, आपने फाइनली आज उसको खत्म कर लिया है। यानी कि एग्जाम की बात करूं तो 8 तारीख से लेकर यानी कि आज लास्ट डे 10 जून तक जो आपने एग्जाम दिया है, भाग दौड़ किया है। बहुत से बच्चे अपने घर से काफी दूर आए हैं ट्रेन में सफर करके, कोई तो एक दिन पहले पहुंच जाता है कि या हम एग्जाम में लेट ना हो जाए इसीलिए पहले ही चल पड़ते हैं, और जिनके आसपास ही एग्जाम होते हैं वो भी निकल जाते पहले क्योंकि भैया कुछ नहीं पता, अगर ट्रैफिक में आप फंस गए तो आपका एग्जाम रुक सकता है। तो फिलहाल यानी कि जो आपकी मेहनत आपने की है ना वो तो रंग जरूर लाएगी। और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई श्रोताओं, और अर्जेरीना के साथ कनेक्ट है। तो देखिए गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब मौसम चेंज होने वाली है, यानी कि 11 तारीख से लेकर 12-13 तक बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में भी बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। जहां इतनी ज्यादा गर्मी है भैया कि बाहर जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि बाहर जाए ना जाए, क्योंकि इतनी गर्मी में ना इंसान कैसे बाहर जाएगा। लेकिन सोचिए जो हमारे मजदूर भाई है और जो बाहर काम करते हैं, वो इस गर्मी में कैसे काम कर रहे हैं। सो हम उनसे ये कि क्या बात कहना चाहेंगे कि पानी की बोतल अपने साथ रखिए, साथ ही साथ ORS अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। जहां आपको लगता है कि भैया हाँ बॉडी में अब हिम्मत नहीं रही, एनर्जी लो हो रहा है, तो आपने ORS पीना है। नींबू और क्या बोलते हैं चीनी अपने साथ रखिए कि जब भी आपको लगे कि हाँ भैया हमें नींबू पानी पीना है, तो नींबू पानी फटाफट बनाए और आपने पी लिया, वो आपकी बॉडी को यानी कि डिहाइड्रेट रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है। और इस गर्मी में ना तला भुना चीजें जितनी भी है उसको अवॉइड करिए, ठंडी ठंडी चीजें खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए और वाटरमेलन खाइए, जो कि आपके अंदर ना पानी की कमी तो कभी होने ही नहीं देता है। सो और भी ढेर सारी बातें करेंगे, बस यूं ही आप अर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सन डाउनर विथ रंग।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोता और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि जून का महीना चल रहा है, बाजार में आम की खुशबू और कहीं पान की मिठास और कहीं आंधी तूफान का एहसास। कहते हैं फलों का राजा आम और मेहमान नवाजी की शान पान है। दोनों ही हमारी संस्कृति का खास हिस्सा है और जून में दशहरी, लंगड़ा और कई किस्म के आम पूरे स्वाद पर होते हैं श्रोताओं। और जब तक घर में आम ना आए ना, मजा नहीं आता है, क्योंकि हम आम के इतने शौकीन होते हैं कि भाई आम तो चाहिए हमें, या फिर मैंगो शेक बनाकर पी लो, लेकिन आम खाना जरूर है हमें। लेकिन इस मौसम की एक और पहचान है अचानक आने वाली तेज आंधी और तूफान। कभी ठंडी हवा राहत देती है तो कभी पेड़ से आम गिरा देती है। ऐसे में मौसम का मजा और भी मजेदार हो जाता है। सच बताऊं, जब आंधी आती है ना, तो मैं बगीचे की तरफ बहुत जाती थी बचपन में। हाँ, मुझे पता था कि पका आम जो है ना पेड़ से नीचे गिर गए होंगे, तो मैं उसको उठा कर ले आती थी। और जो पेड़ से पका हुआ आम होता है ना श्रोताओं, उसका जो स्वाद होता है, ओ माय गॉड, मतलब इतना प्यारा लगता है ना। जिनको सच बताऊं, कहते होंगे ना कि मुझे नहीं यार आम नहीं पसंद है, जो पिंपल्स की वजह से आम नहीं खाते होंगे, लेकिन जो पेड़ वाला, जो पेड़ पर पक जाते हैं आम, उसका स्वाद भाई सच बताऊं बड़ा रसीला होता है, मजेदार होता है। तो आपको बताना है कि आपको यानी कि बारिश आने से पहले वो ठंडी हवाएं पसंद है या फिर पान या आम, आय हाय, इन तीनों में से बताना है श्रोताओं कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है। और हमारा मैजिकल नंबर है ना, पता है ना आपको, 9837896896 पर आपने मैसेज करके हमें बताना है, ठीक है जी। अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: Mixing in the house.

अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

हाय हाय, प्यारे से गाने के बाद एक बार और आप सभी का मैं श्रोता हूँ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना। और अब मैं बातें करने वाली हूँ, देखिए अब बॉलीवुड की गलियों की तरफ चलते हैं ना, क्योंकि हम इंतजार करते रहते कि हाँ भाई कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है। दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका तो मिल ही जाएगा या फिर फैमिली वालों के साथ बस बाहर जाने का एक छोटा सा मौका चाहिए और वो होता है मूवी। भाई अच्छी मूवी आए ना तो सच बताओ पापा को मनाने में ना मजा आ जाता है और पापा मान भी जाते हैं और फैमिली वालों के साथ मूवी देखने का तो नेक्स्ट लेवल वाला मजा आता है। सो मैं आपको बता दूं कि 19 जून को रिलीज होने वाली है कॉकटेल मूवी, यानी कि कॉकटेल 2 मूवी रिलीज होने वाली है, जो कि ड्रामा भरपूर मात्रा में इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे।

0: साथ ही साथ इस मूवी में शाहिद कपूर, कृति सैनन इस मूवी में आप देखने वाले हैं। और सच बताऊं मुझे शाहिद कपूर इतने मेरा फेवरेट वाले एक्टर है वो, और इनके जब भी मूवी आती है ना भैया सच बताऊं तो मैं देखने तो जरूर जाती हूँ। तो इस जब भी ये मूवी रिलीज होगी तो रीना तो देखिए मूवी देखने जाने वाली है, क्योंकि मूवी देखने का अलग ही मजा आता है वो भी फ्रेंड के साथ। और देखिए श्रोता, आप जिसके साथ जाना चाहते आप महसूस करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। और अभी के लिए एक प्यारा सा गाना, उसके बाद कनेक्ट होंगे।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ बहुत देखने
3: को। हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: उससे क्या स्वाद है?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा है,
3: हमारे शहर के क्या, हमारे पूरे देश के राजा है वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज कहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय स्वादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका, खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी।
5: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता NDA शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
6: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
5: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
7: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
8: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
5: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
9: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48,00,000 रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
10: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
5: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
12: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
13: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
14: कॉल 8826213131।
15: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी,
16: नई सुबह की नई कहानी, लिख रहा है यूपी आज अपनी जुबानी।
17: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश
18: सबसे आगे है। और मेरे साथ,
19: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
18: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
19: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
18: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
20: सुनो

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुँचेगी,
1: और सिर्फ पहुँचेगी नहीं दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा, और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियों और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है, विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सके और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाईयो काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
6: Yo, yo, yo, yo. Got a note.

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर तरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज किशनगंज स्थित पिंजरापोल गौशाला में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन तथा देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बिना किसी अवकाश के निरंतर राष्ट्र सेवा का अनूठा उदाहरण बताया।
2: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज केवल जन प्रतिनिधियों ने ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिक प्रधानमंत्री के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते वह महसूस करती हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, जो सराहनीय है।
2: महिला होने के नाते जरूर मैं कहूंगी कि मोदी जी की हर योजना की धुरी में जो एक महिला रहती है, आज उन्होंने करोड़ों शौचालय बना के जिस तरीके से हर बेटी को सम्मान दिया, करोड़ों उज्ज्वला के कनेक्शन देके जिस तरीके से हर बहन का जीवन सुलभ बनाया, मुद्रा योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी युवतियों को संबल दिया, आज मैं देश की आधी आबादी महिलाओं की ओर से भी मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि देशवासियों का सौभाग्य है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय तक देश की सेवा की है और उनके नेतृत्व में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।
3: विश्व में भारत का डंका तो बज ही रहा है। हमारे देश 11-12 वर्षों में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वह ऐसे ही देश की सेवा करते रहे। जो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहता, अपने आप को प्रधान सेवक कहता, तो उनकी सोच से ये आता है कि हमको देश के किसान, देश के पिछड़े हुए, देश के आदिवासी कोने कोने तक जाना है और देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो देश के लिए गौरव की बात है।
4: 140 करोड़ की जनता के लिए जो उन्होंने अनवरत जो सेवा की है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, कोई वर्ग अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से जो लाभान्वित ना हुआ हो, पूरी दिल्ली की जनता भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कर्मशील, स्वस्थ जीवन, दीर्घायु के साथ और जनता की सेवा में लगे।
0: इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने रोहिणी स्थित श्री श्री राधा माधव इस्कॉन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और महाआरती का आयोजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, दूरदर्शी नेतृत्व और देशवासियों के गहरे और निरंतर विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बैठक के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र सेवा के सतत 4,399 दिन तथा सेवा, सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सभी के लिए राष्ट्र सेवा, तप, त्याग और कर्म निष्ठा की प्रेरणा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में विकसित भारत का संकल्प जन आंदोलन बन चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना कर देश की उन्नति, समृद्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज लोक निवास में युवा संगम चरण 6 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से आए 65 युवा प्रतिभागियों के प्रतिनिधि मंडल से संवाद किया। इस कार्यक्रम का समन्वय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली द्वारा किया गया। एक रिपोर्ट।
5: इस अवसर पर श्री संधु ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित युवा संगम देश की विविधता में एकता को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण को रूप देता है और युवाओं को पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क तथा प्रौद्योगिकी के 5 प्रमुख आयामों के माध्यम से देश को निकटता से समझने का अवसर प्रदान करता है। युवाओं के साथ संवाद के दौरान उपराज्यपाल ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलावों तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे देश के भविष्य के सबसे अहम हितधारक हैं। श्री संधु ने अपने सार्वजनिक जीवन और कूटनीतिक अनुभवों को भी युवाओं के साथ साझा किया तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। ईशानी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज अमृतसर स्थित भाई वीर सिंह साहित्य सदन का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने आधुनिक पंजाबी साहित्य के जनक भाई वीर सिंह के आध्यात्मिक और साहित्यिक योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भाई वीर सिंह जी की आध्यात्मिक और साहित्यिक विरासत आज भी समाज को प्रेरित कर रही है तथा हमारी सांस्कृतिक और नैतिक चेतना को सशक्त बना रही है। रक्षा खरीद और उत्कृष्टता के लिए नवाचार और लघु तथा मध्यम उद्यम एमएसएमई सहित स्टार्टअप्स के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं पर एक कार्यशाला कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य रक्षा ढांचे में एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाना है। इस 2 दिन की कार्यशाला का उद्देश्य संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से उद्योग प्रतिभागियों की समस्याओं का समाधान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने छावला थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज करीब 22 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में इस्तेमाल की जा रही एक चार पहिया वाहन भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति के अंतर्गत की गई है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साइबर ठगी मामले में सहकारी बैंक के उप प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर एक फर्जी अकाउंट के संचालन में शामिल होने का आरोप है, जिसका संबंध देशभर में दर्ज 159 साइबर ठगी की शिकायतों से पाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बैंक खाते के जरिए करीब 67 करोड़ रूपए के लेन देन का पता चला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज अपने कार्यकाल में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक अवसर और केंद्र सरकार के जनसेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। श्री खंडेलवाल ने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास, स्नेह और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसेवा की भावना ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा विकसित भारत का संकल्प जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।
6: देश की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और जिस विश्वास के भरोसे प्रधानमंत्री जी ने देश की विकास यात्रा प्रारंभ की है, भारत विश्वगुरु बनेगा, ये सब देशवासियों के स्नेह, प्रेम और विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ उसके लिए योजनाएं लेकर के आई है। जहाँ कुछ नई योजनाएं तय होंगी वहाँ हम सब कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर तक लेकर के जाएंगे ताकि आम जनता को भी उसका लाभ मिल सके।
0: राजधानी में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने युवा संगम के छठे चरण में युवाओं से भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलाव तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
10: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
11: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
10: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
11: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12: कॉल 7500153841।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम RJ आनंद है और इस वक्त आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है 89.6 FM, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज की जो ये ब्यूटीफुल महफिल है ना, ये किन की बातों से सजने वाली? कौन है जो इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाने वाले हैं? डेफिनेटली आपको पता लगेगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है, कोई अच्छा आपके अंदर स्किल है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टेशन में आके पूरी जनता तक उसको पहुंचा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आके हमें DM कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, व्हाटएवर, आप शेर व शायरी करते हैं, आप पोएट्री लिखते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसके लिए आपके शहर का अपना लोकल रेडियो स्टेशन है ना, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। और आज का ये प्लेटफॉर्म हम किसको देने वाले हैं? आई नो दैट आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी, बट वही है ना कि कभी कभी जब आप आवाज़ सुनते हो और एक लंबे अंतराल की बात सुनते हो तो शायद थोड़ा बहुत मिसिंग तो हो जाता है। बिल्कुल कोई बात नहीं, आज हम आप उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे उनको, एंड जब वो आपसे मिलेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ जाए। वेल, आज की शाम कौन है हमारे साथ इस महफिल में, बताता हूँ आपको। सो आज की इस महफिल में हमारे साथ जो साथ देने वाले हैं वो है उत्कर्ष अग्रवाल जी। एंड इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जब मेरी इनसे भी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में। मतलब ही इज़ अ मल्टीटास्कर इंसान, बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं। एंड फिलहाल मुरादाबाद से तो बाहर ही रहते हैं, जैसे कि हम मुरादाबाद में आके कहीं और से यहाँ पर आपके लिए काम कर रहे हैं, बट अब तो मेरे लिए मुरादाबाद ही अपना शहर हो गया। आई लव मुरादाबाद सिटी। तो बिना किसी देरी के भैया को मिलवाते हैं आपसे। हेलो, हाउ आर यू भैया, कैसे हैं आप? वेलकम टू FM मुरादाबाद।
5: नमस्कार, मैं उत्कर्ष अग्रवाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
4: मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ सर। मेरी जो है हाल चाल आप देख ही सकते हैं, स्टूडियो में बैठने के बाद सब एकदम ऑल गुड हो जाते हैं सर।
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: जी। आप बताइए सर, आप मतलब पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी आए हैं आप?
5: नहीं, FM मुरादाबाद में मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन दिस इज वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू। और
4: आई एम सुपर हैप्पी, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, यू नो।
5: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि शो बहुत अच्छा होने वाला
4: है। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। वो कहते हैं ना भैया, जब किसी भी काम की शुरुआत आप एक अच्छी वाइफ के साथ करते हो, यू नो, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करते हो, तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा ही आता है।
5: डेफिनेटली डेफिनेटली,
4: वो ही चीज यू नो आज इस सेशन में होने वाली है। सो थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं उत्कर्ष भाई, मतलब यू नो आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्या है आपका काम?
5: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊंगा अपनी बात बताने, लेकिन मैं उससे पहले अपनी एक लाइन में जरूर बता देना चाहता हूं, जो मैं इंट्रोडक्टरी शेयर अपने लिए कभी पढ़ना चाहता हूं। हाँ। और वो लिखा था मैंने ऐसे कि भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं।
4: क्या बात है,
5: भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं, मैं जिस्मों की दुनिया में दिल हारने वाला लड़का हूँ। तो मैं जो बेसिकली हूँ, मेरा जो काम है वो, एक तो मैं पोइट हूँ, सिंपल सी बात है, आपने मुझे समझ लिया। तो लिखता हूँ, गाता हूँ और सिंगिंग करने का शो रखता हूँ साथ में। सिंगिंग मैंने सीखी तो नहीं है, लेकिन पोइट्रीज में मेरा बहुत रुचि है, तो मैं प्रेम पे कविताएँ लिखता हूँ। प्रोफेशन मेरा है टीचिंग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ डिपार्टमेंट में, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में फिलहाल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने लिए जो टाइम निकालता हूँ उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं पोइट्रीज लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, या यूँ कहिए कि लोगों के जज्बातों को, फीलिंग्स को बस कागज़ों में उतारने का काम है थोड़ा सा।
4: क्या बात है, साउंड्स इट्स अमेजिंग यार। मैं मतलब बहुत लोगों को इंटरव्यूज करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, एंड मैं उत्कर्ष भाई को सामने से देख पा रहा हूँ, तो मतलब उनको देख के इतने इनोसेंट, इतने यू नो सेंसिटिव लग रहे हैं वो, बट उनकी आवाज़ और उनका यू नो टॉकिंग का वे एब्सोल्युटली अल्टीमेट है यार। मतलब यू नो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो होता है ना उत्कर्ष भाई। एंड इतने मल्टीटास्कर हैं, मतलब आपने सारा कुछ बता डाला यार, तो एक एक करके यू नो आपका जो टैलेंट है उसको मैं चाहूंगा यहाँ पे हम पब्लिश करें, अपनी ऑडियंस के बीच में रखें। एंड गाइस, ये जो सेशन है डेफिनेटली बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे जाने वाला है, सो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इस सेशन को ऐसे एंजॉय करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, तो आप कहीं मत जाइए, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। आज की इस महफिल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं हमारे साथ उत्कर्ष अग्रवाल जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ सुनेंगे। सो एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: mixing in the house.

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद। एक बहुत ही बेहतरीन गाना आपने सुना और इस गाने को सुनकर मुझे तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर हमारे जो प्यारे से गेस्ट हैं उत्कर्ष जी, उनको भी अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल डेफिनेटली।
0: एंड सर, आपने बताया कि आप ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, बट अब आप काफी लंबे टाइम के बाद आ रहे। अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी?
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत समय के बाद आ रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 ईयर हो गया होगा मुझे आए, और उससे भी ज्यादा शायद।
0: ओके, सो कुछ चेंज लग रहा है, यू नो, कुछ भी डिफरेंट, यू नो?
1: बहुत बहुत ज्यादा। मैं मतलब पहले से महसूस कर पा रहा हूँ कि हम लोग कितना डेवलप्ड हो गए और कितनी ज्यादा एफएम मुरादाबाद 89.6 इसका नाम है, वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, वो एक बहुत अच्छी चीज है।
0: इनफैक्ट मुरादाबाद में हर चीज अपने आप में मतलब बहुत ही बढ़िया है, यू नो।
1: मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप आज के टाइम में भी एफएम जैसी चीज में तरक्की कर पा रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज है कि लोग सुन रहे हैं।
0: Absolutely.
1: और ये सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, बहुत अच्छा एक चीज बना के उनको दे रहे हो, वो उनको मजा आ रहा है, जो पब्लिक को बना रहा है, आपका लिसनर आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे मैं सोशल मीडिया से तो कनेक्ट हुई, तो मैं देखता हूँ कि बहुत रीच आप लोग पकड़ रहे हो, बहुत अच्छा काम है यार।
0: बट दिस इज वेरी, यू नो, कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड भी है बहुत ज्यादा, इतना इजी नहीं है। दिस इज वेरी क्रिएटिव।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक जैसे मैं भी हूँ, मुझे गाने का इतना नॉलेज नहीं है। मैंने आपको शायद बताया होगा, मेरा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले स्पॉटीफाई और यूट्यूब म्यूजिक और सावन पे भी मेरा एक गाना आया।
0: वो वाह,
1: जानिया
0: क्या
1: के नाम
0: बात
1: से वो लिखा मैंने है, और मैंने गाया भी है, बट सम वॉइस सैंपल्स यूज करे हैं मैंने उसमें, ऑटो ट्यून किया है, क्योंकि आई एम नॉट अ हार्डकोर सिंगर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके एफएम रेडियो पे बता दूं, क्योंकि मैंने सिंगिंग सीखी नहीं है, बट मुझे लिखना था और वो गाना मैं चाहता था कि बने और बिना खर्चे के बने, सबसे बड़ी बात। तो मैं चाहता था कि वो बने, तो मैंने खुद सिस्टम पे बैठ के उस पर 2-3 महीने जो मैंने काम किया है, मुझे पता है कि एक गाने को गाना बनाने में शायद कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। इसी तरीके से एक जो पीस आप तैयार करते हैं, एक शो आप तैयार करते हैं, उस शो को शो बनाने में, जो फिनिश प्रोडक्ट लोगों को कहने में सुन के अच्छा लगता है, उसको बनाने में पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी रिसर्च होती है, वो डेफिनेटली मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं उसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ भाई सर, बहुत अच्छा शो बनाते हैं।
0: अरे धन्यवाद सर। एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि एज अ बीइंग अ आरजे, अगर आप रेडियो कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल होना चाहिए, रेडियो पे जेन्युइन होना चाहिए। जैसे एक एक्टर को कैमरे पे बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग के साथ आना पड़ता है, क्योंकि वरना कैमरा होता है ना, छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है एक एक्टर की, है ना। वैसे ही हमारा माइक होता है, हम इसके साथ में ना कोई भी, यू नो, फेक चीज नहीं कर सकते हैं। आप जितना ओरिजिनल साउंड करोगे, लोग उतना ज्यादा आपसे कनेक्ट होंगे। वो कनेक्टिविटी तभी बनती है जब आप ऑर्गेनिक चीजें डिलीवर करते हो बेसिकली। सो वो चीजें, सो गाइज प्लीज बोर मत होना, बैक टू पॉइंट चलते हैं हम उत्कर्ष भाई की दुनिया में, एंड कुछ उनसे इंटरेस्टिंग सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, हम जब अभी म्यूजिकल ब्रेक पे गए थे तो मेरा उनसे एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा था, वो यू नो कुछ वॉइस को लेके कुछ तो यू नो कर रहे थे हम लोग आपस में टॉक। आरजे उन्होंने देखे हैं और उनको अच्छा लगा मेरा, और वो भी कुछ बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, यू नो, वॉइस के बारे में कुछ तो चल रहा था उत्कर्ष भाई अभी हम लोग।
1: मैं आपसे ये बात कर रहा था कि वॉइस की जो बात हुई, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि वॉइस कितना मैटर करती है जब आप कोई पोइट्री डिलीवर करने वाले, आप कोई शो डिलीवर करने वाले, स्पेशली इन आरजे या एंकरिंग का जो शो होता है, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। और यदि हमारी वॉइस अच्छी नहीं होगी या इम्पैक्टफुल नहीं होगी, तो शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी।
0: Correct.
1: मैं बहुत बार देखता हूँ, मैं बहुत सारे पोएट्री शोज में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो लोग नए नए लिख रहे हैं या नया नया पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ते हैं, मतलब एज अ जैसे रीडिंग कर दी उन्होंने, और उनकी वॉइस में वो इम्पैक्ट नहीं होता। शायद उन्होंने, उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे।
0: Correct.
1: और वो वॉइस उनकी कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों से। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ज्यादा अच्छा ना भी लिखा हो, और उसका पढ़ने का, कहने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले के दिल में उतर जाते। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे आंखें और आवाज जो होती हैं वो दिल में उतरने का रास्ता होती हैं। तो अगर किसी के दिल में आपको उतरना है, तो आपको अपनी आवाज में भी गहराई लानी चाहिए, जो कि आपकी तो आवाज में मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अरे सर, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट अ शायर, आई एम नॉट पोएट्री,
1: बट मतलब अगर आपसे कोई फोन पे बात करे तो आई थिंक वो फैन हो जाएगा, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, क्यों ना।
0: वो अगर मैं आपको उत्कर्ष भाई एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर करूँ, अगर हम रेडियो इंडस्ट्री में है, रेडियो फील्ड में है, तो डेफिनेटली वॉइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो में, और रेडियो पे लोग हमें देख नहीं रहे।
1: आप देखिए, गाने भी लोगों ने कितने अच्छे अच्छे बना दिए, लेकिन जिनकी वॉइस अच्छी नहीं है, जो बना नहीं पा रहे, वो कानों में रह नहीं पाएंगे, याद नहीं रह जाते आपको.
0: Correct.
1: याद रह जाती है वो सूथिंग वॉइस.
0: एब्सोल्युटली.
1: वो शोज में अगर आपको याद करता है तो किसी ने रेडियो में आपका चेहरा नहीं देखा आरजे का स्पेशली. अगर लोगों को याद रह जाता है कि ये वॉइस है आरजे आनंद की, तो वो क्या है, वो आवाज है. आई थिंक वॉइस इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल. वो बहुत नेसेसरी है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए.
0: जैसे अभी आपकी आवाज बहुत इम्पैक्टफुल है और जो हम सभी लिसनर्स को, बिकॉज मैं भी अभी आपका लिसनर ही बन के बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे बहुत मजा आ रहा है और हम सब बहुत वेट कर रहे हैं. उत्कर्ष जी, आप कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ तो सुना दें जो आपके दिल के बहुत करीब है. कौन सी चीज है जिसके साथ आप, एक कहते हैं ना किसी भी काम की शुरुआत आप कुछ जब हैपनिंग तरीके से करते हो तो मजा आ जाता है.
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ बढ़िया सा, कुछ खुशनुमा सा माहौल बनाते हैं कुछ तो अपने लिसनर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, कुछ अच्छा सा जो आपको लगता है यार ये चीज तो मैं डिलीवर कर ही सकता हूँ. आनंद,
1: बड़ी प्यारी सी मेरा एक शेर है छोटा सा.
0: हाँ हाँ,
1: बहुत ही प्यारा है, वो सुनिए. कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे. ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो.
0: वाव.
1: ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो. तुम्हारे इन झुमकों में बसती है जान मेरी, इन्हें उतार कर तुम कहाँ रख रही हो.
0: क्या बात है यार. मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम से हमने ये पोइट वाला मतलब शुरू किया है, स्पेशली मैं अभी कुछ टाइम से कर रहा हूँ ये उत्कर्ष भाई.
1: अच्छा.
0: सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे पहले ना समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है, ये होता क्या है, मतलब व्हाट इज दिस पोएट्री और ये सब. मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स वगैरह में मैं गया हूँ तो देखा है मैंने लोग करते हैं. आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें सामने आ जाती हैं. आप स्क्रॉल करोगे आपको नहीं पता आपके सामने क्या चीज अच्छी आ जाए जो आपको टच कर जाए, तो वो चीजें. बट ये जो चीजें आप लोग बोलते हैं ना, जो भी आपके शब्द होते हैं जो पोएट्री में आप रो रहे हैं या जो भी आप शायरी कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये बड़ी सच्चाई वाली चीजें हैं, बस आप उनको ना अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो. बट ये ऐसा लगता है कि सच्चाई से हमारा एक सामना करा रहे हो आप लोग.
1: बिल्कुल.
0: ये पोएट्री हो गई, शायरी हो गई, ऐसा लगता है हमें आईना दिखाया जाता है.
1: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं. मैं मतलब कभी कभी मुझसे ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, हालांकि हर राइटर इससे रिलेट करेगा. उनसे ये पूछा जाता है कि आप इतनी जो शायरियां लिख रहे हैं, क्या दिल टूटा है या दिल लगाया है किसी के लिए लिख रहे हैं.
0: ये तो मैं भी पूछने वाला था.
1: बट हाँ, मैं बता देता हूँ आपको कि हाँ, समटाइम्स ये जरूरी हो जाता है.
0: मतलब
1: समटाइम ये है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरी नहीं है कि आपका दिल टूटा हो अगर आप एक अच्छे राइटर हैं या फिर आप अच्छे इमेजिनर हैं. आप जितना अच्छा सोच पा रहे हैं उतना अच्छा आप लिख पा रहे हैं. और उसके लिए बहुत जरूरी कि आप अच्छा पढ़ें.
0: गॉट इट.
1: पढ़ेंगे आपकी सोच अच्छी होगी. और मतलब जैसे मेरा एक और, मैं आपको एक शेर सुना.
0: अरे वाह, बिल्कुल इरशाद.
1: मैं दिल्ली में रहता था जब, तो मैं लीगल इंटर्नशिप कर रहा था हाईकोर्ट में.
0: ऑलराइट.
1: तो वहां पर हम एक रूम में रहते थे और पीजी में, उसके बराबर में एक गर्ल्स पीजी था. तो अक्सर 8 बजे एक लड़की छज्जे पे आती थी.
0: मतलब छज्जा जो छत,
1: छज्जा यानी कि बालकनी.
0: ऑलराइट.
1: वो छज्जा इसलिए क्योंकि मैंने वो वर्ड बालकनी
0: यू नो, मतलब मुझे थोड़ा सा इसलिए भी लगा क्योंकि एकदम फ्लैशबैक में चला गया. छज्जा मतलब हमारे घर के बाहर एक छोटा सा बना दिया जाता था, उसमें पेड़ वेड़ रख देते थे हम लोग.
1: बालकनी तो मॉडर्नाइज घर में होती है, पहले तो छज्जा ही हुआ करते थे.
0: करेक्ट.
1: तो एक लड़की ठीक 8 बजे बालकनी में आती थी और मेरा एक जो रूममेट था वो उसको डेली देखता था. और उसके बहाने हम लोग चाय पीने जाते थे. और ये होता था कि अगर दिख गई तो चाय वो पिलाएगा, नहीं दिखी तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा.
0: क्या बात है. ये मतलब एक बड़ा अच्छे से सेटिंग्स आप लोगों ने करके रखी हुई थी. मतलब
1: जी,
0: तो कितनी बार है जो जब आपने उनको चाय पिलाई है.
1: नहीं नहीं, नहीं मेरा केस नहीं था, ये केस मेरे दोस्त का था और उसने मुझे बहुत बार चाय पिलाई.
0: अच्छा. नहीं नहीं, मतलब तो आप लोगों की तो यहाँ पे एक बेसिकली एक टर्म्स एंड कंडीशन थी ना कि अगर वो हाँ, आई तो वो पिलाएगा, नहीं हाँ, आई तो आप पिलाएंगे.
1: तो मैंने तो बहुत कम पिलाई
0: थी. ऑलराइट. मतलब वो आई है इसलिए उसने आपको पिलाई है.
1: जी जी,
0: गजब. तो यार
1: हुआ ये कि कुछ हाँ, दिन तक वो आई नहीं.
0: ठीक है.
1: तब एक शेर मेरा बना कि एक शेर सुनाता हूँ. शेर बना
0: प्लीज. यार श्योर.
1: ओके. शेर ये था कि तभी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया.
0: वाह.
1: तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया.
0: क्या बात है.
1: भी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया. तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया. तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी.
0: वाह जी वाह.
1: तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी. तुमने तो बस छज्जे पे आना छोड़ दिया.
0: अरे वाह, क्या बात है यार. बहुत ही बढ़िया. मतलब
1: तो कभी कभी शेर आपके जो ऐसे पोइट्रीज होती हैं वो ऐसी सिचुएशन से निकलती हैं.
0: अच्छा, ये चीज ना बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इजी. आप किसी भी चीज को जब देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, फिर उसको आप अपने शब्दों में पिरो रहे हैं.
1: बिल्कुल.
0: ये बहुत मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग भी होता होगा.
1: बिल्कुल होता है. लेकिन जब आप अच्छा पढ़ ले होते हैं तो कभी ना कभी ये चीजें बनती हैं। जैसे एक और है, जैसे मैं टीचर ही हूँ, तो मैं पढ़ा रहा था लॉ कॉलेज में, तो मैं बड़ा फ्रेंडली टीचर हूँ, तो मेरे से दो मेरे
0: वो
1: जो बच्चे
0: तो
1: होते हैं
0: मेरे
1: वो
0: को
1: बात कर
0: आपको
1: लेते
0: देख
1: हैं,
0: के लग रहा है आपका एनवायरमेंट ऐसा है ही।
1: तो अक्सर बच्चे अपने, एक लड़का है तो वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में ऐसे ही डिस्कस कर रहा था
0: ऑल राइट।
1: कि मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारी अटेंडेंस लो हो रही है, क्यों नहीं आ रहे हो? तो क्लास के बच्चे ने चिल्लाया, सर वो भी नहीं आ रही है इसलिए नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है और तब एक शेर बनता है कि आंखों से ही दिल में उतर जाना होता है,
0: वाह जी वाह,
1: इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है।
0: गजब।
1: आंखों से दिल में उतर जाना होता है, इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है, कॉलेज बस तेरे दीदार को आते हैं,
0: अरे वाह,
1: अटेंडेंस तो महज बहाना होता है।
0: क्या बात है यार, आउटस्टैंडिंग। मतलब कितना कमाल का आपका जो है सेंस ऑफ
1: तो
0: ह्यूमर
1: ये
0: है भाई
1: जो
0: साहब,
1: अटेंडेंस है ये तो सिर्फ एक बहाना होता है,
0: बहाना
1: हम तो
0: होता है,
1: कॉलेज तेरे दीदार को आते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है।
1: तो
0: अच्छा,
1: सिचुएशनल
0: ये
1: शायरीज भी कभी कभी
0: बेसिकली, ये
1: होती
0: अगर देखा जाए तो ये सच भी है, कहीं प्रतिशत सच भी है ये बात।
1: है।
0: बहुत
1: हाँ
0: लोग
1: जी हाँ
0: हैं
1: जी,
0: जो
1: बिल्कुल
0: यू
1: सच
0: नो
1: है।
0: ये
1: तो
0: चीज को
1: मैं वही
0: करते
1: कह
0: हैं
1: रहा हूं कि
0: फॉलो।
1: जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा
0: करेक्ट,
1: आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। आप जॉन एलिया साहब को लिखिए, आप बशीर बद्र साहब, जितने बड़े बड़े पोइट्स हैं आप उन्हें अगर सुनिए, तो बशीर बद्र साहब अपनी शायरी में कहते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
0: वाह
1: इतना मत चाहो उसे वो खुदा हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हैं उतना अच्छा आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते
0: दैट्स
1: हैं,
0: अमेजिंग
1: गा सकते हैं।
0: यार। बातें उत्कर्ष भाई से ढेर सारी हो रही हैं और बहुत सारी चीजें अभी आगे भी सुनेंगे। आई नो दैट थोड़ी सी लंबी कॉन्वर्सेशन होगी, बट कोई बात नहीं। अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का टाइम है, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वी कम बैक, मैं और उत्कर्ष भाई आ जाए। आज मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ स्टूडियो के अंदर, और आज हमारे साथ उत्कर्ष भाई मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। ढेर सारी बातें कर रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी प्यारी प्यारी शेरो शायरी से आपको जो है आज बड़ा सुकून दे रहे हैं भाई। मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया है भाई की बातें सुन के। अब आपको जो एक बढ़िया से गाना सुनाते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुन रही आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो आज की शाम, एंड आई एम रियली श्योर आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको भी ये सेशन डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा। यार मुझे तो एक ही शायरी आती है, इतने सारे शायर आए हैं, मैंने एक भी शायरी नहीं करी है, बट मेरे को ना एक्चुअली वो थोड़ी गंदी वाली शायरी आती है, उसको सुन के आप लोग हंस जाते हो। वो है ना मेरी एक बड़ी वो पुरानी सी शायरी जो मैं अक्सर चिपकाता रहता हूँ कि भर लो बाहों में कर दो मदहोश, भर लो बाहों में कर दो मदहोश, कौसे कबूतर खासे खरगोश। तो भाई मेरे को इससे आगे वाली नहीं आती है। वेल लेट मी टेल यू, ये जो शायरी थी तो बहुत गंदी थी, बहुत बकवास और भाईयात शायरी थी मेरी, बट जो उत्कर्ष भाई सुना रहे हैं बहुत ही प्यारी है यार, बिकॉज उनका जोनर ही यू नो अलग ही है। भाई वेलकम बैक है आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू।
0: एंड आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे यार हमारे साथ इस सेशन को।
1: मैं डेफिनेटली बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये सेशन कहीं खत्म ना हो जाए।
0: ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भैया, मैं क्या ही करूँ, बट बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। यू नो मतलब दोस्तों कभी कभी होता है ना कि जब आप किसी से अच्छे से दिल से बात करते हो तो ऐसा लगता है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसा होता है उत्कर्ष भाई? जैसे मैं एक्चुअली भाई को बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था, तो भाई भी मेरे को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ ये पर्सन है जो आने वाला है, आई डोंट नो। फिर ये इन्होंने मेरे को पूछा, मैं हाँ जी हाँ जी, फिर जो ना थोड़ी सी बातचीत करी, लेकिन ऐसा लगा नहीं यार हम पहली बार मिल रहे हैं भैया। हाँ, यहाँ पे स्टूडियो में आके से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लाइव ऑन एयर, तो ऐसा लग नहीं रहा ना कि हम पहली बार मिले हैं, और ये होना भी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा लगा आप आए, और ये बड़ी खुशनसीबी हमारी कि हम आपको सुन रहे हैं यहाँ बैठ के।
1: मेरी भी खुशनसीबी है कि आपने मुझे बुलाया।
0: अरे सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप बड़े बिजी और बड़े बिजी पर्सनालिटी हैं आप, मैंने सुना है, तो आप जो है शाम को रवाना हो जाएंगे।
1: पर्सनालिटी का तो सर ये है कि मतलब जब आप काम में लग जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आपके ऊपर आ जाती हैं, तब फिर आप बिजी हो जाते हैं, वरना आपको पैशन और प्रोफेशन आपका जब अलग हो जाता है ना, तो प्रोफेशन आपको पैशन की तरफ आने नहीं देता।
0: यार मेरा ऐसा मानना है उत्कर्ष भाई कि अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना ले तो कितना अच्छा है।
1: बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, और इसी कोशिश में भी हूँ।
0: नहीं मैंने तो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। मेरा पैशन था मुझे रेडियो में आना है, मुझे बातें करनी है, बिकॉज आई लव यू नो टॉक करना, ये आई लव दिस जॉब, मैं हमेशा इसको बोलता भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
1: ज्यादा खुश इंसान ही नहीं होगा,
0: इसीलिए मुझे बहुत सारे लोग
1: ये काम कर लिया है। तो
0: मतलब यार मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष भाई, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मुझे रात को 2 बजे भी कभी ऐसा लगता आता है कि यार आपको आना है करने कुछ, तो मेरे को लगता ही नहीं रात के 2 बजे यार यही तो करना था मुझे, अब 2 बजे क्या देखना भाई, चल यही तो मेरा पैशन था।
1: जब दिल से काम होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं।
0: करेक्ट, और फिर हमें उसमें ना ऐसा नहीं लगता यार हमें टाइम पूरा करना है।
1: बिल्कुल डेफिनेटली,
0: हमें उसमें लगता है यार थोड़ा टाइम और मिल जाए।
1: जॉब होता है ना, तो जॉब होता है 9 to 5, और आप जब जॉब की तरह करते हैं तो वो 5 बजने का इंतजार होता
0: है,
1: सुबह 9 बजने से पहले आप उठते नहीं,
0: उठते नहीं है।
1: तो लेकिन आपका जब पैशन होता है ना, काम करने का मन होता है, अच्छा होता, तो सुबह के 9 नहीं दिखते, शाम के 5 नहीं दिखते आपको।
0: करेक्ट करेक्ट, और जब आप दिल से काम करते हो,
1: जब दिल से आप काम करते,
0: बहुत ही बढ़िया आपने बोला है भाई, और हम भी आपके लिए डेफिनेटली प्रे करेंगे कि आप अगर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो आई रियली होप ऐसा हो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे कनेक्ट हूं, तो आप ही बोलें कि आनंद आज मैं अपने पैशन के साथ आया हूं और ये मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: दैट्स अमेजिंग उत्कर्ष भाई। अब जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं जिक्र कर रहे थे किसी फ्रेंडशिप का कोई किस्सा, आई थिंक आप सुनाने वाले थे ना।
1: हाँ, मैं एक दोस्ती का बहुत ही सच्चा और मतलब अच्छा किस्सा सुनाने वाला था।
0: डेफिनेटली,
1: लेकिन उसको बस थोड़ा सा मैंने पोएट्री में डाल दिया है, उसके अंदर की रियलिटी बिल्कुल रियल है। तो हुआ ये कि ये फ्रेंडशिप डे पे मैंने लिखा था।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: तो कल कुछ पुराने पन्नों को टटोला तो कुछ बिखरे अधूरे अल्फाज मिले।
0: क्या बात है।
1: उसी डायरी में तुम्हारा जिक्र किया था मैंने, जिसकी हर शायरी में सूखा सा मुरझाया हुआ गुलाब भी था, और ये वही गुलाब था जो मैं तुम्हें देने के लिए एक गरीब बच्चे से खरीद कर लाया था, और उसने मुझे साथ में एक दुआ भी दी थी, कहा था भैया आज ना आपको आपका प्यार मिल जाएगा। तो उस दिन ठान लिया कि कह दूंगा तुमसे दिल की हर एक बात, बता दूंगा तुम्हें अपने सारे जज्बात, मिटा डालूंगा दरमियां हर दूरी, और तब जाकर होगी तेरी मेरी कहानी पूरी।
0: क्या बात है यार।
1: मगर मगर मगर मगर मगर मेरी एक किस्म, मैं तुम्हें कभी वो गुलाब दे ही नहीं पाया, और देता भी तो कैसे, तुमने उस दिन मुझसे पूछ जो लिया था कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे ना, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा, और तेरे इन 2 सवालों ने मुझे तुझसे कुछ भी कहने से रोक दिया। तब दिल से यह आवाज आई कि शायद शायद तुझे मेरे हाथों में हाथ डालकर चलने से ज्यादा मेरे संग वक्त बिताना पसंद है, मेरे संग लड़ना पसंद है। तुझे बाजार के तोहफे नहीं, मेरे साथ वक्त बिताना पसंद है। और फिर इस दिल ने तय कर लिया कि अब चाहे अब कोई भी इजहारे नहीं होगा, कोई मोहब्बत नहीं होगी, होगी तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती। और वो इसलिए भी क्योंकि मैं अपनी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मुझे कबूल था। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: बहुत ही बढ़िया यार।
1: तो ये जब किसी दोस्त को लिखा गया कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तब ये लिखा गया था। बड़ा कनेक्टिंग है। आई होप सो कि मेरे जो लोग ये सुन रहे हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, वो जब ये सुनेंगे तो वो बहुत रिलेट कर पाएंगे इस चीज से।
0: मेरे को ना एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, यू नो, कि आप जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हो ना, आप उसमें यू नो घुस जा रहे हो। वो कहते हैं ना, अगर आप कुछ चीज करते हो तो आप उस कैरेक्टर में घुस जाओ। आपने अभी ये फ्रेंडशिप वाला जो भी किस्सा शेयर किया, इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो। आई डोंट नो, बिकॉज ये एकदम रिलेटेबल इसलिए लगा क्योंकि वो स्टोरी आपने खुद के ऊपर यू नो एकदम से ब्रॉडकास्ट कर दी कि ये मेरी कहानी है। और आपने उसको ऐसे शेरो शायरी या पोएट्री वे में नहीं, आपने उसको स्टोरी टेलिंग के साथ में यू नो इतने फ्लुएंटली बोला, इतने अच्छे से और इतनी मधुर आवाज में मनमुक्त हो गया मैं।
1: इसीलिए मैं कहता भी हूँ हर बार कि आप जो लिखने वाले हो उसको पहले ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को फील करिए। और जब आप फील कर लेंगे उस चीज को, दैट आप इमेजिन कर लेंगे कि आई एम इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैं हूँ, तब आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
0: बिना
1: राइटर आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
0: और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ डिलीवर भी कर रहे हैं,
1: तो आप उससे अच्छा नहीं डिलीवर।
0: क्योंकि वो जब तक आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, जब तक वो फीलिंग नहीं होंगी। इनफैक्ट ये सिंगर का भी सेम रहता है, उत्कर्ष भैया जब वो कोई गाना गा रहे होते हैं, अगर उनका उनका जोनर है कि भैया आपको सैड गाना है, तो वो मैंने उदित नारायण जी का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि आप जब अगर कोई हैप्पी गाना गा रहे तो आप इतने हैप्पीनेस के साथ गाइए कि आपसे दुनिया में ज्यादा कोई खुश है ही नहीं। मतलब आपको ऐसे गाने कि सबसे ज्यादा खुश आप हैं, तभी वो एक्चुअल में फील होगा सामने वाले को। और अगर आप कोई सैड चीज कर रहे हो तो आपको ऐसे करना है कि आपसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई और है ही नहीं, आप ही सबसे ज्यादा दुखी दुनिया के इंसान है, तभी आप एक्चुअल में अपना जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आप दे पाएंगे 100%। ये बिल्कुल फैक्ट है और ये आप में कूट कूट के भरा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बड़ी शांत और बड़ी सरल स्वभाव के साथ बात कर रहे हैं, मतलब इतनी रियल लाइफ में भी शांत है या फिर इधर माइक पे बैठ के आप इतने शांत है?
1: नहीं, मैं जनरली मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही अपना इंट्रोडक्टरी शेयर बताया था, मैंने कहा कि मैं भोला वसादा था, जान निसारने वाला, तो मैं हूँ एक्चुअली। मेरा नेचर ही सबसे पहले
0: चुप चुप से रहने वाले टाइप के लग रहे हैं आप।
1: रहने वाला नहीं, चुपचाप तो नहीं रहता हूँ, बोलने वाला, हंसी मजाक करने वाला और ये। लेकिन मेरे अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो कि रिजर्व्ड है बहुत ज्यादा।
0: ऑलराइट,
1: तो मैं काफी जगहों पर खुद को शांत और अच्छा महसूस कराने के लिए अकेले बैठना पसंद करता हूँ, बात करना। और मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो जनरली काम ही रहता है। हूँ टीचर लेकिन कभी चिल्लाता नहीं हूँ क्लास में, इवन जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चों से भी अगर आप कभी मिलेंगे तो पहली बार टीचर्स की फैन फॉलोइंग मैंने देखी है, जो मेरी है शायद, आई गेस मेरी है।
0: लग रहा है मुझे वो आपकी यू नो वो इंसान की नेचर में आ जाती है।
1: कर रहा हूँ बट मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नेचर है ऐसा कि मैं थोड़ा सा काम रहता हूँ, थोड़ा सुलझा हुआ, थोड़ा
0: नहीं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई जाना है, उसके बाद वो वहां जा रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप सेम चीज कर रहे होते हैं तो कभी कभी आ जाता है।
1: असल में क्या था कि मेरे फादर से पापा बहुत पापा टाइप वाले पापा थे मेरे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, तो उनसे कभी ना कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पापा मुझे एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, पोएट्री या शायरी कुछ करना है समथिंग। अभी तो क्या है कि अभी जगह जगह जाते हैं, शोज करते हैं, तो पता चल जाता है, पापा बड़े खुश होते हैं। अभी ओडिशा मुरादाबाद में जो हुआ था लिटरेरी इवेंट, उसमें भी मुझे पढ़ने का मौका मिला और काफी अच्छा मोमेंट वगैरह उन्होंने दिया, तो पापा को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी हमारे टाइम पे, जब हम छोटे थे तब हमें इतना मौका नहीं मिला, तो हम पढ़ाई। फिर मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने मन का ना कर सको तो आप जो कर रहे हैं उसमें अपना मन लगा लीजिए।
0: That's nice, very nice. ये बहुत ही genuine और बहुत ही real बात बोली।
1: हाँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, मैं पापा के डर से किताब खोल के बैठ सकता हूँ बट मैं पढ़ नहीं सकता,
0: मतलब उनको शो ऑफ करेंगे कि हाँ आपका प्रेशर है, हम पढ़ रहे हैं।
1: और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम पे यही
0: कर रहे हैं, वो दिल से नहीं आ रहा होता बेसिकली।
1: लेकिन अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना ही है, आप इससे परे नहीं जा सकते, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप अपना कोई स्टेप नहीं ले सकते, तो फिर जो कर रहे हैं उसको मन से करिए, क्योंकि इनपुट जब आप दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, विच इज मनी करंटली, मतलब टाइम इज मनी ना, और अगर आप अपना किसी चीज को टाइम दे रहे हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए.

0: जल्दी मिलेंगे आपसे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। उत्कर्ष अग्रवाल जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और हम लौट कर आएंगे तो उनकी एक बहुत ही अच्छी सी एक वो उन्होंने बताया था ना राधा कृष्ण के ऊपर कुछ तो लिखते हैं बढ़िया सा, तो वो हम सुनेंगे। आप कहीं मत जाइए, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। डोंट फॉरगेट, वहां भी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। एंड ऑफिशियल आईडी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं आप, एफ एम मुरादाबाद 89.6 इस नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कीजिए।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
4: प्रकृति से खुशियों की लहर।
5: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरारी।
1: किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए।
0: तो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ था यार भाई, मजा आ गया आपकी इस कॉन्वर्सेशन को सुन के। एंड आई होप यार आप तो खुद ही डिलीवर कर रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें, आपको कितना मजा आ रहा है आप बताओ यार भाई।
2: नहीं, मुझे तो डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा है बातचीत करके, क्योंकि मैं तो चाह ही रहा था कि ये सेशन खत्म ना हो, क्योंकि
0: अच्छा
2: मजा आ रहा है बातचीत में।
0: अरे वाह क्या बात है। अच्छा मतलब यू नो आपको ऐसा कुछ पता था कल तक कि आज आप इधर आने वाले हैं?
2: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस
0: कल रात को तो ऐसे सोचे नहीं थे कल एक आनंद नाम के लड़के से भी मुलाकात होने वाली है।
2: बिल्कुल, आरजे आनंद जी से मिलके वाकई आनंद आ गया।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच।
2: आप अपने नाम को सार्थक तो कर रहे हैं।
0: अरे सर थैंक यू सो मच। वही वापस बैक टू पॉइंट कि जब आपका पैशन प्रोफेशन बनता है ना तो आप उसमें जी जान लगा देते हो भाई, है ना। फिर उसमें जो निकल के आता है कि ओरिजिनल वाला प्यार, वो फिर लोग पसंद करते हैं यार। तो वही वाली चीज है,
2: ऑटोमेटिकली पसंद आने लग जाता है लोगों को, क्योंकि आपने जो किया होता है ना वो कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल होता है।
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि वो आप उसमें वो चीज कर रहे होते हो जो आपको, जिससे आपको प्यार था वो चीज आप और अच्छे से करते हो। होते ना जिस चीज में हमें मोहब्बत होती है कुछ नहीं आप ही अच्छी हो जाते, है ना। वो चीज है जैसे आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको उस चीज से प्यार है, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर से बाहर निकल रही है, मैं देख पा रहा हूँ। सो भैया आप सोशल मीडिया तो डेफिनेटली यूज करते हो?
2: हाँ मैं यूज करता हूँ मेरा सोशल मीडिया, मेरा अपना जो पर्सनल अकाउंट है। हालांकि मैं
0: कितना मतलब एक्टिव है सोशली, आप अभी इतना अच्छा आप करते हो तो मुझे लगता है आपको सोशली पे जाना चाहिए।
2: मैं सोशली पोएट्रीज और इन सब चीजों को लेकर एक्टिव नहीं हूँ, सोशली में उतना ही एक्टिव हूँ जितना सोशल मीडिया को देखने में टाइम लगता है।
0: ओ भाई
2: मैं इसी चीज में थोड़ा सा पीछे हूँ।
0: ऑलराइट,
2: मैंने जैसे कि कहा कि मैं और कामों में इतना उलझा हूँ, जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कि खुद को नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, और दैट इज माई फॉल्ट। मैं इसे मानता हूँ कि ये मेरा प्रॉपर फॉल्ट है,
0: बिकॉज
2: अपने आप को जरूर टाइम देना
0: मुझे लगता है कि इतना अच्छा आप कर रहे हैं और ये जहां तक 4-5 हज़ार लोगों तक जा रहा है, अगर आप ये मतलब जो आप करते हैं अपना जहां भी आप जाते हैं जितने भी आप सर्कल में करते हैं, बट सोशल मीडिया दैट इज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। अगर आप वहां कोई चीज कर रहे हैं तो वो फिर आप बताओ उसकी क्वांटिटी कितने लाखों करोड़
2: पेज था। एक हर्फ के नाम से मैंने एक पेज बनाया था,
0: ऑलराइट,
2: क्योंकि एक हर्फ वो पहली पोएट्री थी जो मेरी बहुत वायरल हुई थी।
0: अरे वाह,
2: एक हर्फ का टाइटल था उसका, तो मैंने उसी के नाम से पेज बनाया।
0: नाम बड़ा डिफरेंट अच्छा लग रहा है यार इसका, एक हर्फ।
2: हर्फ का मतलब होता है एक अक्षर, एक लेटर,
0: ऑलराइट,
2: एक अल्फाबेट आप कह सकते हैं। तो एक हर्फ मैंने लिखा था, मैं एक हर्फ की कुछ ऐसा लिखूं, तेरे नाम जिंदगी लिखूं, समथिंग ऐसा। वो बहुत पॉपुलर पोएट्री थी मेरी, बहुत वायरल हुई थी। बट फिर हुआ ये कि धीरे धीरे उस पर व्यूज उतना नहीं मिलता था मुझे, क्योंकि आजकल लोग जो होते हैं ज्यादातर अच्छी चीजों को कम और
0: मुझे ऐसा लगता है मुझे भी वही बोलना था कि आपको ना यार आपको ना दुनिया के लिए नहीं करना है, हमें अपने लिए करना है। आपको आपको एक्साइटमेंट मिलना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, वाह यार आज मैंने वीडियो डाली मतलब मजा आ गया। डजंट मैटर उस पे लाइक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं तो डालता हूं भाई,
2: शेयर करने का मेरा मोटिव ये था कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं और अगर उनमें से कोई मेरे जैसा कोई या आपके जैसा कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कभी भी फ्रस्ट्रेशन में अपनी इन चीजों को खराब ना करें। आप लगे रहें, एक दिन आपको आउटपुट मिलेगा।
0: करेक्ट, बहुत ही शानदार।
2: जब जो खराब चीजें करने वाले लोग लगे हुए हैं मेहनत से,
0: बिल्कुल
2: हम तो अच्छा कर
0: अच्छा कर रहे हैं,
2: बस हम अच्छा करने के बाद क्यों नहीं लगे हुए।
0: बट वही है ना कि हमारा जो फ्लो है, हमारी जो कंसिस्टेंसी है, वो हम बीच में तोड़ देते,
2: बीच में तोड़
0: हमें, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हमें वो मिल ही नहीं पा रहा है जो हम चाह रहे हैं।
2: बिल्कुल,
0: जो
2: सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप चाहे एजुकेशन के माध्यम में ले लीजिए, आप पोइट्री शायरी, आपको कुछ भी ए टू जेड कुछ भी करना है, आप वर्ल्ड वाइड रीच कर सकते हैं सिर्फ एक सोशल मीडिया से।
0: करेक्ट,
2: और आप उसको चलाते भी, एंजॉय भी करते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, तो आप जितना टाइम उस पर बिताते हैं रील्स देखने में, उतना टाइम अगर हम रील्स बनाने में और पोस्ट डालने में लगाए तो शायद हम भी किसी ना किसी मूवी में काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होंगे।
0: बट यार इतना इजी नहीं होता है ना उत्कर्ष भाई, है ना।
2: मेहनत तो लगती है जी
0: लेकिन
2: पेशेंस
0: एब्सोल्युटली। वही मैं एक्चुअली मुझे ये लगता है कि आपने बहुत सही बोला है कि हम ना व्यूअर्स बनना पसंद करते हैं, हम क्रिएटर बनना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है जिस दिन आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे ना चीजों को और वो अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे, तो आपका अच्छा होगा।
2: और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो व्यू करके क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इससे अच्छा तो मैं कर लेता।
0: होता है यार, बहुत बार ही होता है, हमारे मन में एक थॉट आता है।
2: मतलब आप जानते हो कि आप उससे कहीं ना कहीं बेहतर
0: कर सकते हो, आपका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए ना, मेन बात ये भी तो है। बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल आरजे आप बन जाओगे। क्योंकि हम ना थोड़े से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ
2: कॉम्पिटिशन होना बहुत जरूरी है ग्रो करने के लिए.
0: करेक्ट करेक्ट.
2: जिनकी लाइफ में कॉम्पिटिशन,
0: मुझे लगता है कि अगर आप खुद से कॉन्फिडेंट सॉरी खुद के साथ आप कॉम्पिटिशन कर रहे हो तो वो ज्यादा आपको बढ़िया लगता
2: है, वो बेहतर है. देखो खुद से कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन अपने आप से भी कंपटीशन करने के लिए आपको सामने एक मोटिवेशनली कंपटीशन होना चाहिए.
0: वो तो होता
2: ही है. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पार्लियामेंट में एक बार बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि अपोजिशन जिस देश में मजबूत नहीं होता ना, उस देश की सरकार की अर्थ जो सरकार व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, वो सही नहीं होती है. क्योंकि अपोजिशन बहुत मजबूत होना चाहिए. और इसीलिए कॉम्पिटिशन आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको आईना दिखना चाहिए कि आप क्या हो.
0: बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली है, थैंक यू सो मच. बिल्कुल मुझे भी लगता है, और देखते हैं यार कंपटीशन तो दाएं बाएं है ही, सोशल मीडिया पर तो सबसे बड़ा कंपटीशन चल ही रहा है. और बाकी बट ये है कि अपना काम अच्छे तरीके से करो, सही डायरेक्शन में करो और सही मन से करो तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही होगा यार. हाँ, मेरा मेरा मानना ये है. उत्कर्ष भाई थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू भाई. आप आए,
2: थैंक यू सो मच,
0: मुझे बहुत अच्छा लगा. बट जाने से पहले हमने एक छोटी सी यू नो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप जो करते हैं राधा कृष्ण जी के ऊपर, आप कुछ बढ़िया एक बार वो जाते जाते कुछ सुना दे हमारे.
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ. मैं एक स्टैंजा अपनी पोइट्री का सुना देता हूँ जो कि उसका टाइटल है ना मैं कृष्ण हूँ ना तू राधा है.
0: वाह.
2: एक प्रेमी और एक प्रेमिका, यानी कि एक लवर और एक उसकी लवर का एक कॉन्वर्जेशन है. एक प्रेमी अपनी सारी कोशिशें करके हार गया है और उसको वो किसी भी तरीके से अपना नहीं बना पा रहा. तब वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है और बता रहा है कि मैं और तू बिल्कुल एक ही है लेकिन फिर भी डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट वाली सिचुएशन. तो लड़का कहता है मैं शब्द हूँ तू भाषा है, अपने प्रेम की यही परिभाषा है.
0: गजब.
2: अधूरा हूं तुझ में इस तरह जैसे फलक पर चांद आधा है.
0: क्या बात है.
2: मैं शब्द हूं तू भाषा है, अपने प्रेम की यही परिभाषा है. अधूरा हूं तुझ में इस तरह जैसे फलक पर चांद आधा है. सात जन्मों का ये वादा है, मैं पतंग हूं तू धागा है. सात जन्मों का ये वादा है, मैं पतंग हूं तू धागा है. पर जीवन की ये बाधा है, पर जीवन की ये बाधा है. ना मैं कृष्ण हूं ना तू राधा है, ना मैं कृष्ण हूं ना तू राधा है. लेकिन इस इसका आंसर देती है लड़की अपने आंसर कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, क्या है मैं बताती हूं. और लड़की कहती है कि मैं प्रेम हूं तू समर्पण है, मैं रूप हूं तू दर्पण है. मैं प्रेम हूं तू समर्पण है, मैं रूप हूं तू दर्पण है. मैं अर्चना हूं शिव की तू पुष्प चरणों में अर्पण. कि आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की जो अर्चना कर रहे हैं आप, उसकी अर्चना बिना पुष्पों के बिना फूलों के संपन्न नहीं है. तो वो बताने की कोशिश करिए कि मैं प्रेम हूँ तू समर्पण है, मैं रूप हूँ तू दर्पण है. मैं अर्चना हूँ शिव की तू पुष्प चरणों में अर्पण है. कुछ भी तो कम नहीं ज्यादा है, ये प्रेम का तर्पण है ना कि बाधा है. कुछ भी तो कम नहीं या ज्यादा है, ये प्रेम का तर्पण है ना कि बाधा है. तो फिर तुमने कैसे कह दिया प्रियतम ना मैं तेरा कृष्ण हूं ना तू मेरी राधा है. थैंक यू सो मच.
0: वेरी वेरी नाइस भैया, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है यार, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है. अनकररेबल, बहुत ही बढ़िया था. एंड यू आर माइंड ब्लोइंग यार.
2: थैंक यू सो मच.
0: डॉक्टर पर्सनालिटी है.
2: मैं भी आपके लिए सेम लाइन कहना चाहूंगा कि एब्सोल्युटली यू आर फैबुलस.
0: अरे यार थैंक यू सो मच, माय प्लेजर भैया, मुझे अच्छा लगा. और जब दो अच्छे लोग मिलते हैं तो ये तारीफें अपने आप निकल जाती हैं.
2: बिल्कुल, डेफिनेटली
0: वाइब मैच करने की बात भी होती है.
2: वाइब हमारी मैच हो गई है.
0: डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल भैया, क्योंकि एक्चुअली ना जोनर थोड़े से अलग हैं बट जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी सेम है.
2: बिल्कुल
0: है ना. और जब आपका एक ऑरा बढ़िया होता है ना, जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपकी वाइब्रेशन अच्छी होती है, तो सामने वाले के साथ वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है. राइट. बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड आई एम रियली श्योर गाइज आपने बहुत एंजॉय किया होगा सेशन को. और अभी हम उत्कर्ष भाई को फ्री करेंगे, बिकॉज अगर वो जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे कैसे भैया.
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है. संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद. कॉल 7060022430.
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ,
10: चावला टायर
8: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
11: अपोजिट
10: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ आज हम इस शो में बात करेंगे आपकी ढेर सारी फरमाइशों की, खूबसूरत शायरों की और आपके प्यार भरे संदेशों की। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त अखिल और आज हम लेके आए हैं एक फिर से फरमाइश का सफ़र। तो शुरुआत करते हैं शायरी से। कुछ रिश्ते रेडियो की तरंगों जैसे होते हैं, नज़र नहीं आते लेकिन दिल तक पहुंच जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी अपने को कोई संदेश देना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें 9837896896 पर और हमें भेजें अपने संदेश। और आज का पहला गाना जो है उन सभी दोस्तों के नाम हैं जो दूर रहकर भी दिल के बहुत करीब हैं।

0: मेरे अम्मा जान
1: नमस्ते।
0: आदाब। मेरी अम्मी जान भाई।
1: माँ जी नमस्ते।
0: ये खाओ भाई।
2: कितनी बार कहा है बाएं हाथ से मत खाया करो।
0: भूख को क्या दाया भाई अम्मी।
1: क्या भाई? कुछ नहीं।

0: ठीक है भाई।
1: ओहो शर्मा गए,
0: भाभी ने दिया है।
1: हाँ लगा मुझे।
0: भाभी का नाम
2: सीता।
0: आहा, राम और सीता।

0: तो हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये गाना? दोस्ती के ऊपर, दो दोस्तों की कहानी के ऊपर। फिल्म थी RR। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे एक नए श्रोता, छोटी सी श्रोता है जो अपनी बात कुछ कहना चाहती हैं। चलिए सुनते हैं उन्हीं से। हेलो
1: हाँ,
0: हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका?
1: स्वाति बढ़िया
0: स्वाति जी, कैसी हैं आप?
1: है। आप बताइए कैसे हैं
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या करती हैं स्वाति जी आप?
1: भैया? हाउसवाइफ है हम।
0: आप हाउसवाइफ हैं। और ये जो आप फरमाइश लेके आई हैं, किसके लिए लेके आई हैं?
1: ये हमारी बेटी की फरमाइश है।
0: आपकी बेटी की फरमाइश है। क्या नाम है आपकी बेटी का?
1: एंजल।
0: एंजल। तो एंजल जी कौन सी क्लास में हैं अभी?
1: ये सेकंड क्लास में है। ये
0: सेकंड क्लास में है। और क्या गुनगुनाती रहती हैं ये?
1: गाना है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। हाँ
0: तो एंजल जी पास में हैं आपके?
1: जी, हमारे पास में है।
0: एंजल जी से कहिए जरा ये कि ये लाइन हमारे लिए गुनगुनाएं सभी श्रोताओं के लिए। हाय एंजल, कैसी हो आप? आप पापा से बहुत प्यार करती हो? बहुत। हम सभी लोग अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। अब आप पापा के लिए क्या गुनगुनाना चाहती हो?
2: पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई।
0: तो दो लाइनें सुनाओ ना हमें।
2: पापा मैं छोटी सी,
0: पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। चलिए आज ये गाना हम आपके साथ सभी गुनगुनाएंगे और सभी अपने पापा को डेडिकेट करेंगे। थैंक यू एंजेल हमसे जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू भैया।
0: वेलकम। बाय बाय। गुड नाइट।

0: पापा मैं छोटी सी है, छोटी से बड़ी हो गई, इतना इमोशनल गाना था। और एक बाप बेटी का ऐसा रिश्ता जो कहते हैं कि बाप और बेटी का ऐसा रिश्ता है ये, कि इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जिस मतलब मैं भी एक समय के लिए ये इस गाने को सुन के खो गया था। एक छोटी सी बेटी मेरी भी है, तो कहते हैं कि इस रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, लेकिन प्यार से संभालो तो उम्र भर साथ देती है। हमारे पास अभी अभी मैसेज भी आया है पूजा जी का कटघर से कि ये गाना अखिल जी, मैं भी अपने फादर, मेरे फादर अभी है नहीं, तो ये गाना मैं उनको भी डेडिकेट करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना कि आपने प्ले किया। थैंक यू पूजा जी, आपके फादर जहाँ भी हैं और जैसे मतलब अच्छे से हैं, और आपके पास हमेशा उनका आशीर्वाद रहता ही रहता है। तो बहुत बढ़िया था। चलिए अब हमने नेक्स्ट कॉलर से जुड़ते हैं और सुनते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, रणवीर जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप सुनाइए सर।
0: क्या कर रहे हैं आप इस समय?
1: आपके कार्यक्रम सुनना है सर।
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है सर। और एक बात कहें सर?
0: हाँ जी सर
1: जी, आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके हार्दिक शुभकामना है सर आपको।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। और आप जिस तरीके से जुड़े हुए हैं इस आकाशवाणी से, इस FM से, तो उसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही जुड़े रहे हैं FM से।
1: जी
0: तो आज क्या शायरी सुनाना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल सुनाना चाहेंगे सर।
0: सुनाइए सर, कुछ सुनाइए सर सभी श्रोताओं को।
1: गहराई प्यार में हो तो बेवफाई नहीं होती।
0: क्या बात कही!
1: गहराई प्यार में हो तो बेवफाई नहीं होती, कच्चे प्यार में कभी तन्हाई नहीं होती।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: मगर प्यार जरा संभल कर करना मेरे दोस्तों, प्यार जरा संभल कर करना मेरे दोस्तों, प्यार के जख्म की कोई दवाई नहीं होती।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सही बात कही रणवीर जी, कि इस जख्म की कोई दवाई नहीं होती।
1: मगर आपने हमें जख्म दिए हैं सर, आपके रेडियो, आपके FM ने हमें
0: तो हम उसकी दवाई भी देंगे सर, हमारे पास उसकी दवाई है। बताइए कौन सा गाना प्ले किया जाए?
1: बस वो ये, तू नहीं तो तेरी याद, सही यादों के सहारे जी लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे।
0: क्या बात है सर, क्या बात है। तो आज हम अपने जख्मों को भी आपको दवाई लगाते हैं, और आशा करते हैं आप ध्यान रखें अपना, और ऐसे मौसम में पानी भी पीते रहें और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: धन्यवाद रणवीर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो रणवीर जी ने बहुत ही अच्छा गाना चुना है, और सुनते हैं उनकी भी इस दिल की बात सभी के साथ।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
11: Oh boys, I am singing song, soup song.

वाय दिस कोलावरी कोलावरी डी। इतना पसंदीदा गाना है ये, इतना मस्त गाना है। हमारे पास मैसेज आया था कृति जी का लाजपत नगर से कि मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त हैं जिनके साथ मैं चाहती हूँ कि पूरा टाइम अपना, मतलब चाहती नहीं है कि कॉलेज की छुट्टी हो और ये घर पर आए, ये चाहती हैं कि कॉलेज में क्लासेस चलें और क्लासेस के बाद अपनी कैंटीन में उसके साथ दोस्तों के साथ वो समय बिताएं, और जब तक बिताएं जब तक इनका मन ना भर जाए सारी बातें पूरी होने से। तो उन्होंने कहा कि ये गाना प्लीज़ आप प्ले कीजिएगा, तो मैंने ये गाना उनके लिए कराया। कृति जी होपफुली आपको शायद कुछ यादें जो कॉलेज की अभी आपका चल रहा है तो शायद यादें रही होंगी। और हमारे पास अभी कॉल आई थी, हमारे एक लिसनर हैं बहुत ही टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं नरेंद्र जी, उन्होंने कहा अखिल जी ज़रा थोड़ा आज कोई दर्द भरा गाना मेरे लिए प्ले कर दीजिए। तो नरेंद्र जी ज़रूर हम आपके लिए कभी दर्द भरा गाना प्ले करते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा इसी बात पे, जहाँ थोड़ी सी दोस्ती और दर्द साथ में हो गया, मगर एक दोस्ती के ऊपर एक हम बात कहना चाहेंगे, शायरी कहनी चाहेंगे। दोस्ती वो नहीं जो हर वक्त साथ हो, दोस्ती वो है जो दूर रहकर भी दिल के पास हो। तो हर चीज़ दिल से ही कनेक्टेड है और दिल से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए नरेंद्र जी, आपके दिल पे थोड़ा सा दर्द जो है उसे कम करते हैं और आपका ये पसंदीदा गाना सुनते हैं।

0: और इस दिल में क्या रखा है, नरेंद्र जी की फरमाइश थी। और कहते हैं कि ये गाना बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा फिल्माया गया था, और ये इस फिल्म का नाम था ईमानदार। संजय दत्त और फरहा जी इसमें मेन लीड में थे, और जो सिंगर हैं वो श्रेयस वाडकर और आशा भोसले जी थी। इतना अच्छा गाना, कहते हैं कि कभी कभी ऐसा गाने सुन के आपको भी कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने अपने ख्याल याद आ जाते हैं। हमारे पास मैसेज आया है रामपुर से कामिल जी का। कामिल जी कहते हैं, मेरे दिल में एक धड़कन तेरी है, उस धड़कन की कसम तू जिंदगी मेरी है। क्या बात है कामिल जी। मेरी एक सांस में एक सांस तेरी है, मेरी एक सांस में एक सांस तेरी है, वो सांस जो रुक जाए तो मौत मेरी है। क्या बात कही कामिल जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा आपने लिखा है और अच्छा लगा। चलिए जुड़ते हैं हम अपने नए लिसनर के साथ जो इस समय हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। नमस्कार उस्मान जी, कैसे हैं आप?
1: जी बस दुआ साहब, नमस्कार साहब।
0: क्या करते हैं आप?
1: हम एक ऐसी मजदूर आ गए हम लोग।
0: तो क्या सुनाना चाहेंगे?
1: साकिबुल्ला साहब के घर से बोल रहे हैं हम लोग।
0: अच्छा,
1: उस्मान और शाह गुप्ता।
0: क्या बात है।
1: चौधरी पिक्चर का गाना सुनना चाहते हैं, इलू इलू।
0: उस इलू इलू से पहले आपको कोई शायरी सुनानी पड़ेगी सारे लिसनर्स को।
1: फूल है गुलाब का खुशबू तो लीजिए, खत है मन करीब का जवाब तो दीजिए।
0: क्या बात है, जवाब हम आपको बहुत अच्छा देंगे, बहुत ही अच्छा सुनाया। और आपका ये गाना जरूर हम प्ले करते हैं। आप किसी के लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं? किसी के लिए ये आप गाना डेडिकेट किसी को कहना देना चाहते हैं, इसको गाने को कहना कि किसी के लिए आपने कही फरमाइश, ये जो गाना है किसके लिए? अच्छा अच्छा, चलिए सर सुनते हैं उस्मान जी आपकी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार उस्मान जी। तो उस्मान जी ने कहा है कि एक सौदागर मूवी से इलू इलू ने सुनना है इस समय, तो क्यों नहीं सुनते हैं।

0: ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू क्या गाना है, ये इलू इलू फिल्म सौदागर से। और कहते हैं ना, ये भी उन गानों में से एक गाना है जो आपको पुरानी यादें आपकी फिर से ताज़ा कर दे, जब आप ये इलू इलू के सिनेरियो में थे। अभी हमारे पास एक मैसेज आया है, और आकाश चौधरी जी ने कहा कि इससे पहले जो अभी आपने दर्द भरा गाना प्ले किया, उससे मेरी दिल की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। धन्यवाद आकाश जी, आपने हमें मैसेज किया, और अच्छा है। हम चाहते हैं कि आपकी जो भी पुरानी यादें ताज़ा हुई वो अच्छे ही रूप में ताज़ा हुई हों। हमारे पास अभी एक नए श्रोता हमसे जुड़े हैं, सुनते हैं उनसे, कुछ बात करते हैं। हेलो मुरादाबाद, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: दल सिंह, जिला मुरादाबाद, देवापुर से बोल रहे हूँ।
0: दल सिंह जी, आप कौन, क्या कहना चाहेंगे और क्या सुनना चाहेंगे, दोनों बातें बताइए हमें।
1: क्या कहना चाहूँ, क्या सुनना चाहूँ, ये अपने दोस्तों के लिए कहना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्त मेरे गाने की आवाज को मेरे दोस्त भी सुने और हमें बधाई दे।
0: क्या बात है, आपको बधाई किस चीज की दें?
1: जो भी हम गाना मांग रहे हैं आपसे।
0: अच्छा, उसकी बधाई आपके दोस्त आपको दें। चलिए, तो आप ये एक तरीके से दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं ये गाना। क्या है गाने के बोल बताइएगा।
1: तुमसे मिलकर न जाने कौन
0: तुमसे मिलकर ना जाने,
1: तुमसे मिलकर न जाने कुछ और भी कुछ याद आता है।
0: क्या बात है, कौन सी मूवी का गाना है ये?
1: ये है प्यार झुकता नहीं, मिथुन की फिल्म है।
0: ओके ओके ओके, चलिए सर, दाल सिंह जी ये गाना सुनाते हैं, और आप भी एंजॉय करिए, और अपने दोस्तों को भी के साथ भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, और दोस्तों को भी थैंक यू बोलिए। धन्यवाद। चलिए, दाल सिंह की फरमाइश भी सुनते हैं, और अगर आपकी भी अभी भी कोई फरमाइश हो जिसे आप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा बताना चाहते हैं, किसी को कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें संपर्क करें। 9837 896 896।

तुमसे मिलकर ना जाने क्यों कुछ और भी याद आता है। क्या गाना है और ये क्या फीलिंग्स हैं कि हाँ कभी ना कभी किसी ना किसी से मिलके कुछ ना कुछ तो याद आता है, चाहे प्यार हो चाहे तकरार हो, तो कुछ तो है जो कहीं ना कहीं हमें याद आता है। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। राहुल जी का मैसेज आया है मझोला से कि मैं आजकल प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और कभी कभी मेरे को जब भी थोड़ा सा मौका मिलता है तो मैं आपका एफएम ज़रूर सुनता हूँ और आप बहुत ही अच्छे शो कर रहे हैं सभी के सभी। थैंक यू राहुल जी, आपने हमें मैसेज किया और हम आपसे यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट। आप जो भी प्रतियोगिता की तैयारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करें और ज़रूर उसमें सफल हों। एक शायरी में कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। राहुल जी आप भी शायद सुन रहे हो, अगर मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, तो आपकी मेहनत जो है ज़रूर रंग लाएगी। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हुए थे और महाराष्ट्र से जुड़े थे, वो उन्होंने कहा कि एक अच्छा सा गाना उनके लिए भी पेश किया जाए। रचना जी और राजेश जी जो महाराष्ट्र से जुड़े थे हमारे साथ, और एक हमारे साथ हैं रंजनी जी जिनका मैसेज आया था कि वो एक गाना प्ले करना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने सभी दोस्तों के लिए। तो चलिए उनकी भी एक फरमाइश पूरी करते हैं और एक गाना प्ले करते हैं

मैसेजेस पढ़ना चाहेंगे। हमारे पास आज हमारे श्रोताओं के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आए, उसमें से हमारे पास सौरभ जो मुरादाबाद शहर से ही हैं, और रणवीर जी, इन्होंने हमें मैसेज किया और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मैसेज किया। एक बेबी राधिका हैं जो अपने मामा को बहुत याद कर रही हैं और उनके लिए कहना चाह रही हैं, चंदा मामा से भी प्यारे हैं मेरे मामा। तो राधिका जी, आपके मामा जी के पास ही हमने मैसेज पहुंचा दिया है। और हमारे पास अमित जी लाइन पार से भी एक मैसेज आया है। अमित जी ने कहा है, सभी ट्रक ड्राइवर भाइयों को मेरा सलाम। सच में सलाम, आपने अमित जी बहुत ही बढ़िया मैसेज किया है। और मैं भी यही कहूँगा कि जितने भी ट्रक ड्राइवर भाई हमारे इस समय शो को सुन रहे हैं, तो आप सबको सच में एक सलाम। आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है कि आप किस तरीके से और इतने पूरे दिन और पूरी रात अपने आप सफ़र में रहते हैं, और उस सफ़र में रह के भी, मतलब आपका सफ़र तो चल ही रहा है और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सफ़र से जुड़े हुए होते हैं, आपका परिवार और जहाँ पे आप जिसके लिए कार्य कर रहे हैं वो जगह, सबके सब कहीं ना कहीं इस सफ़र में रहते हैं। तो आप लोग दिल खोल के अपना सफ़र पूरा कीजिए और अच्छे से चलाइए। हमारे पास मैसेज आया है अजीत जी का भी, जो कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपने इस तरह का एक शो भी चालू किया है। तो सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये मैसेज किया। पूरी फैमिली और आपके सभी जितने भी हैं रिश्तेदार, उन सभी को हमारी तरफ से भी प्यार भरा सलाम। चलिए, एक शायरी में आपके लिए इसी बात से कहता हूँ, जो अपनों की खुशी में खुश हो जाए। कहते हैं एकदम अचानक कुछ इंस्टिंक्ट सा याद आ जाता है, और इतने ऐसे मैसेज देख के मुझे भी बड़ा लगता है कि हाँ, कुछ ना तो कहना चाहिए। जो अपनों की खुशी में खुश हो जाए, वही इंसान सच्चे दिल वाला कहलाए। तो बहुत बढ़िया लगा आपके मैसेज आए, और इस शो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और उस एक आखिरी शायरी के साथ। हर मुलाकात ज़रूरी नहीं यादगार बने, हर मुलाकात ज़रूरी नहीं यादगार बने, लेकिन कुछ आवाज़ें हमेशा दिल में घर कर जाती हैं। आपके प्यारे संदेशों और फरमाइशों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त अखिल, और आप सुन रहे थे 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल रखिए। तो इन शॉर्ट बजाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। कल मिलेंगे ठीक इसी समय पे, आपकी फरमाइशों के साथ, आपके पसंदीदा गानों के साथ, और आपके मैसेजेस के साथ, जो हमें ना करना भूलें, 9837896896 पर। तो मिलते हैं, शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भर।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
4: प्रकृति से खुशियों की लहर।
5: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

आपात का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।